0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई 2026। सुबह के 5:53 और 31 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से यानी थोड़ी ही देर में सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें गीत गुंजन आपके साथ होंगी, और सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर खुशबू घई के साथ। सुबह 8:00 गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में गीत गुंजन आपके साथ एक बार फिर होंगी, और सुबह 9:00 खुशबू घई आपके साथ होंगी कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने में, जिसमें आप नॉन स्टॉप लेटेस्ट बॉलीवुड नंबर्स सुन सकते हैं। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर, इसमें आपके साथ होंगी हिमानी दत्ता, और सुबह 11:00 आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें राजेश कुमार आपके साथ होंगे, और आज इस कार्यक्रम का विषय होगा अप दीपो भवः। दोपहर 12:05 पर हिमानी दत्ता आपके साथ होंगी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल में। दोपहर 1:05 पर मेरा वाला सॉन्ग में राजेश कुमार आपके साथ होंगे, और दोपहर 2:00 आशियाना कार्यक्रम में मोक्षी ज्वेल आपके साथ होंगी। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज का विषय रहेगा ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, इसमें कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे एसएम शाहिद। शाम 4:05 पर आप सुनेंगे अल्फा जिन कार्यक्रम मोक्षी ज्वेल के साथ। शाम 5:05 पर कार्यक्रम होगा सिटी लाइट्स एसएम शाहिद के साथ, इसमें आप अपने शहर की सभी जानकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम सुरदीप मुखर्जी के साथ, और रात्रि 8:00 म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम होगा विकास राय इसमें आपके साथ होंगे, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप डांस हिट्स। रात्रि 9:00 हिना मौज आपके साथ होंगी कार्यक्रम आपकी याद आती रही में। रात 10:00 सुदीप मुखर्जी आपके साथ होंगे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक में, और रात्रि 11:05 का समय रहेगा कार्यक्रम रंग महफिल में, जिसमें हिना मौज आपके साथ होंगी, इस कार्यक्रम में आप गजलें सुन सकते हैं। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1:00 से 2:00 तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। सुबह के 6:00 और अब से कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे।

उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखे हैं अंधेरी रातों में। ना समझ है वो जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ख्वाब सपने तभी पूरे होते हैं जब हम जूझते हैं, तपते हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपकी जो ये ख्वाबों की दुनिया है ना, जिसमें आप अभी आधे जागे और आधे सोए हुए हैं, उससे आप बाहर आ जाएं, आप जाग जाएं। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ गीत गुंजन।

0: तेरे तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

साथियों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों जब तक हम जीवित हैं ना, इच्छाएं हमारे साथ रहेंगी। हर इंसान की ढेरों ढेरों

हीरो बहुत सारी इच्छाएं होती है और एक पूरी होती है कि नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। वैसे उम्र के साथ साथ हमारी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ भी हाथ पे हाथ धरे रखकर मिलता नहीं है। एफर्ट्स तो उसके लिए करने ही पड़ते हैं।

0: साथियों, आप सुन रहे प्रोग्राम सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध का तीसरा अध्याय, जहाँ पर महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि अनेक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार की देवताओं की पूजा की जा सकती है, पर वो सब भक्ति नहीं है। और सबसे जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी प्रत्येक कामना के लिए, या वो अगर निष्काम हैं, भक्त हैं, भगवान की ही सेवा चाहते हैं तो भी, और जो मोक्ष चाहते हैं तो भी, ये सब के सब

उदार ही है ये सब, तीव्र भक्ति योग के साथ परम पुरुष की आराधना करते हैं और इनको ही सुकृत कहा जा सकता है, पुण्य आत्मा है। तो जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो तो भगवान से जुड़ ही जाते हैं, पर जो लोग निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं वो तो भगवान को पा ही लेते हैं, लेकिन जो सकाम भाव से भी भगवान का भजन करते हैं तो भी उनका कोई नुकसान नहीं होता है, उनको उनकी वस्तु तो मिलती ही है, साथ ही उनको धीरे धीरे भक्ति की प्राप्ति भी होती है भगवत कृपा से। तो इसलिए हमने ये सुना था 11वें श्लोक में, जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था कि सबसे बड़ा हित इसी में है मनुष्य का, कि वो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। तो जब भगवान के प्रेमी भक्तों का संग किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, प्रश्न उठ सकता है, ऐसी क्या वस्तु प्राप्त होती है, क्या साक्षात भगवान प्राप्त हो जाते हैं? जी नहीं। देखिए, साक्षात भगवान अगर प्राप्त हो भी जाएं और भगवान की प्राप्ति के लिए कोई तृष्णा ना हो, कोई आकर्षण ना हो, तो भगवत प्राप्ति वो कैसी होगी सोचिए। क्योंकि साक्षात भगवान तो असुरों को राक्षसों को भी तो प्राप्त हो गए थे, लेकिन तो भी राक्षसों के मन में भगवान के प्रति द्वेष भाव था, क्योंकि उन राक्षसों को भगवान के प्रेमी भक्तों का संग कहाँ मिला था, उन्होंने सत्संग में बैठकर भगवत कथाएं कहाँ सुनी थी, कहाँ भगवान के प्रति उनके हृदय में आसक्ति प्रेम या भाव पैदा हुआ था, वो तो दुर्भाव के शिकार थे, उन्हें सत्संग ही नहीं मिला। तो भगवान तो मिल गए पर सत्संग नहीं मिला, इसलिए भगवान मिलके भी नहीं मिले, भगवान की महिमा का ज्ञान ही नहीं हुआ, भगवान के रूप माधुर्य को देखकर भी उसका आस्वादन करने में विफल रहे। क्योंकि भगवान तो हैं बहुत रूपवान, श्री कृष्ण जैसा रूप किसी भी भगवत स्वरूप में नहीं है, उनकी जैसी वेणु माधुरी भक्त वत्सलता किसी भी भगवत स्वरूप में नहीं है। तो ऐसे भक्त वत्सल प्रेममय प्यारे सुंदर सुमधुर भगवान श्री कृष्ण, इनको प्रेम से ही पाया जा सकता है और इनका आस्वादन भी प्रेम से ही हो सकता है, बिना प्रेम के इनका आस्वादन नहीं हो सकता। असुरों में राक्षसों में कहाँ प्रेम था, कितने ही राक्षसों को भगवान ने खेलते खेलते मार डाला, कहाँ राक्षसों की आंखों से आंसू निकले थे श्री कृष्ण को देखकर, या वो कहीं ठगे से रह गए हों उनको देखकर, ऐसा तो नहीं था। जबकि ब्रज गोपियों की अवस्था बिल्कुल उल्टी, बंसी की आवाज सुनते ही वो सब कुछ भूल जाती, क्योंकि वहां परम महान प्रेम है ना। ब्रजवासियों का प्रेम महान है और श्री राधिका में परम महान प्रेम है। तो जहां प्रेम जितना बड़ा होगा, जितना ऊंचा होगा, वहां भगवान का माधुर्य, उनकी महिमा, उनके प्रतिभाव उतने ही अधिक होंगे। जिस जाति का प्रेम होगा, ऐश्वर्य जाति का प्रेम है, वात्सल्य जाति का प्रेम है, और वो भी ब्रज में श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है या कहीं और किसी भगवत स्वरूप के प्रति वात्सल्य भाव है, तो दोनों की जाति भी अलग हो गई। वात्सल्य तो है मगर जाति अलग हो गई। ब्रज का जो प्रेम है वो शुद्ध माधुर्य का प्रेम है, शुद्ध माधुर्य, सिर्फ श्री कृष्ण का मधुर रूप, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कि वो भगवान है, ये तो ब्रज भाव के भक्त भूल ही जाते हैं भजन करते करते, इसीलिए वो भगवान को एकदम वशीभूत कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा प्रेम जिनके हृदय में होता है, भगवान उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए स्वयं भी बड़े लालसा युक्त हो जाते हैं। तो जाति अलग है ना, वात्सल्य भाव का प्रेम है,

या सख्य भाव का प्रेम है या दास्य भाव का प्रेम है। तो वो जो प्रेम है उसकी जाति, उसकी महिमा और उसका परिमाण क्यों, कितनी क्वांटिटी में वो प्रेम है, कितनी मात्रा में है वो प्रेम। तो सबसे अधिक प्रेम तो ब्रजवासियों में ही होता है, और जिसके अंदर जितना प्रेम, याद रखिए उस प्रेम के द्वारा ही भगवत माधुर्य का आस्वादन होगा। किसी पत्थर दिल, किसी दोषदर्शी व्यक्ति के पास बैठ करके, उसका संग करके कोई सोचे कि हमें भगवत माधुर्य का आस्वादन हो रहा है कि नहीं, तो नहीं होगा। असुरों को कभी भी भगवत माधुर्य का आस्वादन हुआ ही नहीं, हालांकि भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत ही अधिक सुंदर हैं, पर वो दुर्भाग्य थे क्योंकि उन्हें भगवत प्रेमी भक्तों का संग नहीं मिला। इसीलिए यहाँ पर 11वें श्लोक में आपको याद होगा हमने जिक्र किया था, सुखदेव जी ने कहा था कि सबका हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग कर लें और भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। क्यों? अब 12वें श्लोक में इस क्यों का उत्तर दे रहे हैं। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर में चक्र मात्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्तवत्थ भक्ति योगः को निवृत्तो हरि कथासु रतिम ना कुर्यात्। अर्थात ऐसे भक्तों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे ही उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हृदय में आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम ना करे। यानी भगवान की कथाओं को सुनना मजबूरी नहीं है, भगवान की कथाओं से प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथाओं को सुनने से ही कल्याण हो सकता है, हृदय शुद्ध हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो भगवान की कथाएं तो बहुत हैं, हम स्वयं पढ़ भी सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते। अगर हमें रसिक भक्तों का संग नहीं मिले तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ेंगे तो भी लाभ होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, अतिशय भाग्यशाली, तो उसे रसिक भक्त का संग प्राप्त होता है। रसिक भक्त किसे कहते हैं? वो जो भगवद रस का अनुभव प्राप्त कर चुका है, वो जो भगवद रस में सदैव डूबा रहता है, वो जो भगवद रस से लबरेज है, भरा हुआ है, वो रसिक है। वो भगवान की महिमा को जानता है, उसने भगवान के माधुर्य का, रूप का आस्वादन किया हुआ है, करता है, यही उसकी खुराक है। तो ऐसा व्यक्ति जब भगवान के बारे में कुछ भी बोलेगा तो वो सीधा हृदय में ही प्रविष्ट होगा, क्योंकि वो सिर्फ पढ़कर बोलेगा ऐसा नहीं है, वो जो कुछ भी बोलेगा उसमें उसका अनुभव शामिल होगा, उसके अपने अनुभव रूपी उद्गार के कारण जो भगवत कथा है वो सरस हो जाएगी और भी अधिक और बहुत प्रभावशाली होगी। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का मर्म एक रसिक भक्त ही जान सकता है, सब नहीं जान पाते। यानी भगवान की कथाएं शायद बोलते सभी होंगे, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसका एक मर्म होता है, बहुत रहस्य होते हैं। जब वो रहस्य खुलते हैं तो दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी भगवान की भगवत्ता, उनकी करुणा, उनकी दया, कि कैसे वो स्वयं भगवान ही एक भक्त के रूप में आकर के हमें अपना संग प्रदान करके

मंत्र प्रदान करके और भगवान की ओर यानी अपनी ओर ही मोड़ लेते हैं। भगवान ही भक्त का रूप धारण करके आते हैं, भगवान ही अंतर्यामी परमात्मा के रूप में बैठकर उन कथाओं के श्रवण की वजह से जो हमारे हृदय में अनंत जन्मों के अनर्थ हैं उनको हटाते हैं, अपना रस प्रदान करते हैं, हृदय को शुद्ध करते हैं, आनंद का अनुभव कराते हैं। इंद्रियों के विषय में जो आसक्ति है उस आसक्ति को वही हटा सकते हैं, वही हटाते हैं और वही हमें अपने चरण भी प्राप्त कराते हैं। वरना अणुजीव, उस अणुजीव में भला इतना दम कहाँ कि वो भगवत चरणों को प्राप्त कर सके, ये संभव पर नहीं है। तो इसीलिए यहां पर हमारे सुखदेव जी कह रहे हैं कि ऐसे रसिक भक्तों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे ही उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। देखिए, ये जो हमारा हृदय है ना, ये इतना मलिन है, इतना गंदा है, इतने संस्कार भरे हैं, समाचार भरे हैं इस हृदय में कि एकदम मलिन हो गया है। संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े ना जाने हम कितने जन्मों से खाते आ रहे हैं, कभी डूबते हैं और पार तो अभी तक हुए नहीं, डूबते हैं और फिर कभी ऊपर आते हैं, फिर डूबते हैं, फिर ऊपर आते हैं, यही चलता रहता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की रस्सियों में बंधे हैं, संसार महासागर उसमें एक अणुजीव डूबता रहता है, कहाँ वो पार हो सकता है अपने बल पर। तो कहा गया नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भगवत कथाओं का रसपान किया जाए रसिक भक्त के संग में तो ऐसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होगी कि जिससे संसार सागर की ये जो तरंग मालाएं हैं उसके थपड़े शांत हो जाएंगे, यानी कि संसार सागर से पार जाने लगेंगे हम। संसार सागर एक गैया के खुर के समान इतना छोटा हो जाएगा भगवत कृपा से, हरि कथा की कृपा से, संत कृपा से। तब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाएगा। और याद रखिए, भगवत आनंद बिना शुद्ध हृदय के हम भोग नहीं सकते हैं। हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, ना एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ना हम जो है अपने आहार में वाणी में कोई नियंत्रण रख रहे हैं, ना हम कंठी पहन रहे हैं कि चलो कंठी पहन के हम भगवान की तरफ शरणागत हो गए, प्रभु हमने आपकी ये दिव्य तुलसी माला को धारण कर लिया है, अब हम कुछ भी अनाप शनाप नहीं खाएंगे, जो भी खाएंगे वो आपका महाप्रसाद ही होगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं पाने वाले, है ना। तो जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे, चेष्टा प्रारंभ तभी होगी जब रसिक भक्त का संग होगा, भगवान की लीला कथाएं हम सुनेंगे, और जब लीला कथाओं को सुनेंगे तो फिर हमारे हृदय में एक भाव उत्पन्न होगा कि चलो चेष्टा करके देखें। तो जब हम प्रयास करेंगे तब हृदय में शुद्धि आएगी, हृदय शुद्ध होगा और तब एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा, ऐसा आनंद जिसके बारे में हम कभी जानते नहीं थे। ये आनंद है इसका हमें पता नहीं था और इसे ही हम ढूंढ रहे हैं, वस्तुतः जन्म जन्म में यही ढूंढा है और अभी भी ढूंढ रहे हैं, अनंत जन्मों तक यही ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन मिलेगा तभी जब किसी रसिक भक्त का संग होगा, उस सत्संग में भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करके ही जब हृदय शुद्ध होगा तो भगवत कृपा से उस प्रेमानंद का अनुभव होगा जिसको अनुभव करने के लिए जीव छटपटाता है, आत्मा छटपटाती है, लेकिन चूंकि हमें उचित संग नहीं मिल पाता इसलिए हम भटक जाते हैं और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति हमारी नहीं रहती जब हम भगवत कथा सुनते हैं। देखिए, इंद्रियों के जो विषय हैं बड़े खतरनाक हैं, इन्हीं इंद्रिय के विषयों की आसक्ति के कारण

0: हम बारंबार जन्म लेते हैं, नहीं तो जन्म लेने का कोई कारण नहीं है। क्यों जन्म लेते हैं हम, ये इंद्रियां क्या कर देती हैं, क्यों ये इतनी खतरनाक हैं, इसी पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर रसिक भक्तों का संग किया जाए तो उनसे हमें प्राप्त होंगी भगवान की बहुत ही सुंदर दिव्य लीला कथाएं। लीला जो भगवान ने की है, भगवान लीलाधर है ना, अपनी लीलाओं को भगवान कृपा करके प्रकट करते हैं इस धराधाम पर। क्यों? इसलिए ताकि मनुष्यों पर अनुग्रह किया जा सके, कृपा की जा सके। लीला कथा सुन करके मनुष्य के अंदर ये लोभ उत्पन्न होता है, वो ये सोचने लगते हैं कि ओहो भगवान की लीलाएं कितनी प्यारी हैं, मैं भी इस लीला में शामिल होकर के भगवान का आनंद वर्धन करता, उनकी सेवा पा सकता तो कितना अच्छा था। तो ये जो लोभ होता है इसे भगवान देखते हैं और भगवान हमें एक ऐसे पार्षद देह की प्राप्ति करा देते हैं जो भगवान की सेवा को पा करके धन्य हो जाते हैं, है ना। ऐसा ही होता है और ये सत्य है, त्रिकाल सत्य है ये बात। तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब हृदय अशुद्ध है तभी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है। शुद्ध हृदय में इंद्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इंद्रियां तो चाहती हैं अपना विषय, रूप चाहती हैं, कान चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा सुने, आंखें देखना चाहती हैं, नाक सूंघना चाहते हैं, जुबान खाना चाहती है, बोलना चाहती है, त्वचा जो है स्पर्श चाहती है। लेकिन ये सारी वस्तुएं अगर भगवान में प्राप्त हो जाए, भगवान का रूप देखें अपने मन की आंखों से, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और दिव्य गंध की सुगंध हम सूंघें अपनी नासिका से, कानों से हरि कथा सुने, मुख से हरि प्रसाद पाएं, मुख से हरि नाम संकीर्तन करें, त्वचा पर हम भगवान के चरणों में तुलसी पुष्प जो चढ़ाए गए हैं उनके स्पर्श को ग्रहण करें, तो बताइए जब हमने अपनी पांचों इंद्रियों को इतना दिव्य विषय प्रदान कर दिया तो ये इंद्रियां इतने उच्च विषय को प्राप्त करने के बाद ये नीचे के विषयों के लिए थोड़ी ना आकर्षित होंगी। ये तो इसलिए आकर्षित हैं क्योंकि इन्हें उच्च विषय मिले ही नहीं, पहली बात। लेकिन निरपराध रूप से सत्संग करना होगा, निरपराध रूप से। दूसरी बात कि जब इंद्रियों के विषयों में आसक्ति ही नहीं रहेगी तो मरते समय कोई वासना ही नहीं रहेगी। भाई हम बारंबार शरीर धारण क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वासनाएं रह जाती हैं। हमें ये मिल जाता, वो हो जाता, बेटे का ये हो जाता, बेटी का वो हो जाता, मेरे इतने जेवर थे, इसे बांट देती, इतनी फैक्ट्रियां थी, चार और लगानी थी, और ना जाने कितनी प्लानिंग्स करता रहता है इंसान। इसी के कारण उसको इतना खटना पड़ता है शरीरों की आवाजाही में, है ना। तो इसलिए इंद्रियों के विषयों में आसक्ति ही जब समाप्त हो जाएगी

तो अंत में याद ही भगवान आएंगे, भगवान को ही हम चाहेंगे। और अगर अंत में हम याद ना कर पाए क्योंकि हम निर्बल हो गए बिल्कुल, तो जब सारा समय पूरी उम्र अगर हमने भगवत भक्ति की है तो अंत में भगवान ही कृपा करके हमें याद आएंगे। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है ना, स्मृति विस्मृति सब मुझसे ही उत्पन्न होती है अर्जुन। तो जब स्मृति उनसे, विस्मृति उनसे और आश्रय भी उन्हीं का, तो फिर क्या डरना क्या घबराना। जब सब कुछ उन पर छोड़ ही दिया तो अंत समय में वो याद आएंगे कि नहीं, ये उन्हीं पर छोड़ना बेहतर है। हम तो अपना प्रयास करते रहें, आठों याम उनको याद करते रहें, बार बार उनसे यही फरियाद करते रहें कि हे प्रभु हम आपको कभी ना भूलें, एक क्षण के लिए ना भूलें, यही प्रार्थना करते रहें, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति भगवत आनंद का अनुभव करना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है, यानी अब वो भक्ति से युक्त हो गया। और ये मैं आपको बता दूं कि जो भक्ति है वो सुदुर्लभा है। मोक्ष तो प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग आदि धाम भी प्राप्त हो जाते हैं, भक्ति प्राप्त बड़ी मुश्किल से होती है। क्योंकि भक्ति का जो वाहक है वो एक भक्त ही हो सकता है। भगवान की कृपा से ही एक भक्त की प्राप्ति होती है जीवन में, और भक्त की प्राप्ति के बाद ही हरि कथा जीवन में आती है, और हरि कथा आने के बाद भजन आ जाता है, भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। हम हरि नाम संकीर्तन करने लगते हैं या हम भगवान में डूब जाते हैं, है ना, हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगते हैं, हम पूजन करते हैं, भक्ति के समस्त अंगों का पालन करने लगते हैं, भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। और ये क्या है, ये भगवान को पाने का

हम पढ़ना लिखना सीखते हैं तो जो बुक्स होती हैं उन किताबों में कहानियाँ ही तो होती हैं, शुरू में कहानियाँ होती हैं, बाद में जो है फिलॉसफी होती है, और बाद में और भी बहुत कुछ होता है। तो कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं है, और भगवान की कहानियाँ कोई मिथ तो है नहीं। लोग कह देते हैं भाई ये मिथ है, ये तो कथाएं हैं मात्र, पर ऐसा नहीं है, वो तो लीलाएं हैं ठाकुर जी की, और इतनी रसमयी लीला है कि लगता है अरे बड़ी काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है। जैसे भगवान त्रिकाल सत्य, ऐसे भगवान की लीलाएं भी त्रिकाल सत्य हैं और महासत्य हैं, और हम क्या करें, सत्यम परम धीमहि, ऐसे ही सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करें, उनकी लीलाओं का श्रवण करें, चिंतन करें और उस लीला को प्राप्त करना चाहें। बस इतनी सी बात, कोई विशेष बात नहीं है, आसान है, बहुत आसान। और जब ऐसा हो जाता है तो भगवान से तो प्रेम होगा ही, पर भगवत प्राप्ति के जो साधन है उनसे पहले प्रेम हो जाता है, यानी भगवान की कथाओं को सुनने से प्रेम हो जाता है। भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं, भगवान की कथा के जो वक्ता हैं, जो भक्त हैं, वो अच्छे लगते हैं, उनकी चरण धूलि हम बार बार अपने माथे पर ग्रहण करते हैं और अपने मस्तक को उत्तमांग बना लेते हैं। उत्तमांग तो है ही, क्योंकि इसी में बुद्धि है, ब्रेन इसी में है, ब्रेन से ही सब कुछ कंट्रोल रहे। लेकिन ये उत्तम अंग तब बन जाता है पूर्ण रूपेण से जब हम भगवान के आगे अपना सिर झुकाते हैं और भगवान के भक्तों के चरण रज अपने माथे पर लगाते हैं, है ना। तो जब कृपा होती है भगवत चरण रज की, तो मन और भी आनंदित हो जाता है और आसक्ति से युक्त हो जाता है भगवान के प्रति। तो ठाकुर जी जो हैं सबके सुहृद हैं, सुहृद का अर्थ होता है वेल विशर, शुभचिंतक, दयामय हैं, वात्सल्यमय हैं, नित्य स्वामी हैं, है ना। समस्त उत्पत्ति लय जो ब्रह्मांडों की है वो सब उनकी एक दृष्टि से ही हो जाता है, तो भी वो यहाँ इस धराधाम पर आकर लीला करते हैं ताकि उन लीलाओं को सुन करके हम उनके परायण हो जाएं, उनके प्रति आकर्षित हो जाएं, उन्हें पाना चाहें, उन्हें सराहें, उनकी महिमा को जानें, जानें कि संसार में वस्तुतः प्रेम नहीं है, संसार में सिर्फ काम है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना, और जो हमारे काम आ जाए हम उससे प्रेम करते हैं, और जिस क्षण वो हमारे काम आना बंद कर दे तो फिर हम उसे फेंक देते हैं। सीधी सी बात है, स्वार्थ। लेकिन असली स्वार्थ है भगवान से प्रेम करना। मनुष्य जीवन लिया है और इसी स्वार्थ को अगर नहीं पाया तो फिर क्या पाया। इसीलिए वो जो सर्वेश्वर हैं ठाकुर जी, समस्त प्राणियों के जो आत्मा हैं, स्वामी हैं, सुहृन मित्र हैं, हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, वो प्रभु ही हमारे लिए इतने दयामय हैं कि वो हमें ऐसे रसिक भक्त की उपलब्धि कराते हैं। उनके चरणों में रोते रोते अगर हम ये फरियाद करते हैं तो भगवान जरूर ऐसे एक सरस भक्त को हमारे जीवन में लाते हैं जिससे हम भगवत कथा के प्रति अनुरक्त होते हैं और समस्त भक्तों के प्रति भी अनुराग युक्त हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की, और इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

ये थी कृष्ण प्रेमधारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का

बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेनबो स्टेशन। प्रोग्राम शुरू हो गया है गुड मॉर्निंग दिल्ली विद योर आरजे खुशी ओनली ऑन 102.6। और जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि भाई देखो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हम रहे या ना रहे ये वक्त और दुनिया भर के तमाम काम सब चलते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं रुकता। और इसी काम को खत्म करने के लिए, जो कि एक्चुअली में कभी खत्म नहीं होता, हम जीना भूल जाते हैं। तो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, क्योंकि वक्त भाग रहा है। और आज हो गई है 10th of May 2026, संडे का दिन है, मदर्स डे है और बेहद खास है। क्यों, ये सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड टू द प्रोग्राम।

सबसे पहले तो ये जो स्पेसिफिक डेज बन जाते हैं ना, वो एक्चुअली में हर दिन होना चाहिए। आई मीन, अपनी माँ की ज़रूरत को समझने के लिए, उन्हें खुशियाँ देने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए हमें किसी एक दिन का वेट नहीं करना चाहिए। पर अब चूंकि ये दिन है जो कि 1908 में अमेरिका में पहली बार मनाया गया था, विच इज़ मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज। मेक योर मदर एंड मेक योर सेल्फ फील मोर स्पेशल टुडे, क्योंकि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, माँ की दुआओं का असर लगता है।

0: लीजिए सुनते हैं अब आकाशवाणी @90 का एपिसोड नंबर 9।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी @90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात होगी राजधानी दिल्ली में रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बारे में। ये बात है 1936 की, जब भारतीय प्रसारण ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया, जब देश की राजधानी दिल्ली में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। 1 जनवरी 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का दिल्ली केंद्र आधिकारिक रूप से ऑन एयर हुआ। पहले ये केंद्र 18 अलीपुर रोड दिल्ली स्थित अस्थायी स्टूडियो से संचालित किया जाता था, जबकि इसका 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर मॉल रोड पर स्थापित था। दिल्ली केंद्र की शुरुआत के साथ ही रेडियो प्रसारण को एक नई दिशा मिली। कला, शिक्षा और संगीत जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला, जिससे रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा बल्कि समाज के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का भी एक सशक्त साधन बन गया। इसी दौर में समाचार सेवा और अनुसंधान विभागों की भी स्थापना की गई, जिसने प्रसारण को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाया।

धीरे धीरे रेडियो एक नए रूप में उभरने लगा, नजरिया बदलने लगा और एक ऐसे माध्यम के रूप में विकसित होने लगा जो देश को शिक्षा, संस्कृति, खबरों और कई जानकारियों से जोड़ता है। तो श्रोताओं, ये बात हुई राजधानी दिल्ली में रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बारे में और अगले अंक पे हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन के बारे में। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

जब भी कुछ नया शुरू होता है ना, तो एक नया ही मंजर क्रिएट हो जाता है। आज है 10th of May और आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अगर आपको बताऊं तो सन 1857 में पहली भारतीय क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन मेरठ से भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यस, 10th of May 1857। साथ ही 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। एक और हिस्टोरिक मूवमेंट है, बता दी हूँ इस गाने के बाद।

जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के दिन की एक और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में आपको बताऊंगी, तो 1993 10th ऑफ मई 1993 में संतोष यादव जी लगातार दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। वही है ना, एक बार जो लक्ष्य बना लिया बस पीछे नहीं हटना चाहिए, यही सोचा संतोष यादव जी ने। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स ऑलवेज ऑलवेज हेल्प्स, बस अपनी तरफ से आपने कोई कमी नहीं छोड़नी। और लक्ष्य आपके हाथ में होगा।

शंकर महादेवन की आवाज में ये बहुत ही मोटिवेशनल ट्रैक फ्रॉम द मूवी लक्ष्य। आप सुन रहे थे रेनबो स्टेशन 102.6 पर, जहां प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आर से खुशी के साथ। आज है 10th of May और आज के दिन जिन महान हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया उनमें है 1983 में ज्ञानेंद्रनाथ मुखर्जी, जो कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। साथ ही 2010 में मैक मोहन, जो कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर्स से छोटे से ब्रेक।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

10 मई के दिन जिन महान हस्तियों ने जन्म लिया लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनमें है रामेश्वर नाथ काव जी, जो कि भारत की गुप्तचर संस्था रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के संस्थापक थे। BS Keswan जो कि भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पंकज मलिक जी जो कि बंगला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता रहे, साथ ही विचित्र नारायण शर्मा जी जो कि जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे। इनके साथ ही अब अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप अपना जन्मदिन किन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं बताती हूँ इस गाने के बाद।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्व

0: गणना का काम पूरा हो गया है। वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

10th of May 2026, यानी आज के दिन अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं 1980 में जन्म योगेंद्र सिंह यादव जी के साथ, जो कि परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक हैं। साथ ही 1929 में जन्मे सुभाष कश्यप जी, जो कि भारतीय संविधान के विशेषज्ञ और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। और साथ ही 1986 में जन्मे पेंटाला हरिकृष्णा, जो कि भारतीय शतरंज यानी कि चेस प्लेयर हैं। तो इनको और आज जिन जिन का जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं।

गीत गुंजन आ गई है स्टूडियो में दिल्ली, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10 दिल के तराने गाने नए पुराने में, बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साथियों, आप सुन रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ आपके साथ गीत गुंजन, आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, हम आपके बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल पास है। करना क्या है आपको, भी हमारे साथ रहना है।

श्रेया घोषाल और हारनूर की आवाज में दिस ट्रैक वाज फ्रॉम द मूवी भूल चुक माफ। अच्छी मूवी थी, वन टाइम वॉच। अगर नहीं देखी तो आप अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हो। आईपीएल मैचेस तो चल ही रहे हैं, उनके साथ ये भी देख सकते हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हो गए हैं और रेनबो की ओल्ड डायरी से जो गोल्डन वाला सॉन्ग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फिल्म आनंद से मना। देखिए आवाज में।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने जहां चल रहे हैं बॉलीवुड के ट्रैक्स वो भी बैक टू बैक, और रेनबो की ओल्ड डायरी से बीच बीच में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं गोल्डन सॉन्ग। और इस सॉन्ग्स और इस बार जो मैं गोल्डन सॉन्ग लेकर आई हूं वो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। इनफैक्ट बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाता है कई बार म्यूजिक टीचर हारमोनियम लेकर, और ये गाना ज़रूर सिखाती है बच्चों को। द बर्निंग ट्रेन से ब्यूटीफुल ट्रैक सुषमा श्रेष्ठा की आवाज़ में।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

दुनिया पुल करे या नया करे, टाइम तो फ्लाई होता ही चला जाता है। 9:45 हो गए हैं और रेनबो की ओल्ड डायरी से आपके लिए जो गोल्डन वाला ट्रैक लेकर आई हूँ वो है फिल्म सागर से किशोर दा की आवाज में।

0: रही है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने आपकी आरजे खुशी के साथ। इस वक्त दिल्ली का तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस, जो कि आज मैक्सिमम जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 28। वहीं अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो मैक्सिमम जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस विद एक्सेसिव हीट। तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रखें टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, और उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा खांड हो गई या चीनी गई और काला नमक हो गया तो बिल्कुल जो पसीना बहा है ना उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और आपको डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं रेनबो स्टेशन पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। 10:05 से 11 बजे तक आपके साथ रहेंगी हिमानी दत्ता मैचलेस म्यूजिक आर प्रोग्राम में, विच इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम। 11 से 12 आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जिसमें आज का विषय है अप दीपो भव स्वयं प्रकाशवान बने। अतिथि रहेंगे प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम कुमार जी नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बिहार से, और श्री सतीश कुमार जी व्यवहारिक प्रशिक्षक बौद्ध संस्कृति और दर्शन। 12:05 से आप 1 बजे तक सुनेंगे प्ले इट कूल वेस्टर्न म्यूजिक है ये हिमानी के साथ। 1:05 से 2 बजे तक आप सुनेंगे मेरा वाला सॉन्ग राजेश कुमार के साथ, और आशियाना प्रोग्राम सुनेंगे 2 से 3 मोक्षी के साथ, और रेनबो पर ये प्रोग्राम का सिलसिला इसके आगे भी यूं ही जारी रहेगा।

हर्षा खुशी यानी मेरे जाने का वक्त आ गया है, और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब मैं घर से निकलती हूँ दुआ भी साथ चलती है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लिसनर्स, टू ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज। अगर आपकी भी माँ है तो प्लीज मेक हर फील स्पेशल टूडे। इसी विचार के साथ आज खुशी को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, खुश रखिए, और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
0: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।

रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: So, before I tell you the details of that song, there is only one person who could probably guess the artist, and not probably, actually guess the artist and sent me the name. And the person who guessed this is Ravi Prasad from Hyderabad. A big applause for you. And yes, you're absolutely right. That was the voice, the unforgettable voice of Kundan Lal Sehgal. Sadly, all of these artists, they are vanishing from our thoughts and minds and memory, and they are priceless. We need to cherish them, both from the Western music world and the Hindi film music world. And moving on, time for me to take a break, and I will see you on the other side with something very important.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
0: Welcome back. You're with us on Akashwani Rainbow, and the show is called Matchless Musica. And there are two more people who sent in their messages just in the nick of time, but I had already announced the break, so I went right ahead with it. And the two people who guessed the name of the singer are Samantha from Bengaluru. Yes, indeed, it is K.L. Sehgal, Kundan Lal Sehgal. And then the other one who guessed it was Ravi Joshi from Meerut. So kudos to three people. At least somebody out there remembers, and that is very, very heartwarming. So as I did mention earlier, that today for the show, I've chosen the theme of diving deep down into the ocean of time. And keeping in sync with the theme, I'm going to dive into an extra special time zone related to Akashwani. Very often on my shows, I've mentioned how honored we all are to be associated with the largest radio network in the world, irrespective of which side of the mic we are on. And now, with

0: That was K.L. Sehgal once again from the 1946 film Shah Jahan. The lyrics by Majroo Sultanpuri and the composition by Naushad Ali. Jab Dil Hi Toot Gaya, one of his best considered performances. And time now for me to take a break and I will see you on the other side.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
0: वेलकम बैक एंड आई हैव ओनली वन पर्सन हु हैज गेस्ड द नेम ऑफ द सिंगर हु यूज्ड टू योडल एज पार्ट ऑफ हिज सिंगिंग एंड दैट इज ऑफ कोर्स नन अदर देन द लेजेंडरी किशोर कुमार एंड यस His inspiration for yodeling came from Jimmy Rogers. And then I have this message once again from Mohammed Sarfar Azalam. And he is delighted to hear the tracks by K.L. Sehgal. And he says, listening to it felt like reliving the beautiful memories of a golden era. And your words for me, I'll keep it for myself with a humble thank you. Really means a lot to me. And moving ahead, this is Sunita Negi from Solan. And oh my God, thank you so much. Truly, truly means a lot for me. And you know, when not only me, all of my friends, colleagues out here, when we receive these kind of messages, it truly makes our day and gives us more inspiration to work harder when we come back here the next time and present the program. So a big thank you going out to each and every one of you. And moving ahead on the Matchless Music Hour today, we are diving down deep into the ocean of time and enjoying the music that is close to being a century old. Once again, let's go back in time to Gene Autry in 1939 and enjoy the celebration of a simpler, authentic and free cowboy country life.

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में बौद्ध दर्शन की हमें फिर से याद दिलाई है, हम सभी को प्रेरित किया है कि एक बार फिर से हम बौद्ध दर्शन को समझें और इसकी समसामयिकता क्या है ये जानें। तो आइए, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध दर्शन को एक बार फिर से हम सभी को याद दिलाया है।
2: साथियों, आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपोन ओज्जेर रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है, दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़ें।
1: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द। और आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को और इनके माध्यम से आज इस विषय के बारे में हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत कर रही हूँ प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी का। आप बौद्ध अध्ययन विभाग नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय नालंदा में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं स्वागत कर रही हूँ सतीश कुमार जी का। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका है और बौद्ध दर्शन की जो शिक्षा है वो आप युवाओं तक पहुँचाते हैं।

0: जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा जिसकी प्रासंगिकता हर युग में, हर काल में और हर स्थान पे उतना ही समीचीन है।
1: जी, यानी हर जगह वो दर्शन अभी भी है, वो शिक्षाएं अभी भी हैं। जी, तो सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आधुनिक युग है, इसमें कॉरपोरेट को और कॉरपोरेट कल्चर को ऐसा देखते हैं कि भागदौड़ भरा एक कल्चर है और बहुत ही प्रतिस्पर्धा है और जिसमें बस किसी भी तरह हम जो हैं बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन के बारे में सोचते रहते हैं। आप क्योंकि ट्रेनिंग देते हैं बौद्ध टीचिंग्स की कॉरपोरेट्स को, तो मैं जानना चाहूंगी आपका अनुभव कि किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है और आपको क्या लगता है ये क्यों जरूरी है।
2: जिंदगी की भागदौड़ और धन कमाने की आपाधापी में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वह मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता जा रहा है, जिसमें मानसिक तनाव का होना बड़ा ही सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन मानसिक तनाव विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मूल कारण बन जाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट डिजीजेज रही हो, यहां तक कि स्ट्रोक, और कई बार तो डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम घर परिवार और रोजगार में सामंजस्य स्थापित करने में हम असमर्थ महसूस करने लगते हैं। और केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही नहीं, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी और परिवार को जाने और समझे तो हम पाते हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हम कई मूल समस्याओं का सामना करते हैं जो विशेष रूप से मानसिक रूप से जुड़ी हुई है। हम लोग इफेक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस तरह के विचार, उस तरह के थॉट्स हमारे मन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आज का जो दौर हो गया है, एक तरफ हमें धन कमाना है, दूसरी तरफ हमें बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना है, तीसरी तरफ परिवार और परिवार के सदस्यों में आपस में संतुलन बनाए रखना है, तो इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब मैं धम्म की तरफ देखता हूं, बुद्ध की तरफ देखता हूं, बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मस्तिष्क में विचार ही आते हैं।
1: जी।
2: ये जो विचार आते हैं, विचार मनुष्य को प्रेरित करते हैं कोई एक्शन लेने पर, कोई ना कोई तो एक्शन होगा, क्योंकि जो विचार है वो एक बीज के जैसा है, अगर उस बीज को सही पानी मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, सही मौसम मिल जाए, तो वो एक जो बीज है वो पौधा बन सकता है। लेकिन समस्या ये है, क्या उस बीज को मैं पहचान पाया, क्योंकि अगर वो जहरीला बीज है तो वृक्ष भी जहरीला होगा, और अगर वह अमृत तुल्य बीज है तो अमृत से भरा हुआ होगा, जो केवल हमारे परिवार का नहीं समस्त समाज का कल्याण कर पाएगा। तो वो जो विचार है वो विचार एक्शन में तब्दील होगा, और जब एक्शन होगा तो उसका प्रतिफल भी आएगा। तो प्रतिफल दो तरह के होंगे, या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। अगर तो नकारात्मक प्रतिफल है तो हमारा जो प्रोसेस है वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर हमें सकारात्मक महसूस हो रहा है तो फिर मैं रिपीट करूंगा एक्शन को। लेकिन अगर शिक्षा लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है तो शिक्षा को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो ऐसे में जब रिपीट एक्शन होता है तो वो आदतों में तब्दील हो जाता है, फिर ये आदतें लगातार बनी रहती हैं, तो ये आदतें आपके चरित्र का निर्माण कर देती हैं। जब चरित्र लगातार बना रहता है तो वह आपके भाग्य का निर्माण कर देता है। तो यही बुद्ध हमें समझा रहे थे कि मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं अगर वो शुद्ध हैं तो मेरा आने वाला भविष्य शुद्ध हो सकता, पवित्र हो सकता है, लेकिन अगर मेरे विचार अशुद्ध हैं तो मेरा भविष्य भी अशुद्धि की तरफ बढ़ रहा है।
1: जी, यानी अपने विचारों को देखना हमें भगवान बुद्ध जो है वो सिखाते हैं। जी, और कॉर्पोरेट में हर तरह के जो परिवार हैं वो जुड़े हैं और आप उनको ये सिखाते हैं।
2: जी,
1: ये बातचीत जो है बहुत रोचक मोड़ पर है, और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर इस मोड़ पर आप कौन सा गाना अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
2: मैं यह बताना चाहूंगा कि गाना है, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामाडोल, तब मानव तो मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। अंगुलीमाल फिल्म का गाना है, 1960 में आया था।
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है।
3: जब दुख की घड़ियां

0: तो इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं, बौद्ध अध्ययन विभाग से हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और साथ ही कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से हैं सतीश कुमार जी। तो राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो एक शब्द जो है वो सहज ही मन में आता है, शांति। जब कभी हम उनकी छवि भी देखते हैं तो इतनी शांत स्वरूप है कि उसको देखकर शांति का संचार होता है मन में। और आज का जो युग है आपाधापी का है और हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो संघर्षों में घिरे हैं और कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं भी चल रही हैं, ऐसे में जो बौद्ध दर्शन है इसका क्या महत्व है और क्या ये आज ज्यादा जरूरी हो गया है या समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है?
1: आपने अभी दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला
0: जी।
1: एक व्यक्तिगत शांति की बात की और दूसरी बात आपने ये कहा है कि दुनिया में इतनी अशांति फैली हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखिए, दोनों दो बातें हैं। बुद्धिज्म में, बौद्ध दर्शन में और बौद्ध अध्ययन में इसके तीन सोपान हैं, पर्यत्ति, पटिपत्ति और पटिवेधन। पर्यत्ति के तहत हम थ्योरीज को जानते हैं।

0: पटिपत्ति के तहत हम उसको अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं
1: जी,
0: और पटिवेदन के स्थिति में उस स्तर पे हम रियलाइज करते हैं। तो जब हम अपने मन को, ये चीज उपनिषद में भी है
1: जी,
0: जिसको हम कहते हैं नॉन माइंडिंग प्रोसेस, अमनी भाव। अमनी भाव में होता है कि जब आपका मन निरंतर चिंतनशील है
1: जी,
0: अगर आपके पास एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है तो आपका चिंतन ज्यादातर निगेटिव दिशा में जाएगा। और जब वो निगेटिव दिशा में जाएगा, नकारात्मक दिशा में जाएगा, तो वो आपके हर सेल को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निगेटिव आएंगे और आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए और काउंसलिंग जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग होनी चाहिए
1: जी।
0: हमें किस तरह की चीज सोचना है, हमें क्या सोचना है, ध्यान कैसे करना है और चित्त में शांति कैसे बना के रखना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक जगह और जब उनके धर्म को कंक्लूड किया गया
1: जी,
0: तो वहां कहा जाता है सब पापस अकरणं, हर तरह के पाप को छोड़ देना, नहीं करना
1: जी,
0: कुशलस्य उपसंपदा, मोरल टेंडेंसीज को बढ़ाना, सचित्त परियोदपनं, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ओन माइंड, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, सचित्त परियोदपनं, एतान बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का शासन है। तो सील का पालन करते हुए, मोरलिटी का पालन करते हुए, मोरल प्रिसेप्ट्स का पालन करते हुए
1: जी,
0: आपको अपने कॉन्शियसनेस को, चित्त को परिशुद्ध कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत शांति इसी में निहित है। आपकी दूसरी बात थी
1: जी,
0: विश्व में इतनी अशांति क्यों फैली हुई है। एक कॉन्सेप्ट है विपल्लास, विपल्लास जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं किसी चीज को उल्टा देखना। जिसमें अशांति है उसमें हम शांति ढूंढते हैं, जहां दुख है उसमें हम सुख ढूंढते हैं। आज पूरी दुनिया अगर मानवता पे केंद्रित हो जाए, ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए, तो तरह तरह के जो विध्वंसक हथियार हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। कोई भी वैज्ञानिक जब कोई विध्वंसक हथियार बनाएगा उसके पहले सोचेगा इसका उपयोग कहाँ होगा। उपयोग मानवों के ऊपर होगा, क्षति किसकी होगी, मानव की क्षति होगी, वो उसी दिन उसको रुक जाना चाहिए। बनाना क्या चाहिए, ऐसी ऐसी दवाओं का आविष्कार करना चाहिए जिससे कि व्याधियों का नाश हो, दुखों का नाश हो। ऐसा तो हो नहीं रहा है। और हम जबकि जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाने वाली है
1: जी।
0: अगर हम टेरिटरी, आज इतिहास गवाह है, सिकंदर ने भी टेरिटरी जीता, सब ने टेरिटरी जीता, किसी के पास आज वो नहीं है। इस सत्य को, इस तथ्य को पूरे दुनिया के शासकों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी चीजें नश्वर हैं, क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है
1: जी।
0: इसीलिए अगर हम इन मुद्दों पे युद्ध की स्थिति लाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, समाज का सम्मान करना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान बुद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध अध्ययन के अनुसार अपने आप खत्म हो जाएगा
1: जी। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत से अवसरों पर कहा है कि ये युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती है, ये कहा है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है ये भारत से उपजा है और पूरी दुनिया में फैला है, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिए, उनके दर्शन दिए, तो ऐसे में क्या वजह है कि हम दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहां ये पाते हैं कि व्यवहार में जो बौद्ध दर्शन है उसकी सीख है, लेकिन भारत में कभी कभी हमारा अपना जुड़ाव जो है इनसे नहीं रहा है, क्या वजह आप पाते हैं?
0: देखिए, ऐसा नहीं है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि भारत में बौद्ध नहीं है
1: जी।
0: भारत की भूमि कभी भी बौद्ध विहीन नहीं रही है
1: जी।
0: आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जाते हैं सिक्किम में, मणिपुर के कुछ हिस्से में, लेह लद्दाख में, वहां की अधिकतम आबादी जो है वो बौद्ध आबादी है। एक तो ये बात
1: जी।
0: इसीलिए अगर ये हम कहते हैं, हाँ स्थान परिवर्तन हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है
1: जी,
0: लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जब पूरे भारत में बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचार लोगों के रक्त में समाया हुआ है
1: जी।
0: जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो आप बुद्ध का नाम लेते हो, बुद्ध को स्वीकार करता है, पूजन करता है, यजन करता है। तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे भारत के मानस में भगवान बुद्ध समाये हुए हैं
1: जी।
0: और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है जहां बुद्धिज्म प्रत्यक्ष रूप से आदिकाल से आज तक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है, प्रायोगिक नहीं है। हम तो सील का पालन करते हैं, हर भारतीय सील का पालन करता है, हर भारतीय समाधि का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, हर चीज का अभ्यास करता है। हम कैसे मान लें कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है? है
1: यानी हमारे व्यवहार में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो अच्छी बात हम फॉलो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सहज शब्दों में हमें मिली है, वो असल में बौद्ध दर्शन का हिस्सा है।
0: बौद्ध दर्शन का भी हिस्सा है, क्योंकि ये अच्छी बातें, क्योंकि भारत का जो दर्शन है, जो सनातन शब्द है, जो सनातन परंपरा है, न ही बेरेन बेरानी सम्मंतित कुदाचनंग अबेरेन च सम्मंति एस धम्मो सनातनो, बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, मित्रता से बैर शांत होता है। अब इसको किसी धर्म विशेष में बांधना उचित नहीं है, भगवान बुद्ध के मुंह से भी यही बात निकला है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये बात भी आती है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि ही ऐसी है
1: जी।
0: हमने कभी टेरिटरी नहीं जीता है, हमने तो सिर्फ विचार फैलाया है, शांति फैलाई है, शील फैलाया है, समाधि और प्रज्ञा का विस्तार किया है। इसीलिए हम पर पूरी दुनिया, मानवता का इतिहास ये आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने शस्त्र बल से कहीं कुछ भी जीता है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि तो ऐसी भूमि है।
1: तो जो नैतिक मूल्य हमें चाहे वो जातक कथाओं से मिले या माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानी से मिले या बचपन में हम छोटी छोटी जो पुस्तकें पढ़ते हैं कहानियों की, कथा कहानियों की, उनसे मिले, वो बौद्ध दर्शन की भी बातें करती हैं और हमारे अन्य जो सनातन धर्म से जुड़े हुए अन्य जो दर्शन हैं उनकी भी बातें करती हैं। मैं यहाँ ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी। आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा जाए,
1: बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा रहे हैं।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार जी। तो मैं सतीश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, कॉरपोरेट ट्रेनिंग जो आप देते हैं उसमें आपने हमें बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं और उन्हें कैसे हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। तो आपके सेशंस होते हैं अलग अलग जो विभाग हैं उनमें, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेशन तो एक दिन का हुआ, दो दिन का हुआ, कैसे आप ये श्योर करते हैं कि जो आपने सिखाया है वो लोगों को समझ में आ गया है और उसके बाद वो व्यवहारिक तौर पर उसे फॉलो भी कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है उन सभी को?
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बौद्ध दर्शन को या धम्म के सिद्धांतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। रीजन क्या है, वो बिजनेस वर्ल्ड है। बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्री टेस्ट होता है, तो सर्टेन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है, तो पोस्ट टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उनके क्या अंक रहे और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनके अंक क्या रहे। अगर अंक बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है, और अंक नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो समझ नहीं पाए हैं। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ छोटा सा जिससे अंदाजा लगाएगा, परंतु धम्म की जो शिक्षाएं हैं उनको दो दिन में अगर सीख जाए ऐसा संभव नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि धम्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे रेगुलर अभ्यास में लाना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो मानसिक शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी।
1: और मानसिक शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम विचार शून्य ना हो जाएं, और विचार शून्य होने के लिए हमें विपश्यना साधना करनी चाहिए। विपश्यना साधना बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आनापानासति, सांस का लेना और सांस का छोड़ना और मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना सांस की आवन जावन के ऊपर। उससे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मस्तिष्क को स्थिर करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। अभी हम यहां बैठे हैं, बैठे बैठे वो हमारे घर भी जा सकता है।

0: है, वो बैठे
1: जी
0: बैठे वो बाजार में चला जाएगा, वो किसी मित्र से मिलने लगेगा। ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो ध्यान नियंत्रित नहीं रह पाता। तो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी काम करें। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था स्कूल जाता था तो मेरी माँ मुझे कहती थी, बेटा ध्यान से स्कूल जाना। मम्मी ने कभी भी नहीं कहा कि बेटे ज्ञान से स्कूल जाना। जब स्कूल में हम पेपर दे रहे होते थे एग्जाम के समय, जो टीचर पूरे साल ज्ञान पढ़ाता था वो एग्जाम के समय कहता था, बेटे ध्यान से पेपर करना। तो जब मैंने अध्ययन किया धम्म को, तो मुझे पता चला कि ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का गुरु ध्यान है। मैं कुछ कह रहा हूं, अगर आपका मेरी बातों में ध्यान नहीं है तो मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। हम कोई मूवी देखने गए और मूवी में हमारा ध्यान नहीं है तो
1: जी
0: मूवी में चल क्या रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कौन कौन से कलाकार क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं और
1: जी
0: माल बेचने की बात होती है, या माल बेचने के बाद किसी समस्या के समाधान की बात होती है, या फिर कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस की बात होती है, या किसी टेक्निकल थिंग की बात होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि जो है आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और सांस की आवन जावन पे ध्यान लगाएं। ये तो मस्तिष्क को स्थिर करने का एक प्रैक्टिस है, बट
1: जी
0: रोजाना आपको एक काम कर रहे हैं तो एक काम करते समय उसी में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए फोकस, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन,
1: जी
0: ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जो चल रहा है उसकी मुझे समझ तो हो,
1: यानी
0: क्योंकि
1: जो बातें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं, सेल्फ
0: जी
1: ग्रूमिंग का हिस्सा मानते हैं,
0: जी
1: कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ करें और सहज भाव से, सजग भाव से करें
0: जी
1: और शांत भी रहें, चीजों को समझें, है
0: जी
1: ना, और अपने आप को भी जो है वो जज करते रहें,
0: जी
1: सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वो सब जो है इनके बीज आप कह रहे हैं कि वो ध्यान में है और ध्यान जो है वो धम्म से जुड़ा है। तो ये शिक्षाएं जो है आप इस तरह से युवाओं तक पहुंचाते हैं।
0: जी
1: जी मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर हम बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करते
0: जी
1: हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो इसे रिलीजन स्पेसिफिक मानते हैं।
0: जी
1: कैसे बौद्ध दर्शन जो है वो धर्म से अलग है?
0: धम्म की जो शिक्षाएं हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी, एस धम्मो सनंतनो, ये एक्चुअली धम्म है, धर्म
1: जी
0: है ही नहीं।
1: जी
0: जो धम्म है वो धर्म से बड़ी चीज है। धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूर्य दिखे तो दिन है वरना काली रात। तो लोगों को धर्म ऐसा लगता है कि पूजा पद्धति धर्म है,
1: जी
0: लोगों को लगता है परंपराएं निभाना, रूढ़िवादिताओं को निभाना, संस्कारों को निभाना, परंपराओं को निभाना, उन्हें लगता है वो धर्म है। असल में धर्म बिल्कुल अलग चीज है।
1: जी
0: जिस तरह से अग्नि जलाने का काम करती है, पानी शीतलता देने का काम करता है, तो पानी का धर्म है शीतलता देना,
1: जी
0: अग्नि का धर्म है वो गर्माहट देती है। ठीक उसी तरह से जो मनुष्य का धर्म है
1: जी
0: वो है करुणा, मैत्री, बंधुत्ता,
1: जी
0: उसके आचरण में, उसके व्यवहार में मानवता परिलक्षित होनी चाहिए। जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा उत्पन्न होने लगे जहां मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता है, जहां लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहां रंग भेद समाप्त हो जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की व्याधियां स्लोली एंड ग्रेजुअली समाप्त हो करके मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती हैं, तो उस समय हम धम्म की गंभीरता को आचरण में धारण करने का कार्य कर रहे होते हैं।
1: जी
0: लेकिन मनुष्य होने के बाद मुझे एक मनुष्य छोटा प्रतीत होने लगता है, तो वहां मिलावट आ जाती है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वहां पर उसकी मानसिक अवस्थाएं विकृत हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां समाज में उपलब्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं, उनका समापन ही धम्म की तरफ हमें लेकर के जाता है।
1: जी तो समसामयिकता उसकी ये है कि जो सामाजिक कुरीतियां उस वक्त थी उनको दूर करने के लिए धम्म जो है वो शुरू हुआ, और आज भी जो सामाजिक कुरीतियां हम अपने आसपास देखते हैं उनका निवारण हम इस दर्शन में पाते हैं। जी बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: इकबाल फिल्म का एक गाना है आशाएं।
1: जी ये आपको पसंद है गाना?
0: जी ये बहुत अच्छा है।
1: जी बहुत ही अच्छा सा गाना है, एकदम से मूड जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। तो हमारे सभी श्रोताओं को हम ये गाना सुनवा रहे हैं।

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार हमारे विशेषज्ञ हैं और हम अपने विशेषज्ञों से ये जान रहे हैं, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज, इनसे हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से बौद्ध दर्शन जो है वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बना रह सकता है और कैसे हम अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्ध दर्शन से भी निकाल सकते हैं और वो समाधान हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अब राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की तो एक शब्द बार बार हमें सुनाई देता है, हम पढ़ते हैं मध्यम मार्ग। आज का जो युग है, एक तो इस पर बहुत ज्यादा दबाव हम महसूस करते हैं अपने आप को हर पल साबित करने का, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हर समय हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है,

0: पीयर प्रेशर एक महसूस होता है। ग्लोबल विलेज में हम जी रहे हैं, हम एआई जो है अब जीवन का हिस्सा बन गया है। तो जहां कृत्रिम बौद्धिकता जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी हो रही है, वो हमारे जीवन को कहें कि कंट्रोल करती जा रही है, वहां पर मध्यम मार्ग जो है उसे हम कैसे अपना सकते हैं और इसका क्या लाभ हमें होगा?
1: देखिए, मध्यम मार्ग जो है वो एक तरह से बौद्ध दर्शन का मेरुदंड है।
0: जी,
1: भगवान बुद्ध ने अपनी ही वाणी में कहा था कि मझिमा पट्टी पटी पदाति चक्षु करनी यान करनी, ये जो मध्यम मार्ग है यह आंख देने वाला है, आई ऑफ विजडम देने वाला है, और ये हमें नॉलेज देने वाला है। क्योंकि द्वे अंते भिक्खवे पब्बजितेन न सेवितब्बा यो चायं कामे सुकाम सुखल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुज्जनिको अनरियो अनर्थ संहितो, यह हमें दो अंतों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग, अब जैसे देखिए आप की चर्चा में परिचर्चा में कॉरपोरेट शब्द बार बार आ रहा
0: जी।
1: है। मध्यम मार्ग में एक सोपान है सम्मा आजीवो राइट लाइवलीहुड, इसमें बताया गया है कि किस तरह की आजीविका हमें स्वीकार करनी चाहिए, किस तरह के आजीविका पे हमें जीवन जीना चाहिए
0: जी।
1: और यही सारी चीजें आगे बढ़ते हुए सुमाकर की एक किताब आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शब्द को क्वाइन किया था
0: जी।
1: और आज ये जो है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक अल्टरनेटिव सिस्टम बन चुका है पूरे विश्व में और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई है। अगर इसी मध्यम मार्ग को हम उठाएं मेडिकल साइंस के फील्ड में ले चलते हैं तो वहां भी जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं उसकी वहां पे बहुत प्रासंगिकता बढ़ गई है
0: जी।
1: अभी 7 टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी के टेक्निक्स हैं जो पूरी तरह बौद्ध दर्शन पे आधारित है, माइंडफुलनेस पे आधारित है, जो मेडिकल साइंस की बात है
0: जी।
1: शिक्षा में हम अपने मेंटल कैपेसिटी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें जिससे कि हमारा जो एक ह्यूमन कैपेसिटी है वो विकसित होकर सामने आए
0: जी।
1: रही बात जो मैकेनाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया का, हम जो मशीनों पे आश्रित हो रहे हैं, तो देखिए मशीन को चलाएगा कौन? मशीन को मनुष्य चलाएगा, मनुष्य को उसका मन उसको गाइड करता है। चूंकि आपने धम्मपद में देखा होगा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, अब AI कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हम AI के माध्यम से हर चीज को देखें समझें, लेकिन उसके जड़ में नैतिकता शब्द का होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमें नैतिक होना बहुत आवश्यक है
0: जी।
1: और नैतिक सील समाधि और प्रज्ञा, हमें सील का पालन करते हुए समाधि पे चलते हुए प्रज्ञा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम वायरस पे बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हमें हमारे अंदर सील की भावना है, हम सील का विकास कर रहे हैं, सील का अभ्यास कर रहे हैं, हम कभी ऐसा वायरस नहीं बनाएंगे जिससे कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी
0: जी।
1: हमें उन चीजों का आविष्कार करना है जो मानव के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हो
0: जी।
1: हम मस्तिष्क और मशीन का इस्तेमाल दवाओं के लिए करेंगे, मनुष्य के मनुष्यता के विकास के लिए करेंगे, न कि ध्वंस के लिए करेंगे
0: जी।
1: तो यहाँ पे बुद्ध की वाणी, बुद्ध का दर्शन समीचीन है कि मनुष्य का मशीन का इस्तेमाल मनुष्य नैतिकता के साथ करे और अपने आप को नियंत्रित रखे और इस सिद्धांत को रखे, सदैव सामने रखे, सब पापस्य अकरणंग कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनंग एतान बुद्धान शासनंग, इसको ध्यान में रखे, कोई पाप न होने पाए, चित्त परिशुद्ध हो जाए, कुशल वृत्तियों का विकास हो और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, पूरे मानवता की शांति होगी, विश्व शांति होगी
0: जी। यानी बौद्ध दर्शन में जो है वो इस तरह की बातें हैं कि व्यवहारिक तौर पर हम अपना सकते हैं और ये हमें कहीं आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हम आधुनिकता शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं तो हम लगातार आधुनिक हो सकते हैं, अपने आसपास की चीजों से, समसामयिक समाज से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये दर्शन हमें हमारे अंदर एक तरह का नैतिक मूल्य जो है वो हमेशा रखेगा, जो हम काम करेंगे वो सही दिशा में जाएगा।
1: बिल्कुल
0: जी। मैं यहाँ आपसे वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनकी बात करना चाहूंगी। पर्यावरण हमारे सामने एक चुनौती है, हम

0: लगातार बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात करते हैं कि परिवार जो हैं वो अब धीरे धीरे एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और रोजगार एक समस्या है युवाओं के सामने। और अगर है भी रोजगार उनके पास, तब कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि जो है वो भाव कम होता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा है, एक भाव मन में हमेशा रहता है असंतुष्टि। और ऐसा माना गया है कि आप असंतुष्ट होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको प्रयास के लिए प्रेरित करेगी असंतुष्टि आपकी। बौद्ध दर्शन इन सब के बीच कैसे हमें संतुलित रहना सिखाता है?
1: यहाँ भी आपने कई बिंदुओं पे एक साथ प्रकाश डाला है
0: जी।
1: सबसे पहले आपने पर्यावरण के ऊपर प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न है आपका परिवार टूट रहा है
0: जी।
1: तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी और संतुष्टि। पर्यावरण को लेके बौद्ध दर्शन में एक नई विधा की शुरुआत हो गई है 90 के दशक के बाद या 90 के दशक के आसपास, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है? जब हम तृष्णा का त्याग कर देंगे
0: जी,
1: अगर थोड़े से प्रकृति के दोहन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम तृष्णा के कारण जो है प्रकृति का दोहन असीमित रूप से करते हैं
0: जी।
1: यहाँ पे बौद्ध दर्शन में वृक्ष को कैसे बचाना है, जल की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, वायु की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सब मिलकर के एक नए विषय का जन्म देता है, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें स्थान स्थान पर इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि कौन व्यक्ति नीच है जो बीज को नष्ट करता है, जो पौधे को नष्ट करता है, जो वृक्ष को नष्ट करता है, उसी को हम नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए बुद्धिज्म में, और इसका परिणाम है कि आज थाईलैंड में भिक्षु जो है वो जब पेड़ कटने जाते थे तो भिक्षु उनको पकड़ लेते थे या पेड़ को चीवर पहना के उसको भिक्षु का स्वरूप दे देते थे जिससे पेड़ कटना बंद हो जाता था। उसी तरह की चीज हमारे यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा करते थे, चिपकू आंदोलन, वो जाके पेड़ से चिपक जाते थे
0: जी।
1: ये हमारे रक्त में बसा हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, और बौद्ध दर्शन और बौद्ध सिद्धांत तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है
0: जी।
1: चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं
0: जी।
1: स्व के लिए जीना पसंद करते हैं, हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने समाज को नहीं देख पाते हैं। अगर हम सबको एक साथ देखना शुरू करें, समेकित रूप से देखना शुरू करें, तो परिवार टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबकी भूमिका इस समाज में, इस परिवार में निर्धारित है। हम अपनी भूमिका के तहत चलें, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे को समझ के जिए, एक दूसरे को समझने के लिए जिए, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, समाज कभी नहीं टूटेगा। और तीसरी बात आपने कहा बेरोजगारी और असंतुष्टि। संतुष्टि परमंग धनंग की बात बुद्धिज्म में कही गई है। सबसे पहले बुद्धिज्म में एक चीज बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि सभी चीजें नष्ट हो जाने वाली है, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। तो जो चीजें नष्ट होने वाली है उससे मोह क्या नहीं। रही बात बेरोजगारी की, तो हम जब अपनी आवश्यकताओं को न्यून कर लेंगे तो हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होगी, हम अपना एक आदर्श जीवन जी पाएंगे और यहाँ पे हमें तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, हम तृष्णा से दूर हो जाएंगे, हमारा समाज भी एक उज्जवल, एक उत्कृष्ट समाज में परिवर्तित हो जाएगा, परिवार परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार जो है बौद्ध दर्शन पर्यावरण से लेकर के सामाजिक प्रदूषण से लेके और व्यक्तिगत प्रदूषण हर स्तर पे हमें पूरी तरह से नियंत्रित करने की, नियंत्रित रखने की बात करता है
0: जी। और जो ये कहा जाता है कि हम असंतुष्ट रहेंगे वो प्रेरणा बनेगी आगे बढ़ने के लिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, असंतुष्ट रहेंगे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और इस कारण से हम अब खुद को दबाव में रखेंगे
0: जी,
1: हर समय दबाव में रखेंगे कि जो मिला नहीं उससे ज्यादा मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों को दबाव में रखेंगे कि तुम जितना पढ़ रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, और अधिक पढ़ो
0: जी।
1: बच्चों को दबाव में रखेंगे, समाज को दबाव में रखेंगे। जब आप असंतुष्ट हैं, आपसे जुड़ा हुआ समाज भी असंतुष्ट होगा, परिवार

0: बाहर भी असंतुष्ट होगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब आप कहती हैं कि असंतुष्टि जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नहीं, भारत में एक एक क्षण के इस्तेमाल की बात की जाती है, और जब हम उपलब्ध एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके लिए संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होने की जरूरत है और एक एक क्षण का सही अर्थ में सदुपयोग करने की जरूरत है।
1: संतुष्ट होकर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करते वक्त हमें पूरी तरह वहां पर उपस्थित रहना है, सतर्क होकर और ध्यान से काम करना है।
0: बिल्कुल
1: जी। तो कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
0: हमको मन की शक्ति दे, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद की जय करे।
1: जी, गुड्डी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, और सच में ये हमारे मन को जो है वो बहुत ही बलशाली बना देता है। ये गाना सुनकर ही अंदर जो है वो भाव इस तरह का पैदा होता है। आपको सुनवा रही हैं गुड्डी फिल्म का गीत।

0: तो इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ पे, जो कि हमने बचपन से सुना है और हमारे स्कूलों में जो है ये प्रार्थना भी होती रही है, तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। चलते चलते सतीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी परिस्थिति है ही नहीं जिसकी बौद्ध दर्शन बात ना करता हो। हम चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, या हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें, और या फिर हम आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, अपदीपो भव वाला भाव भी हमें सिखाता है बौद्ध दर्शन। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बुद्धिज्म को, बौद्धिक जो स्टडीज हैं, इन सब को धर्म से अलग देख लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद अगर हमारे युवा साथी कुछ पढ़ना चाहें, इस तरह के कोई मोटिवेशनल जो क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, वो करना चाहें, तो कैसी अप्रोच उन्हें करनी चाहिए, कहाँ से वो ये सब पढ़ें जानें?
1: सबसे पहले तो मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूंगा कि विपश्यना साधना के सेंटर्स पूरे भारत में हैं
0: जी,
1: जो आपको रीचेबल हो वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन वहाँ स्टे भी फ्री होता है और खाना पीना भी फ्री होता है, उसके लिए देर इज नो चार्ज। तो विपश्यना साधना में जाएं, वहां जाकर हमें धम्म के मूल सिद्धांत समझ में आते हैं, क्योंकि जो धम्म है, धम्म अनुभव करने की चीज है, अभ्यास करने की चीज है। तो एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रतिपादित कई बुक्स हैं, उनमें एक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, उस पुस्तक में धम्म को लेकर के बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जेन ज़ी जो श्रोता हैं, वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में वो अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की प्यास में लगे होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं, उसी सदुपयोग के माध्यम में वो ये पुस्तकें भी पढ़ेंगे, किसी ना किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो ही जाएंगी। और हमें बताया राणा पुरुषोत्तम जी ने कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में बौद्ध दर्शन जो है उसे शामिल कर सकते हैं, और जीवन की उस तरह की कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान हमें बौद्ध दर्शन से न प्राप्त हो, बस हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। और हमें सतीश कुमार जी ने बताया कि ये 2 दिन में या किसी एक सेशन से नहीं होगा, निरंतरता इसमें जरूरी है। लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे, और बेहतर व्यक्ति से बेहतर समाज बनेगा, और बेहतर समाज से हमारा राष्ट्र, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मूल्य जो है वो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों ने हमें बौद्ध दर्शन जो है उसे समझाया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोता जो हैं इसके बारे में जो भी जाना है उसे अपनाएं और उनका लाभ हो। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, बौद्ध अध्ययन विभाग, नव नालंदा महाविहार, संस्कृति मंत्रालय, नालंदा से आप जुड़े हैं, और लगातार जो है वो बौद्ध दर्शन आपके माध्यम से प्रसार भी पाता है, और आज हमारे स्टूडियो में भी आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी आपका, कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है, और आपके माध्यम से हमारे युवा साथी जो हैं वो बौद्ध दर्शन को समझ पाते हैं और प्रयास कर पाते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारने का। आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत साधुवाद।
0: तो श्रोताओं, आज हमने पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता समझी। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े

शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स

0: दोस्तों, आज दिल्ली में सारी माताओं के लिए और सारी महिलाओं के लिए जो माता हैं, जो कई कई रोल अपने जीवन में निभाती हैं, उनके लिए एक छोटा सा फेस्टिवल चल रहा है, जिस फेस्टिवल में अभी इस वक्त हमारी साथी माला जुड़ी हुई हैं। उस फेस्टिवल का नाम है रक्तांजलि। तो हम उनको लेते हैं ऑन एयर। और माला जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं?
1: मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ मोक्षी, और सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे टू यू। बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन।
0: आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और सारे सुनने वाली जितनी माताएं हैं सबको मुबारक हो।
1: बिल्कुल, और मोक्षी आज मैं जहाँ पर पहुंची हुई हूँ, बेसिकली ये गिविंग इज लिविंग फाउंडेशन का एक इवेंट चल रहा है। okay. जो मदर्स का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द फैमिली, उसी की सेलिब्रेशन है यहाँ पर। और लगातार यहाँ पर इवेंट चल रहे हैं। रक्तांजलि करके यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें महिलाओं को रक्त दान करने के लिए यहाँ पर इनवाइट किया गया है। एंड प्लस साथ में जो बैक ऑफ द माइंड जो एक पॉइंट है, जो एक एम है, वो यही है कि महिलाएं सिर्फ जन्म नहीं देती हैं, महिलाएं जो है वो सुरक्षा भी देती हैं, संरक्षण भी देती हैं, और वो जीवन चलाती हैं। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी महिलाओं के आस पास मैं हूँ, बहुत सारी महिलाएं मेरे इर्द गिर्द हैं जो आज समाज को एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं मिसेस कौर। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अमन फाउंडेशन के तहत कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स रन करते हैं जिसके जरिए समाज को एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच। आपके बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टाइम का बात कर पा रही हूँ।
1: जी, आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपका नाम सबसे पहले बताएं और आपकी फाउंडेशन का नाम।
2: मेरा नाम मनमीत कौर है और मेरी फाउंडेशन का नाम है अमन फाउंडेशन।
1: Okay. जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं।
2: हम लोग बेसिकली जो काम करते हैं वो करियर को लेकर करते हैं, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस में हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। जो बच्चे मतलब एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जिनको पता नहीं चलता कि उनको आगे क्या करना है करियर में, इस तरीके के बच्चों का हम साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं। जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, वो लोगों के बारे में पता नहीं चलता कि आफ्टर द 11th 12th वो लोग क्या करें। तो ऐसे स्कूल्स में हम जाते हैं, ऐसी जगहों पे हम जाते हैं रूरल एरिया में, जहाँ बच्चों को गाइडेंस करते हैं अबाउट देयर करियर, कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, और वो अपना करियर किस तरीके से बनाए। और इसके अलावा जो बच्चे अपना अच्छा स्कोर ले लेते हैं और उसके बाद भी वो एडमिशन नहीं ले पाते एंट्रेंस के थ्रू, तो उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेनली हमारा काम सिर्फ करियर को लेकर है कि बच्चों को अच्छे पढ़ाई दे सके।
1: तो मोक्षी, ऐसा नहीं है कि अगर हम महिला कंट्रीब्यूटर्स के बारे में बात करें तो हमारे साथ सिर्फ कुछ ही महिलाएं, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। आइए जानते हैं हमारी नेक्स्ट महिला कंट्रीब्यूटर के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू। आई एम कुसुम भूटानी, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट प्राइज स्टार्टेड वात्सल्य स्पेशल स्कूल इन राजेंद्र नगर एंड देन सम वेदना इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन शालीमार बाग, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ डेवलपमेंटल क्लिनिक कनेक्ट। And we are connected to so many people working with the non-verbal people and doing art therapy to decode their emotions and heal them regularly.
1: मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, यहाँ पर महिलाएं रक्त डोनेट कर रही हैं, तो ऐसे में हीमोग्लोबिन को लेकर भी जनरली रहता है, महिलाओं का हीमोग्लोबिन लो रहता है, तो ब्लड डोनेशन को लेकर थोड़ा सा उनके मन में भी शंका रहती है, तो इस बारे में उनकी शंका को आप कैसे दूर करेंगी?
3: नहीं, मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस दिन भी जो जो महिला कंसीव करती है सबसे पहले वो फॉल और वो देते हैं ताकि आपका ब्लड का लेवल ठीक रहे। एंड सेम इज विद द चिल्ड्रन, जब हमें बच्चों में भी माइलस्टोन डिले दिखते हैं या कभी थोड़ा सा उनका लो प्रोफाइल रहता है तो हम उनको ब्लड के लिए बोलते हैं। एंड एट एवरी स्टेप यू नीड ब्लड, सो वन शुड गेट अवेयर कितना आपका होना चाहिए, कहाँ हम दे के अपनी हेल्प कर सकते हैं और कहाँ दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी जेन्युइन प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल टू हेल्प देन गिविंग एंड टेकिंग बोथ, क्योंकि मालूम नहीं प्रेगनेंसी के टाइम आपको किसकी जरूरत पड़े। तो जब

0: पहले से अवेयर रहते हैं सोसाइटी में अपने और अपनों के साथ, तो ये चीज बहुत मदद करती है और हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य भी बहुत कुछ तय करती है।
1: बहुत बेहतरीन जानकारी मैम आपने दी। और हमारे साथ इसी के साथ एक और महिला कॉन्ट्रीब्यूटर है, आइए उनके बारे में जानते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: जी थैंक यू वेरी मच।
1: आपका नाम मैम, आपके सोसाइटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम?
2: मैं डॉक्टर शशि रखेजा, सीनियर कंसल्टेंट प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी से, RGCIRC रोहिणी से हूँ।
1: आज के इस इवेंट में आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहेंगे।
2: जी आज का जो इवेंट है डेडिकेटेड टू मदर्स डे, तो फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड है। सो आई वुड लाइक टू से कि फीमेल्स में जो कैंसर सबसे ज्यादा इंडिया में कॉमन है वो दो हैं, ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विकल कैंसर। इसी की जानकारी के बारे में देने के लिए हम आए हैं और हम चाहते हैं कि हम और से ज्यादा महिलाओं का एग्जामिन करें, उनको जानकारी दें हाउ टू प्रिवेंट इट और अर्ली डिटेक्शन का क्या फायदा है उनके केसेस में। यही कैंसर के डिटेक्शन के लिए ही आया है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी की मशीन आई है, बस है जो, और वो मोर देन 40 के लिए बोला जा रहा है। पैप स्मेयर हम कर रहे हैं फॉर सर्विकल कैंसर के लिए। HPV वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं कि बच्चियों को वो वैक्सीन लगवाएं ताकि आगे जाके उनको सर्विकल कैंसर नहीं हो। तो ये दो कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, इसकी जानकारी, इसके टेस्ट और उनको बताने के लिए कि कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए।
1: मोक्षी और भी हमारे साथ एक और महिला कंट्रीब्यूटर है। अलग अलग फील्ड में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आइए जानते हैं अपनी अगली महिला कंट्रीब्यूटर के बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच। हाय आई एम दीप्ति अनेजर, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट एंड माई आई गो बाय द नेम कॉस्मिक अलाइन ऑन इंस्टाग्राम।
1: मैम आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है?
3: आई वर्क विद वेमेन जिनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। पेरेंटिंग कैन बी डिफिकल्ट एट टाइम्स फॉर वेमेन। आज की वेमेन इतनी चीजों में इन्वॉल्व है, लाइक दे आर इन टू चाइल्ड अपब्रिंगिंग ऑल्सो, और वो अपने वर्क एरिया में भी इतने डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। सो इन सब चीजों के वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस भी बहुत हो सकता है। सो मेनी टाइम्स दे नीड अ फ्रेंड, दे नीड अ थेरेपिस्ट। आज की डेट में थेरेपी इज नॉट मेंटल इलनेस, दिस इज द मेन थिंग वी वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड। साइकोथेरेपी इज नॉट फॉर पीपल हु आर मेंटली इल करके नहीं है, ये उन सब के लिए है जो अपने इमोशंस के साथ अपनी लाइफ को और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं, अपने आप को और एम्पावर करना चाहते हैं।
1: क्या बात है। तो मोक्षी जैसे कि आपने देखा बहुत सारी महिला कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन समाज को है और आज के इस इवेंट में जिस तरह से बिल्कुल सामने से भागीदारी ले रही हैं, ये आउटस्टैंडिंग है। और मेरे पास और भी बहुत सारी महिला कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर, हम उनके साथ भी जुड़ेंगे। बहुत बेहतरीन इवेंट है, इससे जुड़ी हुई एक एक अपडेट, एक एक इवेंट के बारे में जानकारी मैं आपको देती रहूँ।
4: ठीक है। अच्छा माला जी, मैं ये जरूर पूछूंगी कि ये आप जरा प्लेस और टाइमिंग जरा बताएं कि कहाँ पे हो रहा है ये इवेंट और टाइमिंग क्या है इसकी।
1: जी ये जय जगदम्बे टेंट है पीतमपुरा में, और ये इवेंट आज के दिन हो रहा है मदर्स डे स्पेशल पर। सुबह 10 बजे शुरू हो गया था और शाम को 5 बजे तक चल रहा है। यहाँ पर महिला कॉन्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को सराहा जा रहा है। उनके लिए यहाँ पर तरह तरह की स्टॉल्स लगी हुई हैं और इसके अलावा उनके लिए अवार्ड्स भी रखे गए हैं।
4: तो आप इकट्ठा करिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, तब तक हम अपने श्रोताओं को एक दो गाने सुनाते हैं, उनसे बातें करते हैं और फिर जुड़ते हैं आपके साथ। और मैं आपको जरूर अप्रिशिएट करूंगी इस चीज के लिए कि आपके सवाल बेहतरीन थे, खासकर हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन। मुझे लगता है हर लड़की के, हर महिला के दिमाग में होता है कि हमारा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपसे जुड़ते हैं फिर से एक छोटे से गाने वाले ब्रेक के बाद।
1: थैंक यू।
4: ओके, तो आप सुन रहे हैं छोटे उस्ताद और आज हम मदर्स डे पे खूब सारी बातें कर रहे हैं। आपने सुना माला को, जो अभी एक फेस्टिवल में है, उस फेस्टिवल के बारे में और भी चटपटी, बेहतरीन, प्यारी और इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताएंगी। तब तक सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: तो भाई हमारे छोटे उस्ताद कैसे ध्यान रखते हैं, अपनी माँ का किस तरह से ध्यान रखते हैं? और बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम तो हमेशा यही बात करते हैं कि माँ हमारा कितना ध्यान रखती है, लेकिन हम भी कितना ध्यान रखते हैं माँ का, ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमारे छोटे उस्ताद क्या अपनी मम्मी से बहुत प्यार से, बहुत लाड से और बहुत तमीज़ से बात करते हैं? अगर हाँ तो आप सही काम कर रहे हैं। और अगर आप उनके लिए कभी कभी स्पेशल फील कराने के लिए कुछ मज़ेदार सा पकाते हैं उनको सरप्राइज़ करने के लिए, तो भी आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अभी छोटे उस्ताद और छोटे उस्तादों की प्यारी प्यारी मम्मियाँ हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और उन्होंने सुना किस तरह से हम पीतमपुरा उनको लेकर के गए थे रक्तांजलि एक इवेंट में, एक मेले में, जहाँ ढेर सारी महिलाएं आकर के पार्टिसिपेट कर रही हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, वहाँ हम आपको ज़रूर ले चलेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अभी आप सुनिए ये और भी खूबसूरत सा गाना और अभी हम बात करेंगे ढेर सारी और अपने छोटे उस्तादों से।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आशियाना और हम बात कर रहे हैं छोटे उस्ताद से, लेकिन हम छोटे उस्ताद और उनकी मम्मियों को लेके चलते हैं अभी उसी जगह पे जहाँ पे माला हमारे साथ जुड़ी हुई है। माला वहाँ कर रही है फन, बहुत सारी मस्ती, और अब हमसे साझा करेंगी माला कि वहाँ क्या चल रहा है। माला आप हमको सुन पा रही हैं?
1: मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको मोक्षी, और आपको ये एक सवाल पूछना चाहूंगी
0: जी
1: कि आपको क्या लगता है रिटायरमेंट की एज क्या होती है?
0: रिटायरमेंट की एज तो 60 ही बताई जाती है जो हम लोग बचपन से देख और सुन रहे हैं। 60?
1: और अगर हम महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम और कितना ऊपर जा सकते हैं?
0: महिलाओं की तो देखिए कोई एज नहीं है रिटायरमेंट की, उनकी तो परवरिश ही वैसी हुई है, लेकिन फिर भी शरीर है जवाब तो दे ही जाता है, 60 नहीं तो 65 बहुत ज्यादा।
1: अच्छा, तो फिर आपको और ज्यादा एक्सट्रीम सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ अभी गोल्डन लाइनर्स टंडन मैम के साथ, अरुण टंडन मैम है एंड शी इज 76 इयर्स ओल्ड।
0: ओह माय गॉड,
1: और उनके कंट्रीब्यूशन को सलाम है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से मॉर्निंग से यहाँ पर अवेलेबल है मैम, और आज मैंने बिल्कुल उनको रोक के रखा है। शी इज सेइंग कि मैं सुबह आ गई थी यहाँ पर और हमारा प्रोग्राम लगातार चल रहा है, तो नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। आई सेड नो मैम, यू हैव टू वेट, क्योंकि हम आपका जो एक इंस्पिरेशन है, आपका जो एक मोटिवेशन है, वो हम अपने इस चैनल के जरिए सभी महिलाओं तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आप जैसी महिलाओं के साथ आज सर्वप्रथम तो मैं मातृ शक्ति को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत नमन करती हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर।
1: मैम जिस तरह से 76 की एज में भी आपने कहा कि हर हफ्ते आपके कई सारे इवेंट्स होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स आपके लगातार चलते रहते हैं, तो ऐसे में जो महिलाएं ये सोचती हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो रिटायरमेंट की उम्र है, अब तो शरीर में दर्द रहता है, काम कैसे होगा, आप उनको क्या अपनी तरफ से एक टिप या एडवाइस देना चाहेंगे?
2: ऐसा है सोच है के हो गए, मेरे बाइक क्लब है जो कि नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद सब तो जो है, और उसके अलावा हमें मल्टीपल में भी जैसे कि 6 डिस्ट्रिक्ट है, और उन 6 डिस्ट्रिक्ट की भी मैं ग्रेजुएट रही हूँ और बड़े अच्छे से निभाया है, और नेक्स्ट मैं रजिस्टर के रूप में आऊंगी प्रिंसिपल में भी। ये हमारी सोच है, ठीक है, अगर हम सोचते कि हम खाली यही सकते हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपनी सोच है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, कुछ भी नहीं हर कुछ कर सकते हैं, हमें तो काफी करना है, ये सिंपल करके में चलेंगे तो चलेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि
0: जी माला थोड़ा बीच में आवाज मैम की कट रही है, क्या आप थोड़ा सा देखेंगे, मैम की थोड़ी आवाज बीच में से कट रही है, तो थोड़ा बीच में ब्लैंक जा रहा है, आप देखिए जरा।
1: अभी आपको आवाज आ रही है?
0: आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है, मैम की बीच में आवाज बहुत अच्छी बातें बता रही थी, उसी समय उनकी आवाज आना बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए।
1: जी मैम का यही कहना है कि ये सिर्फ आपकी सोच है, अगर आप अपनी सोच से बिल्कुल प्योर है और आपके अंदर वो जज्बा है कि आपको करना है, तो उम्र इज जस्ट अ नंबर। तो मैम थैंक यू सो मच इस लवली इंटरेक्शन के लिए, और अपनी तरफ से महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, और आज के इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। तो मोक्षी जिस तरीके से मैम के साथ बातचीत हुई और जिस तरह से मैं इवेंट के बारे में बता रही थी, एक बार फिर से बताना चाहूंगी, रक्तांजलि है आज के इस इवेंट का नाम, और मदर्स डे पर खास तौर पर आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मदर्स फॉर द मदर्स। तो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर शरीर का जो स्वास्थ्य है, शरीर में जो अंग है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उसके लिए स्क्रीनिंग्स हैं, टेस्ट हो रहे हैं, एडवाइस किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हो रही हैं। और 10 बजे से लेकर आज 5 बजे तक ये कैंप चल रहा है माँ जगदम्बे टेंट पीतमपुरा में। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। गिविंग इज लिविंग फाउंडेशन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है,
0: एंड मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन है कि हमारे लिसनर्स सुन ही रहे होंगे, और जरूर अभी तो बहुत वक्त है तो

0: अभी ज़रूर वहाँ पे जो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ पे आएंगे। और बताइए वहाँ और क्या चल रहा है, और हम आपको कुछ और रौनक के बारे में वहाँ का बताइए, कुछ खाना पीना और मस्ती, जैसे कि मैं पढ़ रही थी कि कुछ पेजेंट्स भी चल रहे हैं वहाँ पे।
1: यहाँ पर लगातार अवार्ड्स चल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं जिसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, महिलाएं पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और महिलाएं ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, फिर और कुछ और जानकारियां लेकर आपसे मिलती।
0: बिल्कुल, आप कुछ और जानकारियां इकट्ठा करिए, तब तक हमें खूबसूरत सा गाना अपने लिसनर्स के लिए सुनाते हैं। ओके, थैंक यू।
1: थैंक यू।

0: बात कर रहे हैं अपने छोटे उस्ताद और छोटे उस्तादों की मम्मियों से भी। आप सबको हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और आज हम मुखातिब हैं छोटे उस्तादों से और उनकी मम्मियों से और सुनने वाली सारी मम्मियों से, क्योंकि आज हम हैं, क्योंकि आपको पता है आज माला कहाँ है। माला है एक ऐसे फेस्टिवल में, एक ऐसे मेले में जहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, जो सारी महिलाओं को डेडिकेटेड है जो फेस्टिवल। और माला हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं। माला, आप हमें सुन पा रही हैं?
1: मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ मोक्षी आपको, और आपको बताना चाहूंगी कि अब मैं तीन ऐसी बहादुर महिलाओं के साथ हूँ जिनकी एज मैं ये मान के चलती हूँ कि सबकी एज अबव 50 है, और सब यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रही हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं समाज के प्रति। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हैं, ये भी संदेश देना चाहती हैं कि अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
0: आपने ना हीमोग्लोबिन जैसा ही एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा, जैसे वो कॉमन है क्वेश्चन, वैसे ये भी कॉमन है कि अब तो खून बनता नहीं होगा, कर सकते हैं डोनेट की नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, 50 साल के ऊपर। हाँ जी जी जी
1: जी, तो चलिए मिलते हैं पहली महिला से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: हाँ जी मैम, मेरा नाम सलका जैन है और मैं यहाँ पर ब्लड डोनेट कर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले बीच में भी मैंने पहले भी दिया था काफी टाइम पहले, और बीच में मैंने दिया था लेकिन मेरी ना नर्व पतली होने के कारण पूरा फुल बैग नहीं भर पाया, तो इसलिए मैं दे नहीं पाई। बट आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा फुल बैग भर गया और आगे के लिए मेरा रास्ता खुल गया कि मैं आगे दे पाऊँ। और मुझे लगता है कोई एज फैक्टर नहीं है इसमें, अगर आपका एज भी अच्छा है ठीक है तो करते रहना चाहिए नित्य प्रति, इससे अच्छा रहता है समाज के लिए कुछ योगदान हो जाए, इससे अच्छी बात ही क्या है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। और आपने जिस तरीके से ये एक मिसाल पेश की है कि उम्र अगर आपको लगता है कि कहीं एक ऐसी लिमिटेशन है जिसकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ एक और महिला कॉन्ट्रीब्यूटर, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मेरा नाम अलका है, अलका गुप्ता। मेरा बेटा ऑर्गेनाइजर है अमित गुप्ता, उसकी मैं मासी हूँ, तो उन्होंने बोला आना मासी यहाँ पे, उन्होंने सब चीजों का मेरा टेस्ट अच्छे से लिया है, तो उसके बाद मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ।
1: मैम आपकी एज क्या है?
3: मेरी एज 58 है।
1: 58, तो कभी ऐसा नहीं लगता है 58 मतलब अब रहने दो, अपना ही खून कम बनता है, अब क्या डोनेट करेंगे?
3: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोशिश यही रहती है जहाँ पे डोनेट हो रहा हो मैं अपना होमोग्लोबिन चेक करवाती हूँ और देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
1: क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस टू यू मैम, आप जिस तरह से समाज को कंट्रीब्यूट कर रही हैं और जिस तरह से लगातार इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाती हैं और

0: न सिर्फ ब्लड डोनेशन के जरिए बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अगली कॉन्ट्रीब्यूटर है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू।
0: ब्लड डोनेट कर रही हैं आप, डर लग रहा है आपको?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करती हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम?
1: मेघा अग्रवाल।
0: मेघा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार जब ब्लड डोनेट करते हैं हम तो अपने मन से इच्छा होती है करें, लेकिन घर वाले रोकते, क्या बार बार ब्लड डोनेट करने चली जाती हो? तुम्हारा खुद का भी ब्लड उतना है जो डोनेट करती हो, अपने शरीर का ख्याल करो, कभी ऐसा सुनने को मिलता है आपको?
1: पर्सनली मेरी फैमिली में नहीं मिला, मेरे नेबर्स और मेरे फ्रेंड सर्कल ने ये जरूर बोला है। तो मैं लेकिन 14 साल से ब्लड ऑन डिमांड से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि अगर हम ब्लड डोनेट रेगुलर करते हैं तो हमारी अपनी हेल्थ बहुत सही रहती है। ब्लड डोनेट करने से कभी हमारे अंदर कमी नहीं आती, जबकि अगर हम हर 6 मंथ में करते हैं तो हमारी अपनी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है, हमारी जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होती है वो निकलती रहती है। ब्लड फिल्टर होता रहता है, हमारा नया ब्लड जनरेट होता रहता है, ऐसा मैंने रेगुलर ब्लड डोनेट करके देखा है। और पर्सनली भी 3 साल पहले जब मैंने बंद कर दिया था, मतलब 2 साल का गैप आ गया था, तो मेरी अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगी थी, मतलब मेरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो डिस्टर्ब होने लगा था। उसके जैसे ही मैंने दोबारा रेगुलर ब्लड डोनेट करना चालू किया, वो वापस अपने आप ऑटोमेटिक लाइन पे आ गया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस,
0: तो मतलब आप फिर महिलाओं को कैसे मोटिवेट करेंगी ब्लड डोनेशन के लिए?
1: मैं रेगुलर उनसे बात कर रही हूँ, अपना एग्जांपल भी देती हूँ। अभी भी मेरे साथ की कम से कम 30 लेडीज ने ब्लड डोनेट किया है आज इस कैंप में, जिनको मैंने मोटिवेट किया था।
0: कंग्रेचुलेशन टू यू मैम, एंड थैंक यू सो मच आपके इस अमूल्य कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आज के इस इवेंट के लिए। 30 लेडीज को मोटिवेट करके एक जगह पर इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, और ब्लड डोनेट करवाना तो बहुत बहुत बड़ी बात है जो आज आपने कर दिखाया।
1: थैंक यू वेरी मच। इसके लिए पीछे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3 साल पहले जब मैंने ब्लड डोनेट करना कम किया था, उसका रीजन एक था, मेरी बेटी का और मेरे हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसे मैं सेफ थी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ऑलमोस्ट बेड पे थे थोड़ा 1.5 साल के लिए। तो उसके बाद जो हुआ था, तो तब मेरे को पता लगा था कि ब्लड डोनेट जो मैंने पहले किया है उसके कितने बेनिफिट मुझे उस टाइम पर मिले। जब मुझे चाहिए था, मुझे किसी की जगह नहीं देनी पड़ी, मेरे को इमीडिएट ब्लड मिल गया।
0: थैंक यू सो मच मैम। और ये जिस तरह से आप सुनते हो, मोक्षी लगातार यहाँ पर इवेंट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर हो रहे हैं लगातार, और 5 बजे तक चलते रहेंगे। हम हैं माँ जगदम्बे टेंट पीतमपुरा, जहाँ पर चल रहा है रक्तांजलि इवेंट, जो कि मदर्स डे को टीम में रख के आज ऑर्गेनाइज किया गया है, और यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं के बीच में गिरी हुई लगातार इवेंट यहाँ पर हो रहे हैं।
2: और आपके जो बैकग्राउंड में इतना सारा मजेदार साउंड आ रहा है ना, उसी से एक वाइब मिल जा रही है कि आप किस मस्त से माहौल में हैं, बहुत मजे कर रहे हैं आप वो सारा। और एक्साइटमेंट देखिए, जो जितने भी लोगों का अभी आपने इंटरव्यू किया उनका आप एक्साइटमेंट देखिए, कितनी खुश है वो, और कितनी प्यारी बातें बता रही है कि जब उनको जरूरत पड़ी तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, कितना बड़ा मैसेज दिया है उन्होंने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इस ऐसी महिलाएं आपको यहाँ एक नहीं कई सारी मिलेंगी, और मैं लगातार ऐसी महिलाओं से मिल रही हूँ यहाँ पर।
2: बिल्कुल, तो हम चलते हैं अभी अपने लिसनर्स को एक गाना और सुनाते हैं, और फिर आपसे हम फिर से जुड़ते हैं। मतलब
0: ओके
2: ठीक है, ओके ओके ओके माला।

0: तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि माला के पास क्या है। हमारे पास अगला सरप्राइज। माला, आप हमें सुन पा रही हैं?
1: मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। और अगला सरप्राइज बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरे साथ है सुपर लेडी अवार्ड की विनर आशा कथूरिया मैम। और सेवाओं के बारे में तो मैं क्या कहूँ, इतनी मेरी उम्र नहीं है जितनी इनके सेवाओं की उम्र हो गए। 60 साल से सेवा कर रही हैं और आज के इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मुझे आज इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला और आपके साथ मैं जुड़ी और आपने मेरी बात को सुना। मैं सबको ये पूछना चाहती हूँ, मैं 71 और 70 में जो भी मेरे पास कोचिंग लेने आते थे वो बहुत आजकल बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। जब मुझे पहचानते हैं तो पैर छूते हैं दूर से आके, मेरा मन बहुत बढ़ जाता है।
1: मैम किस तरह का कंट्रीब्यूशन आपका रहा है?
2: बहुत अच्छा। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया कि जो बच्चे दे पाते हैं वो तो हर जगह कोचिंग ले लेते हैं, जो नहीं दे पाते वो मेरे आते हैं। मैं संभल से मुरादाबाद, मुरादाबाद से मैं मेरठ और मेरठ से मैं दिल्ली शिफ्ट किया। मैंने चारों जगह सेवाएं दी हैं।
1: संस्कृत भाषा में आप कोचिंग?
2: हाँ, संस्कृत भाषा में। सेवा भारती से जुड़ी हूँ मैं, सेवा भारती से कोचिंग को भी साथ ले लेती हूँ मैं। बाकी उसमें बहुत सामूहिक विवाह है, अभी करवाए हैं हमने इस एरिया में 36 विवाह करवाए जो हमारे बस्ती से रिलेटेड थे, और सभी इतने खुश हैं जोड़े। हम उनको फिर बुलाते हैं, उनको पग फेरा कराते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, तो उन्हें हर साल आगे भी बुलाते हैं कि आओ और हमें बताओ।
1: क्या बात है मैम, इस तरह के सेवा भाव के साथ जब इंसान जुड़ता है तो लोगों की दुआएं मिलती है और मन को भी बहुत शांति मिलती है। उम्मीद है आपको बहुत मन से शांति मिलती होगी जब कभी भी आप कोई भी अपना एक इवेंट करते हो।
2: बहुत बहुत शांति मिलती है। मुझे ये ध्यान भी नहीं रहता कि मैं कोचिंग निःशुल्क कर रही हूँ या मैं लेकर कर रही हूँ, मुझे लेने में वो आनंद नहीं आता। मैं किसी को पैसे लेके कोई कहता भी है तो मैं दूसरे हाथ जोड़ देती हूँ। मेरा जो है आपका जो सेवा देना है ना, आपे कुछ देना है तो मुझे नंबर आप दीजिए, फुल में फुल लाइए संस्कृत में और हिंदी में, वो मेरा अवार्ड है।
1: क्या अवार्ड है? तो मोक्षी, जैसे कि आपने सुना कि इनका जो अवार्ड है वो यही है कि नंबर ले आओ अपने एग्जाम में, यही मेरा अवार्ड है, यही रिवॉर्ड है। और इस भावना के साथ आज इस इवेंट में भी मैम आई है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: ये
1: तो मोक्षी, लगातार यहाँ पर इवेंट चल रहा है, अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग फील्ड से बहुत सारी महिलाएं लगातार मेरे साथ जुड़ी। और मैं बताना चाहूंगी हमारे लिसनर्स को कि ये इवेंट जो है माँ जगदम्बे टेंट पीतमपुरा में चल रहा है। गिविंग इज लिविंग फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, 5 बजे तक चलेगा। रक्तांजलि इस इवेंट का नाम है, जहां पर ब्लड डोनेशन के साथ साथ महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, फन एक्टिविटीज है, तो आए और ज्वाइन करें।
0: और जितने लोग सुन रहे हैं वो और ध्यान से सुने और फटाफट वहां पे जाए, उस फेस्टिवल को, उस वाइब को फील करें, मदरहुड को फील करें। बहुत अच्छा लगा। और बताइए आप और क्या बताना चाहेंगी इस इवेंट के बारे में, जो बिन सारी चीजों में डिस्कशन में अगर कुछ छूट गया है तो?
1: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बताने की बात करूं तो 5 बजे तक मैं यही बताती रहूंगी, लेकिन जिस तरह से मैंने लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखा, आज पहली एक ऐसी जगह मिली जहां पर इतनी सारी महिलाएं इतना समाज को कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आई, जो कि बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत अच्छा। और हमको यहाँ स्टूडियो में बैठ के वो फीलिंग आ गई जो शायद आप वहां महसूस कर पा रही हैं। बहुत अच्छा लगा। हैट्स ऑफ टू ऑल दी स्पीकर्स, आज जितने लोगों ने बोला, जितने लोगों ने आपको इंटरव्यू दिया, और आपको भी।
1: थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे टू यू वंस अगेन।
0: हैप्पी मदर्स डे टू यू टू एंड टू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू माला, थैंक्स अ लॉट।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, ये माला हमको हमारे साथ वहां से लाइव वाइब्स शेयर कर रही थी। और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं छोटे उस्ताद, और अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब आपके लिए है ये लास्ट छोटी सी पेशकश, एंजॉय करिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शारणी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मौखिक स्वास्थ्य केवल हमारे दांतों और मसूड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। एक स्वस्थ मुख न केवल हमें सुंदर मुस्कान प्रदान करता है, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। आप सभी जानते हैं कि मौखिक रोग जैसे कि दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी आजकल बहुत सामान्य हो गए हैं। आज हमने सोचा कि अपने इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दें मौखिक स्वास्थ्य पर। आज हमारा विषय है ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, यानी मौखिक स्वास्थ्य से संपूर्ण स्वास्थ्य। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा। आप फॉर्मर डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल रहे हैं मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में, और अभी आप वाइस चांसलर हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार डॉक्टर महेश वर्मा आपका स्टूडियो में।
3: नमस्कार शाली जी, नमस्कार।
2: सर, आपने समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ओरल हेल्थ पे हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो दांतों की होती है, मसूड़ों की होती है, पूरे मुख की होती है, उस पर हम अलग अलग कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में करते आए हैं। पर आज क्योंकि आप यहाँ है, इतनी वास्ट नॉलेज आपके पास है, आप जानकारी रखते हैं, हम चाहेंगे कि संपूर्ण तौर पर हम डिस्कस करें ओरल हेल्थ को। और कई बार हम ये समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारा जो मौखिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो शरीर के विभिन्न अंगों को भी वो कहीं ना कहीं विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। तो ये जानकारी भी आज आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचे तो अच्छा रहेगा। आपका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपने श्रोताओं को देना चाहूंगी कि आप पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं, भारत सरकार द्वारा बीसी रॉय अवार्ड आपको मिल चुका है, साथ ही साथ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड आपको मिल चुका है, और हाईएस्ट अवार्ड हिमाचल प्रदेश प्रेरणा स्रोत आप रिसीव कर चुके हैं, और दिल्ली स्टेट का भी हाईएस्ट अवार्ड ले चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इतनी जानकारी हमारे साथ हमारे श्रोताओं तक आज पहुंचेगी, इसके लिए आप यहां आए हैं और हमारे कार्यक्रम का भाग बन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।
3: धन्यवाद शालिनी जी।
2: तो सर, सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा बोलें कि ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, व्हाई इज ओरल हेल्थ सो इम्पोर्टेंट।
3: देखिए, आज सुंदर दिखना तो सभी को अच्छा लगता है, बट उसके पीछे जो सुंदर मुस्कान है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि सुंदर दांत और मसूड़े और दिल जो है वो इकट्ठे धड़कते हैं, उनका चोली दामन का दांत साथ है।
2: खूबसूरत सी बात है
3: कि देखिए, हम हमारा जो मुख है वो वास्तव में जो हमारा समग्र जो स्वास्थ्य है उसका एक दर्पण है और उसका एक मिरर है या गेटवे है। देखिए, हम कोई भी जैसे कोई भी सामान लेते हैं तो हम उसमें थोड़ी सी वानगी निकालते हैं, तो हमारा जो माउथ है ये हमारे शरीर की वानगी है, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, इसका निरीक्षण कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारे मसूड़े फूले हुए हैं या मसूड़ों में सूजन है, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे शरीर में सूजन है। तो इसका जो अभिप्राय है, जो एक समग्र स्वस्थ मुख का जो अभिप्राय, वो बहुत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उसका जो कनेक्ट है वो डीपली कनेक्टेड है हमारी बॉडीली हेल्थ से, हमारे सिस्टमिक हेल्थ से। और मैं तो ये कहूंगा कि स्वस्थ मुख का अर्थ है स्वस्थ शरीर, बेहतर पाचन, स्पष्ट वाणी और आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन। तो देखिए कि कितना कितना ये जो है कितना डीप सीटेड है,
2: डीप है,
3: है ना। और हम जो अक्सर, क्योंकि होता क्या है कि जो मुख की बीमारियां हैं हम उसे बहुत महज टाल मटोल करके इधर उधर कर देते हैं, पर आप देखिए कि इसका कितना गहरा शरीर से कनेक्ट है। और अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है बहुत सारी चीजें जो है वो मुख से ही शुरू होती हैं और वहीं के जो कीटाणु जीवाणु बैक्टीरियाज वो जो खून में चले जाते

0: वहां अपने आप को साबित करूं और फिर अपना अपना असर दिखाऊं। तो ये अगर वो अगर हम इससे इसको हम रोक सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप नहीं सोचते कि हम शरीर की कितनी और बीमारियों से हम वंचित हो सकते हैं या उनसे उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। प्रिवेंशन, ये मैं तो ये कहूंगा कि ओरल हेल्थ मेंटेनेंस जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है आपकी बॉडीली हेल्थ को ठीक रखने में।
1: तो चलिए, ये टॉपिक डॉक्टर साहब ने विस्तार से समझा दिया कि आज हमने जो लिया है उसकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि आपने कहा कि ओवरऑल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओरल हेल्थ। और जब हम दांतों की बात करते हैं, चेहरे की बात करते हैं, एक खूबसूरत मुस्कान की बात करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात आपने बहुत खूबसूरत बात बोली थी, डायरेक्टली वो रिलेटेड है हमारे हार्ट से। अगर हम खुश होते हैं तो अपने आप ही वो जो स्माइल और एक होती है वो एक अच्छी सी निकलती है, और अगर हम सिर्फ शो कर रहे होते हैं तो वो एक अलग ही होती है, वो इम्प्रेस भी नहीं कर पाती है। तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आज हम इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं, 4 बजे तक रहेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आप हैं रेडियो डॉक्टर।

0: आपको?
1: नहीं, इस गाने में बहुत कुछ छुपा है।
0: अच्छा,
1: तो कहना है, कहना है तुम ही तो लाई हो जीवन में प्यार। मैं तो ये कहूंगा कि ओरल हेल्थ के प्रति कुछ कहना है।
0: Okay.
1: कुछ मुख स्वास्थ्य के प्रति कहना है। अगर आप मुख स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो जीवन में प्यार ही प्यार है। फिर कितना गहरा रिलेशन है। और इसमें एक और चीज आती है कि आज बस करना है इकरार। तो आज हमें एक वादा करना है, एक रिजॉल्व लेना है, एक इकरार करना है कि हम आज के बाद अपने मुख के प्रति ज्यादा सजग रहेंगे, ज्यादा हम इसके बारे में ध्यान देंगे। और जो एक ढुलमुल रवैया है हमारा अपने स्वास्थ्य के प्रति इन जनरल एंड ओरल हेल्थ के प्रति इन पर्टिकुलर, उसके बारे में इकरार करना है। और ये हमने एक इसके बारे में एक हमें डिसीजन लेना है।
0: बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम के अंत तक, जब हमारा कार्यक्रम खत्म होगा 4 बजे तक, तो हमारे सारे श्रोता आपके साथ साथ जो आप कह रहे हैं उस चीज को मानेंगे और हमें फीडबैक में हमें बताएंगे, हमारे मेल पर लिखेंगे और बताएंगे कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हमारे एक कॉलर है जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, हेलो।
2: पहले तो शर्ली मैम को, शर्लिन का सभी नमस्कार।
0: जी जी, नमस्कार राजेंद्र जी।
2: हाँ, और डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
0: जी बताएं। हाँ, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से आपको?
2: हाँ, तो मेरे 3-4 छोटे छोटे सवाल है। हाँ, पहला सवाल मेरा यह, किसी शख्स को यदि टॉन्सिल है, थायराइड है या फिर जो है सर्वाइकल है, स्पोंडिलोसिस, तो क्या इसका भी मसूड़ों पे, दांतों पे और टंग पे, जीभ पे असर पड़ता है, पड़ सकता है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि जब बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं, जब वो गिर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या एहतियात बरती जाए कि जब नए दांत आते हैं वो टेढ़े मेढ़े ना हो?
0: ओके,
2: मेरा ये है
0: जी।
2: तीसरा सवाल, खाते पीते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होती रहती है दांतों की, पर क्या इसके अतिरिक्त भी कोई दांतों की और मसूड़ों की और जीभ की एक्सरसाइज हो सकती है? सब पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं।
0: ठीक।
2: और चौथा आखिरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी तरीके समझाने बहुत बढ़िया है, तो सर को मतलब अगर दुखी करना हो या हमारी क्लास में, तो उसका क्या उपाय है? बड़ी मेहरबानी होगी।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछे।
1: हाँ,
0: तो बताएं सर।
1: देखिए, पहले तो इनका सवाल था कि टॉन्सिल है या थायराइड है, अगर इस तरह की कोई शारीरिक बीमारी है या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो उसका क्या दांतों पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल सकता है। क्योंकि बहुत सारी जो इस तरह की बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, वो भी एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, यू नो, तो उसका जो असर मसूड़ों पे या और माउथ के दूसरे जो पार्ट्स हैं उस पे पड़ सकता है। तो ये दोनों ओर से है। मसूड़ों की वजह से भी कुछ खामियां हो सकती हैं शरीर में, और अगर कोई शारीरिक बीमारी है उसका भी असर पड़ सकता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक सब चीज कंपोजिट है, हम इसको सेपरेट नहीं करते, माउथ को बॉडी से सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा, इनका दूध के दांत जब टूटते हैं और नए ना टेढ़े मेढ़े आए, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि वो समय पे टूटने चाहिए, ना पहले टूटने चाहिए ना बाद में टूटने चाहिए। पहले टूटेंगे तो जो जगह बना के रखी है दूध के दांतों ने बनाई है परमानेंट के लिए, वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। और अगर हम बड़ी देर तक रखेंगे उनको, कई बार क्या होता है कि वो टूटते नहीं है, तो कई बार डॉक्टर के पास जाके हमें निकलवाने पड़ते हैं। अगर वो नहीं करते तो भी दांत टेढ़े मेढ़े आते।
0: तो सही उम्र क्या होनी चाहिए? थोड़ा
1: नहीं, हर दांत का अलग अलग है।
0: ओके,
1: है ना, हर दांत का अलग अलग है। दूध के दांत, हमारे पहला दूध का दांत 7 महीने में आता है, 6 से 7 महीने में, और 2 से 2.5 साल तक दूध के दांत सारे आ जाते हैं। परमानेंट दांत जो है वो 6 साल से आना शुरू होते हैं, 6 साल 7 साल, और वो 11-12 साल की उम्र में कुछ दूध के दांत होते हैं, कुछ पक्के दांत होते हैं। तो अब ये सोचिए कि 6 महीने से लेके और 12 साल तक कुछ पक्के दांत है, कुछ दूध के दांत है। इसमें भी कई बार पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि वो पक्का दांत खराब होता है और वो सोचते हैं ये दूध का दांत है।
0: अच्छा।
1: और कई बार वो कहते हैं चलो गलने दो, ये तो
0: नया आ जाएगा।
1: उनको ये मालूम नहीं है कि 6 साल की उम्र में पक्का दांत आ चुका है, और वो पीछे का दांत है, सामने का नहीं है। सामने का दांत 7 साल में आएगा, तो पीछे के दांत को ये भ्रम में रहते हैं कि ये तो दूध का दांत है। तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट दांत है वो कई बार हम खो देते। तो ये सब चीजें जो है, इसकी जानकारी आपको आपके डॉक्टर देंगे। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, उनको कंसल्ट करेंगे, तो आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको गाइड करेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम अपने आप डिसीजन ना लें, हम

0: डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के पास सिर्फ बीमारी में ना जाए, हम चेकअप के लिए भी जा सकते हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच भी हो सकती है ताकि जो चीज है रोग उस बीमारी को रोकथाम कर पाए हम और उसको बढ़ने ना दें।
1: तो डॉक्टर साहब पहली विजिट कितने एज में होनी चाहिए बच्चे की, अगर हम पहली विजिट की बात करते हैं?
0: देखिए ऐसा है कि पहली विजिट तो जैसे ही बच्चे के दूध के दांत आना शुरू हो
1: तभी
0: हो, बच्चे के दूध के दांत 6 से 7 महीने में आना शुरू करते हैं और जब आना शुरू करें वो कंसल्ट कर सकते, क्योंकि दूध के दांत का भी सफाई बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बच्चे जो है दूध के दांत के जब होते हैं तो दूध ज्यादा दूध पीते हैं और दूध जो है उसमें मीठा है, अपना भी मीठा है और हम दूध को और मीठा करते हैं, और जब दूध भी और मीठा भी एक बैक्टीरिया के लिए बहुत ही आइडियल मीडियम है ग्रो करने के लिए, जब हमने दूध पिला दिया और उसमें मीठा भी है और
1: फिर सोते सोते भी पिला,
0: हाँ सोते पिला दिया तो क्या हुआ, माउथ में तो लाखों बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं और वो ताक में रहते हैं कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं झपटा मारूं, तो वो फिर बढ़ने लगते हैं और उससे जो है तो बचपन में भी कीड़ा लग सकता है। अच्छा। बचपन में भी
1: मतलब बीमारी की शुरुआत वहीं से हो सकती है।
0: और जब थोड़े से और दांत आने शुरू करते तो मुसूड़ों की बीमारी भी शुरू हो सकती है, जिंजिवाइटिस हो सकती है। तो ये हम इसको सोचे कि नहीं अभी तो दूध के दांत अभी कुछ नहीं होगा, पक्के दांत होंगे तब हम करेंगे, तो ऐसा नहीं है,
1: ये अप्रोच गलत है।
0: हाँ हाँ, बीमारी वहीं से स्थापित हो गई है और वो धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और फिर बाद में जाके बहुत अपना असर करेगी।
1: तो शुरू से ही अलर्ट रहना है। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत अलर्ट हैं, तभी वो हम आपसे कुछ कुछ पूछना चाह रहे हैं। लाइन पर हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: मैम नमस्ते, मैं नीरज बोल रहा हूँ प्रयागराज से।
1: जी जी जी हाँ बताइए।
2: मैम मेरी मैडम है मिसेज, मैम उनके जो दांत हैं, दांत के ऊपर जो मांस नहीं होता उनको मसूड़ा बोलते जो
1: जी।
2: मैम वो मसूड़े जो है वो अचानक छोटे से बड़ा है, मतलब दोनों दांतों के बीच में बड़ा है। फिर उसको मैंने किसी डेंटिस्ट के पास गया था, फिर उसको मैंने सर्जरी करा दिया, मतलब उसको काट के निकाल दिया। तो मैम फिर मैम 5-6 महीने ठीक रहा, फिर मैम को उनको लग रहा है कि फिर हमारे जैसे उभर रहे हैं, थोड़ा सा चुनचुनाहट बनी हुई है। तो सर से मैं जानना चाहता हूँ सर ये है क्या?
1: जी सर पूछ बता रहे हैं।
0: देखिए ऐसा है कि कई इसको हम बोलते हैं गम एनलार्जमेंट।
1: ओके,
0: जो मसूड़े जो है वो फूले नहीं है पर वो साइज में बड़े हो गए हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तब मसूड़े फूल जाते हैं, या वो ऐसी हार्मोनल स्टेज में होती हैं तब भी उससे भी मसूड़ों पे असर पड़ता है, और कई बार मसूड़ों की बीमारी से भी दांत फूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ एक दवाइयां हैं, जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई है या कुछ मिर्गी की दवाई होती है।
1: अच्छा।
0: जब हम वो खाते हैं तो उसका असर है कि मसूड़े फूल जाते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इनको ये सब ऐसा नहीं होगा, और कई बार बिना किसी कारण के भी मसूड़े का साइज बढ़ सकता है। अब ये बता रहे हैं कि दो दांतों के बीच का एरिया, अब वो मसूड़ा है या कई बार मसूड़े जैसी बढ़ने जैसी एक कंडीशन होती है, कोई ग्रैनुलोमा हो गया है या एक टिश्यू का जैसे टिश्यू ग्रो कर गया है, वो मसूड़े का टिश्यू भी हो सकता है, तो ये देख के ही बताया जा सकता है कि क्या है। बट बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है,
1: पर
0: घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई कैंसर नहीं है और ये अगर है तो इसका इलाज है। कई बार दवाई से होता है तो हम दवाई बदल देते हैं ताकि ऐसी दवाई दे जिससे मसूड़ा ना फूले, और अगर मसूड़े खराब है तो मसूड़ों का इलाज कर सकते हैं। और जैसे इनकी शल्य चिकित्सा पहले से हो गई है, दोबारा मसूड़ा बढ़ गया है तो उसका कारण जो है हमें आंकना पड़ेगा कि क्या क्या कारण किस वजह से।
1: तो आप किसी के पास जा सकते हैं और एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं,
0: स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। स्पेशलिस्ट मसूड़ों के भी स्पेशलिस्ट होते हैं।
1: ओके अच्छा अच्छा, तो उनको दिखाना चाहिए,
0: उनको दिखा सकते हैं।
1: आइए लेते हैं अपने अगले कॉलर को। हेलो
3: हेलो
1: जी, नंदलाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी मैं नंदलाल
1: जी। जी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: मैं आनंद पर्वत से बोल रहा हूँ सर।
1: जी जी बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं?
3: डॉक्टर साहब को नमस्कार और आपको भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी नमस्कार।
3: मेरे दांत में एक खोड़हर है, जबकि इसका इलाज तो मैं कराया था, खिलता भी नहीं, दर्द भी नहीं इस समय है, लेकिन उसकी वजह से और कुछ नहीं हो सकता, दूसरे दांत को भी कोई नुकसान तो नहीं हो सकता?
0: हाँ देखिए ये बहुत एक बहुत ही अक्सर लोगों के मन में रहता है कि दांत में कीड़ा लगा है, वही शायद नंदलाल जी का इशारा इनका उसी तरफ है कि दांत में खोल है और पेन भी नहीं हो रहा है और इसका असर के दूसरे दांतों पे नहीं पड़ेगा। तो देखिए, एक तो ये है कि ये जो खोल है, अगर आप इसका इलाज नहीं कराओगे तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और दांत को पूरा खोखला कर देगा और फिर वो दांत हमें, उस दांत को या तो अपने आप टूट जाएगा और फिर या दांत हमें निकालना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: और हाँ, ये है कि अगर इस दांत में कीड़ा लगा है, इसका मतलब ये है कि इनकी सफाई का भाव है, इसका मतलब ये अपनी जो माउथ का जो स्वास्थ्य है उसको ये बरकरार नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से अगर एक दांत में कीड़ा लगा है तो बाकी में भी लगने की आशंका है, या हो सकता है इनको पता ना हो, अर्ली स्टेज में हो। तो मैं इनको ये कहूंगा कि अपना चेकअप कराएं, और अगर इस कीड़े में, अच्छा कई बार क्या होता है जब कीड़ा लगता है तो वो दांत जो है वो डेड हो जाता है, और डेड हो जाता है तो बीमारी तो बढ़ रही है पर पेन हो नहीं रहा क्योंकि दांत तो डेड हो गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो पेन तो ये सोचते
1: मतलब सिम्टम नहीं हो पाए,
0: सिम्टम नहीं हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, बट वो तो खोखला कर रहा है।
1: ओके।
0: तो और फिर अगर उसका इलाज नहीं करेंगे तो बाद में उसका तो एब्सेंस फोड़ा बन जाएगा, तो दांत के जड़ के नीचे फोड़ा बन जाएगा और फिर सूजन हो जाएगी और फिर
1: तो
0: बहुत सारी
1: सीरियस,
0: हाँ बहुत सारी और कंडीशन हो। तो यही राय है नंदलाल जी से कि जाएं दिखाएं और जो उसका इलाज है वो तुरंत कराएं।
1: जी, और मैसेजेस भी बहुत सारे आ चुके हैं। डॉक्टर साहब असम से लिख रहे हैं हितेंद्र दास जी, रेडियो डॉक्टर शो इज अ वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच कि आप सुन रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया है, परिधि ने लिखा है दिल्ली से, नमस्ते शालिनी जी एंड डॉक्टर वर्मा, रेडियो डॉक्टर इज माय फेवरेट प्रोग्राम है, आई वांट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अस। क्वेश्चन ये है कि अगर टूथ एक्सट्रैक्ट किया गया है और उसको किसी इम्प्लांट से प्लेस नहीं किया गया, उसको ऐसे छोड़ दिया गया, तो क्या ये ठीक है या बाद में जाकर कोई इशू बन सकता है, जैसे आपने बताया नहीं, छोड़ना नहीं है
0: किसी। नहीं देखिए, ऐसा ये भी बहुत मैं सोचता हूँ कि ये जो सवाल परिधि जी ने किया है वो उससे लाखों और जो श्रोता है हमारे उनको ये उसका जवाब मिलेगा। देखिए, ये अक्सर आता है कि निकाले तो क्या जरूरत है लगाने की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी एक दीवार है उसमें से दो ईंटें निकल जाए तो उनको लगाना जरूरी है क्या? नहीं लगाएंगे तो बाकी ईंटें भी हिलेंगी, गिरेंगी। तो यही वही है जो दांत की भीड़ है, उसकी में भीड़ में से एक ईंट आप निकाल दोगे, एक दांत निकाल दोगे तो ऊपर के नीचे आएंगे साइड वाले जो है, क्योंकि दांत तो मसूड़े और जो जो हमारे जबड़े हैं उनमें इतना उतना जोर है। अब देखा ना, मसूड़ों से हम कार भी खींच लेते हैं, इतना जोर है मसल्स में, इतना हुआ है, वो क्या दांतों को हिलाएंगे? जगह है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की कि अगर खाली जगह है तो उसको भरने की कोशिश होती है। तो ऊपर का दांत नीचे आ जाएगा, सारे टेढ़े हो जाएंगे, फिर उसमें विरल आ जाएगी, उसमें गैप आ जाएंगे, फिर खाना फंसने लगेगा। तो देखिए, एक छोटी सी चीज जो है ना, वो कितना बड़ी इश्यू बना दिया उसने, उससे आपके मसूड़ों की बीमारियां हो गई, आपको कीड़ा लग गया, सिर्फ आपने एक था कि आपने वो दांत निकाला, आपने लगवाया थे, तो लगवाना चाहिए और तभी जो आपके सुचारू रूप से आपका जो मेस्टिकेशन है वो हो पाएगा।
1: तो बहुत अच्छा, अच्छी तरह से आपने समझाया कि वो एक बिल्डिंग की तरह है तो ये भूलेगा नहीं कोई भी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न भी था और इसका जवाब भी आपने बहुत अच्छे से दिया कि वो एक बिल्डिंग मानो उसको, और एक ईंट निकल गई तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भर देना है। लेकिन यह हम कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी हमारे पास एक कॉलर वेट भी कर रहे हैं फोन लाइन पर, उनको ले लेते हैं। हेलो,
4: नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
4: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम साहब,
4: मुझे ऑयल पुलिंग के बारे में पूछना है।
1: जी,
4: हमारे आयुर्वेद में भी मुंह में जो औषधि द्रव्य रखते हैं और उन्हें गंडोष प्रक्रिया कहते हैं, तो मेरा पूछना है कि क्या ऑयल पुलिंग से कुछ लाभ मिलता भी है कि नहीं? और नंबर दो, ऑयल पुलिंग कितनी देर करें और उसके बाद फिर मुंह को साफ करना है कि नहीं, कृपया विस्तार से बताएं।
0: देखिए, ऑयल पुलिंग जो है ये आपका हमारा जो एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड है, वो हमारे हमारे जो हमारी जो ट्रेडिशनल डेंटल सर्जरी का ज्ञान है उसमें इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कोई वर्णन नहीं है। बट मैं सोचता हूँ कि जो ऑयल पुलिंग है उसमें क्या है कि ऑयल जो है माउथ में रखते हैं और उससे जो है हम होल्ड करते हैं और फिर वो जो ऑयल है उससे उसको हम स्पिट आउट कर देते हैं। तो देखिए, ये एक पैलिएटिव तरह का रोल है, जैसे हम कोई माउथ वॉश करते हैं उसका असर है। तो देखिए, कोई ये कोई थेराप्यूटिक, अगर मैं इसको कहूं कि ये कोई थेराप्यूटिक इससे प्रिवेंटिव हो जाएगा, हाँ ये हो सकता है कि इसके बाद जो है हम बहुत सारी जो स्टिकी फूड है उस पे स्टिक नहीं करेगा। बट मैं कहता हूं कि जितने भी दांतों और मसूड़ों के विकार हैं वो लोकल कंडीशन से होते हैं, लोकल के उसमें खाना फंसा है या उसमें वो जो कैलकुलस हो गया है या प्लाक है।

0: या बैक्टीरिया है या सफाई का, तो उसकी वजह से। और इन सब कंडीशंस में जो ऑयल पुलिंग है वो उसका कोई ज्यादा बहुत रोल नहीं, जब तक हम उसका उसकी हाइजीन नहीं करेंगे, खुद मेंटेन नहीं करेंगे या हम डॉक्टर से प्रोफेशनल क्लीनिंग नहीं कराएंगे, तो ये जो जितनी भी जो भी हमारे टारगेटेड इश्यूज हैं जिसको जिससे हम बचना चाहते हैं, वो उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये बात हो तो हम सिर्फ माउथ वॉश ही करते रहें और उसी से सब चीजें जो है हम प्रिवेंट करें। तो मैं ये नहीं, मैं इसको नकारना नहीं चाहता, पर मैं ये चाहता हूं कि इसका जो रोल है बहुत सीमित होगा, क्योंकि ये हमारी हमारी जो ट्रेडिशनल डेंटल सर्जरी एलोपैथी में जो इसका जो ज्ञान है उसके बारे में कोई इसका इसका कोई बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं है।
1: ओके. तो हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं और मैसेज भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे. और खास तौर पर डॉक्टर साहब आपने ये कहा था कि ये गीत निकालना और ये जरूर श्रोताओं तक पहुंचाना, कैसे कहें हम?
0: अब ये मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे कहें हम,
1: तो
0: कहाँ
1: गीत
0: से
1: से
0: कहूँ मैं,
1: कहाँ से तो अब गीत के माध्यम से भी
0: कैसे
1: डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि कैसे कहूँ मैं. तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं. वैसे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से कह रहे
2: कैसे कहें हम प्यार ने हमको

0: मत हमसे खुद से हम।
1: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: आप हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हमारा विशेष जो टॉपिक है वो है ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, और मौखिक स्वास्थ्य से संपूर्ण स्वास्थ्य, ये हमारा विषय है। हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, फॉर्मर डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड वाइस चांसलर है डॉक्टर साहब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। इसमें बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूट भी आते हैं जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप गवर्न कर रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारी हमारे आज डॉक्टर के पास है और आप निरंतर उसका फायदा उठा रहे हैं। आप हमें फोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दूर दराज में ग्लोबली हमारा प्रोग्राम सुना जाता है ऐप के माध्यम से, न्यूज ऑन एयर हमारा ऐप है। तो ये हमारे पास मैसेज आया है लंदन से, विश्वास जी ने लिखा है, वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपने आज लिया है। इनका क्वेश्चन है कि इज वॉटर फ्लॉसिंग एज इफेक्टिव एज थ्रेड फ्लॉस?
3: यू नो, आई थिंक दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। आजकल ये वॉटर फ्लॉसर जो है,
2: ओके,
3: यू नो द बेस्ट थिंग इज कि ये जो वॉटर फ्लॉसर्स है काफी कन्वीनियंट है फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, और दे आर क्वाइट गुड।
2: अच्छा,
3: दे आर क्वाइट गुड।
2: ओके,
3: अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये दे आर एज इफेक्टिव, बट देखिए एक वॉटर जेट जो है, जो प्लाक है या फूड डेब्रीज है, उसको किस हद तक निकाल सकता है ये डिपेंड करता है किस तरह क्या स्टीम है, क्या डायरेक्शन है, उसमें कितना प्रेशर है, क्योंकि वाटर फ्लॉसर बहुत टाइप के हैं, बहुत हाई एंड भी है और बहुत बेसिक्स भी हैं। जबकि फ्लॉस जो है वो दंत धागा है, वो वैक्स धागा है जो आप फिजिकली आप कर रहे हो और आप इंश्योर कर रहे हो कि आपने दांत के जो बीच का सरफेस है उसको दोनों तरफ आपने उसको फिजिकली मूव किया है, उससे जो भी फूड डेब्री है वो निकल गया है। तो ये इफेक्टिवनेस पे है, बट मैंने देखा है कि मैंने खुद यूज किया है कि वाटर फ्लॉसेस आर क्वाइट गुड। आई वुड नॉट से कि दे आर ट्रूली सब्स्टिट्यूट टू अ रेगुलर डेंटल फ्लॉसिंग, बट दे आर फेयरली गुड।
2: So you recommend it?
3: Yeah, it's a good quality dental flosser, water flosser is okay.
2: जी, ऐसे ही एक और है प्रश्न, चित्रा सेठी जी लिख रही हैं अजमेर से, सर नाइट गार्ड क्या होता है और उसको लगाते वक्त क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए?
3: देखिए ऐसा है कि आज स्ट्रेस बहुत है और बहुत सारे जो हमारे कुछ एक हमारे जो भाई बहन हैं वो रात को जब सोते हैं तो दांत किड़किड़ाते हैं।
2: अच्छा,
3: उसे हम कहते हैं ब्रक्सिज्म, है ना, वो स्ट्रेस कारण भी हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है। बच्चों में कहते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं, हाँ, उसकी वजह से है। हाँ, तो ऐसा, बट ये देख रहा है कि आजकल ये बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोग जो है वो दांत ब्रक्स करते हैं, तो ये होता रात में जब हम सोते हैं, और उससे क्या है कि दांत ही घिसते नहीं है बट उसका पूरा अफेक्ट जो है, हमारा पूरा जो स्टोमैटोग्नाथिक सिस्टम है, हमारा पूरा जो जबड़े, मसल्स, टेंडन्स, टीथ, मसूड़े, पूरा जो एक अपराटस है उस पे पड़ता है।
2: अच्छा,
3: क्योंकि स्ट्रेस भी है और फोर्स भी है और वेयर भी है, तो उसको बचने के लिए हम रात को एक बड़ा सॉफ्ट मटेरियल का एक कवर होता है, उस सिर्फ दांत को कवर करता है,
2: सिलिकॉन बेस्ड होता है,
3: सिलिकॉन टाइप है, बड़ा मुलायम होता है और बहुत पतला होता है। उसको वो डॉक्टर्स दांतों पे बना के देते हैं, कस्टमाइज है, ये नहीं है कि बाजार से आप खरीद लें, हर आदमी के दांत अलग होते हैं, तो बना के देते हैं, वो पहनते हैं ताकि आराम से वो सो सके और दांत आपस में किड़किड़ाए नहीं, और जो है एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, दांत घिसे नहीं, और वो जो स्ट्रेस से जो ऑनस्लॉट होता है दांतों पे या मसूड़ों पे उससे बचे।
2: तो ये भी हेल्प करता है।
3: हाँ, ये प्रिवेंटिव अप्रोच है और बहुत बार ये प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स कि आपको गार्ड की, नाइट गार्ड की जरूरत है।
2: ठीक है, तो हमारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो,
4: नमस्ते मैडम
2: जी। नमस्कार,
4: आपका नाम शालिनी मैडम है ना?
2: जी हाँ, मैं बोल रही हूँ शालिनी।
4: तो आप अच्छे से कार्यक्रम वाले, आपके लिए धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अच्छा डॉक्टर साहब से पूछना है,
2: आप अपना नाम बता दीजिए।

0: रघुवीर जी उत्तराखंड।
1: जी जी रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इसके लिए भी।
0: अलग अलग विषय में आप जो स्वास्थ्य के बारे में अच्छा अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे हैं, अच्छी बात है।
1: चलिए आप सुनिए हमारे कार्यक्रम को, डेली हम आते हैं रेडियो डॉक्टर लेकर 3 से 4 बजे,
0: क्योंकि आसाम से लेकर कहीं से मतलब पूरा हिंदुस्तान का कहीं से भी कॉल आ सकता है ना।
1: जी, और मैसेज आते हैं हमारे बाहर से भी, विदेशों से भी, अभी मैंने लंदन से मैसेज इंक्लूड किया है, तो मैसेज के माध्यम से हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं। और आज डॉक्टर महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार रघुवीर जी।
0: अच्छा मैं आपको थोड़ा हंसने वाले मूड में बोल रहा हूँ
2: जी,
0: कि दांत मोती जैसा चमकना चाहिए, जैसे तो टूथपेस्ट तो हम कर देते हैं, तुम ब्रश कर देते हैं, तो मोती जैसा चमकना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा लोशन लाएं, हम लोशन लगाएं दांत में लगाने में?
2: मोती जैसे चमकने के लिए मोतियों जैसे काम करने पड़ते हैं शुरू से। वो जो है वो अब इसके बारे में हम सोचते हैं जब बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए लोशन कुछ नहीं होता, ये हमारा एफर्ट्स हैं कि एक तो हमारा जो एटीट्यूड है कि हमें अपने दांत और मसूड़े सही रखने हैं, दिन में 2 बार ब्रश करने हैं, 2 बार 2 मिनट, और साल में दो बार हर 6 महीने में आप डॉक्टर को दिखाएंगे। और एक चीज जो है हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में अनभिज्ञ है, वो है डेंटल फ्लॉस। देखिए अब ब्रश करने के बाद 40% जो हमारे दांतों का एरिया है, जो दांतों के बीच का है, उसे हम साफ नहीं कर पाते, तो फ्लॉस करें, फ्लॉस सीखें। एक धागा होता है जिससे हम दांतों के बीच में साफ करते हैं। संतुलित भोजन करें, और खाने के बाद कुल्ला करें, और मीठी चीजें कम खाएं, मांडदार चीजें कम खाएं, ये नहीं मैं कह रहा नहीं खाएं, खाएं जरूर, पर उसके बाद कुल्ला करें। तो एक छोटी देखिए छोटी चीज है, आपका जो छोटी एफर्ट है वो छोटी देखभाल बड़ा स्वास्थ्य प्रभाव, ये मैं कहूंगा कि दांत का एफर्ट्स बड़ी छोटी छोटी हैं, पर उसका इतना विशाल प्रभाव है हम दांतों पे भी, और हमारे हमारे शरीर पे भी। और रोकथाम की शुरुआत जो है वो मुंह से होती है, तो हम अगर अपना इसके बारे में हम सजग रहें और इसके बारे में हम अवेयर रहें, तो हम बहुत कुछ जो है, फिर मोतियों जैसे दान जो है वो हम हमेशा जिंदगी के लिए, ये मोती हैं, सचमुच मोती हैं, जिसे हम गवा देते हैं या मोतियों को बदरंग कर देते हैं, मोतियों को घिस देते हैं, मोतियों को तोड़ देते हैं, उनको क्रैक कर देते हैं, तो ये सब चीजें देखिए, मोती जब होते हैं ना हमारे पास, तो किस तरह से हम संभाल के रखते हैं, हम देखिए ना कि महिलाएं कैसे उनको वेलवेट शनील के पैकेट में डाल के रखती है, तो उसी तरह से हमें दांत को मोतियों की तरह हमें सजो के रखना है।
1: ये हमारे जो दांत हैं ये बहुत प्रेशियस है,
2: प्रेशियस
1: इनको भी हमें संभालना चाहिए,
2: इसको हम पत्थर की तरह ना इस्तेमाल करें ना, कि कहीं कोई भी चीज वो कर ली, बोतल खोल ली, ये कर लिया, ऐसे मुंह से तोड़ लिया, ये चीजें नहीं, वो भी तो कोमल है, उसमें भी जान है, उसको हम बेजान मत बनाइए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया खाने के लिए, एक जो बहुत आम चीज है वो है चाय और कॉफी, ये हम बहुत पीते हैं, और खासतौर पर ऑफिस में आजकल जो एक ट्रेंड सा है कि हम थोड़ा भी फ्री हुए तो हमें लगता है चलो कोई आया है तो चलो चाय पी लो, कॉफी पी लो, ये क्या कितना नुकसान कर सकते हैं?
2: देखिए चाय और कॉफी में टैनिन होता है, विच इज एन एस्टिंजेंट। देखिए चाय कॉफी के 2-3 इश्यूज है, अगर चाय में मीठा है और दूध है, तो दोनों चीजें जो हैं ये बैक्टीरियोजेनिक है, दैट मीन मीठा और दूध वो आइडियल मीडियम है बैक्टीरिया के पनपने के लिए। तो हम चाय पीने के बाद अक्सर कुल्ला तो करते नहीं है, तो ये जो है एक ग्राउंड बन जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। कॉफी क्या है कि कॉफी अगर मीठी है तो वही यही सिचुएशन है, और कॉफी वैसे भी स्टेन करती है, आपने देखा होगा कॉफी पी के, हमारे भारतवर्ष में हम हल्दी यूज करते हैं तो हमारे दांत जो है अक्सर पीले पड़ जाते हैं, जबकि ये हल्दी बाहर के विदेशों में लोग हल्दी यूज नहीं करते, तो उनके दांत थोड़े कम येलोइश होते हैं। तो बट ये इसके अलावा कोई अगर स्टेन्स हो गए हैं तो हम दांतों की क्लीनिंग करा सकते हैं, कई बार बदरंग हो जाते हैं दांत तो ब्लीचिंग भी हो जाती है ना, बट ब्लीचिंग भी एक केमिकल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान भी है, है ना। उसका दुष्प्रभाव दांतों पे भी पड़ सकता है, मसूड़ों पे भी पड़ सकता है, दांत थोड़े सेंसिटिव भी हो सकते हैं और फिर हर बार आपको कराना पड़ेगा। तो ये हम यही सोच के चलें कि

0: जब हम चाय कॉफी का सेवन करें तो उसके बाद कुल्ला करें, ताकि जो उसका जो इमीडिएट दुष्प्रभाव है दांतों पे या मसूड़ों पे या पूरे माउथ में, उसका जो है इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। जी
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम आज हमारा जो विषय है वो हम ओवरऑल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं मौखिक स्वास्थ्य से, तो खासतौर पर कौन सी ऐसी बीमारियां, जैसे हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे लगता है कि भाई ये ना हो जाए, वैसे तो सारी बीमारियां हम गिना सकते हैं, लेकिन क्या हार्ट डिजीज और डायबिटीज से भी ओरल हेल्थ का कोई रिलेशन है?
0: देखिए ऐसा है कि बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर हुई है, और पहले तो हम लोग कहते कि नहीं ये रिस्क फैक्टर है, पर एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो मॉडिफाइबल है। कहने का मतलब वो रिस्क फैक्टर का कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप अपने ओरल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं तो इस रिस्क फैक्टर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि अगर दांत खराब है या ओरल हेल्थ आपका ठीक नहीं है तो उसका जो इफेक्ट है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे भी पड़ता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आजकल बहुत सारे होते हैं उससे भी पड़ता है, और क्रोनिक गम इन्फ्लेमेशन जो है वो लिंक्ड है एथेरोस्क्लेरोसिस पे, जो आपने देखा होगा कि आजकल प्लाक हो जाता है और उससे स्ट्रोक हो सकता है। और ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के द्वारा जो है इसको स्थापित किया। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो ओरल बैक्टीरिया और जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड जो मसूड़ खराब होते हैं तो मसूड़ों के अंदर चले जाते हैं, और उससे क्या है कि जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है वो ट्रिगर होती है, और बहुत सारे जो बायोमार्कर्स हैं, चाहे वो सीआरपी है, इंटरल्यूकिन है, टीएनएफ है, वो सारे बायोमार्कर्स के द्वारा इन्फ्लेमेशन सेटअप होती है बॉडी में, और जिससे क्या है जो हमारे आर्टरीज का एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है और प्लाक फॉर्मेशन होता है आर्टरीज में, और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, और फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि डायबिटीज और जो गम डिजीज है इसका एक बड़ा बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, कि जिनको ये देखा गया है कि जिन लोगों को गम डिजीजेस है उनको लगभग 25% लोगों को हायर रिस्क होता है डायबिटीज होने का। तो यानी गम डिजीज से डायबिटीज हो सकती है, और जिनको डायबिटीज है उनको हाई रिस्क होता है गम डिजीज का। तो एक बाई डायरेक्शनल जो है टू वे रिलेशनशिप है कि गम डिजीज से डायबिटीज हो सकती है, और जो डायबिटिक है उनको गम डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये प्रूवन फैक्टर है। तो ये एक दो तरफा का संबंध है गम डिजीजेस और हमारी जो सिस्टमिक कंडीशंस हैं। जी
1: जी, हमारे एक श्रोता है काफी देर से लाइन पर वेट कर रहे हैं, आइए बात करिए, आप क्या पूछना है आपको डॉक्टर साहब से? हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी समाल, आप रेडियो डॉक्टर में हैं और काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे, चलिए पूछिए क्या पूछना है।
2: नहीं नहीं, पहले तो ये डॉक्टर साहब आते हैं, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लगता है, हर तरह की
1: थैंक यू
2: बात होती है।
1: जी
2: सर, मैं ये पूछ रहा था, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं सलाउद्दीन
1: जी,
2: ये आरसीटी कराने के बाद कितने दिन में कैप चढ़ाना चाहिए इसमें?
0: जी तो सलाउद्दीन जी सलाम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी। सलाउद्दीन जी, ऐसा है कि एक तो आरसीटी का जब से इजाद हुआ है ये सबसे बढ़िया तरीका है दांतों को बचाने का, जो दांत निकलने वाले थे उनको हमने आरसीडी करके बचा लिया। बट क्या होता है कि आरसीडी के बाद क्योंकि दांत अंदर से खोखला हो गया था और फिर हमने उसको आरसीडी कर दिया, तो वो दांत थोड़ा सा एक उसमें एक थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है, यानी मैं कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कमजोर हो जाता है, बट उसमें टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है आरसीडी की वजह से या कीड़े की वजह से दांत पहले से ही खोखला होता है, तो उसको अगर हमें पुनः स्थापित करना है तो उसके ऊपर हम आवरण यानी उसके ऊपर कैप लगाते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ही आप आरसीटी करें उसके तुरंत बाद आप कैप लगवा दें, कि वेट क्यों करें, क्योंकि वेट हो सकता है कि जब आप वेट कर रहे हैं उस दौरान वो दांत टूट जाए, बिकॉज पता थोड़ी लगता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उस दांत पे फोर्सेस पड़ती हैं या प्रेशर आता है तो उसमें टूटने के चांसेस है, वो कभी भी टूट सकता है, तो हम वेट क्यों करें। मैं ये चाहूंगा कि रूट कनाल के तुरंत बाद आप, और कई बार क्या है डॉक्टर जो है दोनों चीजें साथ ही साथ करते हैं, रूट कनाल भी करते हैं उसके बाद तुरंत कैप लगा देते, तो मेरी सलाह तो यही है कि आप जितना जल्दी हो सके इसका उस तरह से इलाज करें।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सही जवाब डॉक्टर साहब के जरिए मिल गया, और यहाँ पर एक बार रुकेंगे एक गाना सुनकर।

वापस आएंगे। आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और जो भी आपको लिखना है या पूछना है डॉक्टर साहब से पूछते रहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर महेश वर्मा और आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और रेडियो डॉक्टर में आज काफी सारी बातचीत हो चुकी है ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पर, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं, समय तो नहीं होगा कि सबको हम विस्तार से ले पाएं, पर मैं नाम पढ़ देती हूं जो श्रोता समय निकालकर हमें लिख रहे हैं। जानकारी डॉक्टर साहब ने अपने बातों में पूरी कवर कर ली है ऑलमोस्ट, तो आप सबको जवाब मिल गया होगा अगर आप हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे होंगे। हमें मैसेज किया है नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से। हमें मैसेज आया है, लिखने वाली है रेणु फ्रॉम मेरठ यूपी। इसके बाद हमें मैसेज मिला है नीरज पांडे जी का। साथ ही साथ श्याम मित्तल जी ने लिखा है 75 वर्ष के रोहिणी से, शालिनी जी डॉक्टर वर्मा ने बिगनिंग में जो वर्ड्स कहे वो अनमोल है, कांग्रेचुलेशंस, पूरे प्रोग्राम अबाउट ओरल केयर इसी में ही समाहित हो गया था जो आपने शुरू में बोला था, इसकी उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और डॉक्टर अनिल कालरा ने हमें लिखा है गुरुग्राम से कि शालिनी जी आई एम अ रेगुलर लिसनर, इट इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और राहुल लिख रहे हैं दिल्ली से, कुछ प्रश्न हैं डॉक्टर साहब से और उसके जवाब डॉक्टर साहब अपने कार्यक्रम में जो आरंभ में दे चुके हैं। इसके अलावा शिव जी ने लिखा है हमें मेरठ से, और लिखा है बलजिंदर जी ने भी दिलशाद गार्डन दिल्ली से लिखा है, और हमें मैसेज किया है रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ने ओखला संगम विहार से, इन्हें कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, तारीफ की है इन्होंने हमारे कार्यक्रम की। और नीता ने लिखा है अमरावती महाराष्ट्र से, इसके अलावा कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रहे हैं।

0: रविंदर पाठक, आशा पाठक नीदरलैंड से, इन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने इस कार्यक्रम में दी है, धन्यवाद दे रहे हैं। सिक्किम नामची से मनिका ने हमें मैसेज किया है, और ये मैसेज है सुनील कुमार जी ने यूपी से किया है। एक प्रश्न और आया है डॉक्टर साहब, उन्होंने हमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक ब्रश जो होते हैं वो कितने काम करते हैं। मैं नाम ढूंढ रही हूं, अभी अगर नाम मिलेगा तो मैं आपके जवाब के बाद बताऊंगी उनका नाम। तो इलेक्ट्रिक ब्रश क्या हेल्प कर सकते हैं?
1: ये देखिए, इलेक्ट्रिक ब्रश जो है, जब इनकी शुरुआत हुई थी तो जो स्पेशल नीड्स के लोग थे उनके लिए इजाद हुआ था।
0: अच्छा।
1: और फिर बाद में इसमें बहुत सारी बदलाव आए और आज ये है, ये बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही लाभकारी है। इनफैक्ट मैं जब यहाँ इंस्टीट्यूट में था तो मैं बहुत सारे अपने मरीजों को, जो अपनी सफाई अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे, तो मैं इनको ये प्रिस्क्राइब करता था। और मैंने देखा कि इस पे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये है कि इसका जो ब्रश है बहुत छोटा, इसका जो टिप है, ब्रश की टिप है वो बहुत छोटी है और वो गोल है, और वो हमारे दांतों के हर, माउथ के हर पार्ट में आसानी से पहुंच सकती है। दूसरा यह है कि वो इलेक्ट्रिक से चलता है तो क्या है कि उससे जो है वो जो सुविधा होती है कि आपको उतना ही क्योंकि इसमें कई में प्रेशर के सेंसर्स भी होते हैं कि अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये रुक भी जाएगा या कम हो जाएगा और ये अलार्म देगा या इसका एक रेड लाइट जो है वो जलने लगेगी। तो कई बार हम देखा कि आजकल बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी होती है क्योंकि दांत घिस गए हैं, या जब हम ब्रश करते हैं तो बहुत जोर से ब्रश करते हैं और बहुत हार्ड ब्रश यूज करते हैं, उससे जो है दांत का ऊपर का जो आवरण है वो घिस गया है, तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो इन सब चीजों को अगर देखें तो ओरल जो ये इलेक्ट्रिक ब्रश है ये बहुत ही लाभकारी है।
0: जी, बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: हाँ, बच्चों का भी एक छोटे साइज का आता है, बट बच्चा इतना बड़ा हो कि वो समझ सके और उसको हैंडल कर सके। तो देखिए, है तो ये ब्रशिंग ही, ओनली थिंग के हम अपने उसको मैनुअली की बजाय वो एक एक बैटरी से चल रहा है, चार्ज है, बैटरी से चल रहा है, और उसमें क्या कंसिस्टेंसी है और यूनिफॉर्मिटी है, और क्योंकि स्ट्रोक्स कई बार हम नहीं लगा पाते हैं, हम कहते हैं ना नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ करो और ऊपर वाले दांतों को नीचे की तरफ करो, जो हम कई बार मैनुअली नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत इफेक्टिव है, और इसमें कोई इस पे अगर लोग मैनुअल से ठीक है तो मैनुअल कर सकते हैं, ये नहीं कि सभी को ये करना है, पर जो इससे कंफर्टेबल है वो उनमें कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, वो यूज कर सकते हैं और ये क्वाइट इफेक्टिव गैजेट है।
0: जी जी, तो मुझे नाम मिल गया है, राधिका जी ने दिल्ली से ये प्रश्न किया था, तो उम्मीद है राधिका जी के साथ साथ बहुत सारे और लोगों के मन में जो ये प्रश्न था
1: उनको। थोड़ा महंगा होता है
0: जी,
1: तो अगर आप मैनुअल जो है वो बहुत सस्ता है, मैनुअल से अगर आप खुश है, और इसका बेस्ट ये है कि इसकी जो टिप है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, तो
0: करनी भी चाहिए क्या?
1: करनी चाहिए, जब वो भी उसमें भी ना एक डाई होती है, वो जब डाई ब्लू डाई होती है या और ब्लू नॉर्मली ब्लू या ग्रीन होती है, तो जब वो समय के साथ वो डाई सफेद हो जाती है, यानी जब वो घिस जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, तो एक इंडिकेटर है कि इट्स इज टाइम नाउ टू चेंज द टिप। जी
0: चलिए, एंड अब इट्स टाइम नाउ टू क्लोज आवर प्रोग्राम बिकॉज 4 बजने वाले हैं और अब समय नहीं है कि हम आगे और डॉक्टर साहब से और बातचीत कर सकें। तो धन्यवाद सभी को कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता की, और आज का रेडियो डॉक्टर अब हम समाप्त कर रहे हैं। विषय था ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, और हमारे विशेषज्ञ हमारे रेडियो डॉक्टर थे प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, फॉर्मर डायरेक्टर प्रिंसिपल मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। धन्यवाद डॉक्टर साहब यहां आने के लिए, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार शालिनी जी,
0: और सभी श्रोताओं को शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग डेली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
7: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस समय प्रधानमंत्री वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के विशेष इलाज वाले सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दसनायके ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी है। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुल 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 6 नए मंत्री शामिल किए गए और वर्तमान में सोमेंद्र तोमर और अजित पाल को कद बढ़ाकर उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। नए मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। और खेलों में शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद शामिल थीं। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप इस बुरी आदत से निजात पाना चाहते हैं तो अपनाइए ये टिप्स जो आपको मैं आज लम्हे प्रोग्राम में बताने वाला हूं। तो सुनते रहिए आरजे चेतन के साथ आज का लम्हे प्रोग्राम। क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने आप को कंट्रोल करने और सकारात्मक तरीके से समस्या का सामना करने में मदद करता है। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हम स्थितियों या व्यक्तियों के प्रति हमारे प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के उपायों को सीखते हैं। यह हमारे दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को सुखद बनाते हैं। क्रोध को सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए ध्यान, स्थिरता और तंत्र मंत्र तकनीकों को अपनाने में मदद कर सकती है। गुस्सा आना सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल हर किसी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि सबसे शांत व्यक्ति को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है।

आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, सबसे पहले गहरी सांस ले। जिस भी पल आपको गुस्सा आए, अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर गहरी सांस ले। इससे आपको अपने गुस्से से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। मेडिटेशन में भी ये दोनों प्रक्रिया शामिल है। गहरी सांस आपको तनाव से मुक्त करने में मददगार साबित हो सकती है और इससे आपका मन भी शांत रहेगा। अपना मन पसंद गाना सुने। अच्छा संगीत आपके गुस्से और मन दोनों को शांत करता है। म्यूजिक थेरेपी मन में पनपने वाले नकारात्मक विचारों को रोक सकता है। अच्छा संगीत सुनने से आपका ध्यान भी उस बात से हट जाएगा जिससे आपका गुस्सा और कम हो जाएगा। किसी भरोसेमंद यानी ट्रस्टवर्थी फ्रेंड से बात करें। इसी तरह अगर आपका कोई भरोसेमंद दोस्त है तो आप हमेशा अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में किसी को बताएं या फिर बात करना हमेशा आपके गुस्से को बाहर निकालने का एक सहायक तरीका है। अगर ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जब आपका दिमाग परेशान करने वाले विचारों से भर जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो संभव है कि आप बहुत क्रोधित होंगे। ऐसे समय में आप शब्दों में सुकून ढूंढ सकते हैं। रिलैक्स, टेक इट इजी और यू विल बी ऑल राइट, यू विल बी ओके जैसे शब्द या व्याख्यान सभी अच्छे उदाहरण हैं। यदि आपकी किसी से अभी अभी व्यक्तिगत रूप से या किसी कॉल पर झगड़ा हुआ है तो ये जरूरी है कि आप अकेले रहने के लिए कुछ समय निकालें। एक शांत कमरे में सोए और लोगों के आसपास रहने से कुछ समय के लिए बचे। इससे आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है और इसके बारे में सोचने का समय भी मिलेगा। पैदल चलने से आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। यह न केवल आपके सभी मांसपेशियों को आराम देता है बल्कि आपको शांत करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह आपको प्रक्रिया के बारे में सोचने के अधिक समय भी देता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज्यादा बात किए वहां से उठना है और थोड़ा टहल कर आना चाहिए। क्रोध प्रबंधन एंगर मैनेजमेंट एक उपचार नहीं है बल्कि एक चिकित्सा है जिसे आप अपने परामर्शदाता के साथ अपने मुद्दे पर रखते हैं और आप उन्हें कैसे सुधारेंगे इस पर निर्भर करता है। इसमें आपके चिकित्सक के साथ खुली बातचीत की एक श्रृंखला शामिल होती है। नई प्रणाली का पता लगाते हैं जहां आप अपनी निराशा को बाहर निकाल सकते हैं या उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं। इसमें मूल रूप से कई स्तर शामिल है और आपकी चिकित्सीय स्थिति के आधार पर चिकित्सक आपके द्वारा होने वाले स्रोत की संख्या का सुझाव देंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

क्रोध को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे एक अभिव्यंजक और स्वीकार्य तरीके से बाहर जाने देना चाहिए। उपचार के सामान्य लक्षण में से एक यह शामिल होगा कि आप चीजों को कैसे हल्के से लेते हैं। आपको एक अलग दृष्टिकोण से स्थिति को देखना सिखाया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर चीज को मजाकिय अंदाज में लेने के लिए तैयार हो सकते हैं और उस पर हंस सकते हैं। क्रोध प्रबंधन आपको अपनी पहचान करने और उन चीजों को स्वीकार करने में मदद करता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। कुछ दुर्लभ मामले में दवाइयों और दवाइयों को शांत प्रभाव में शामिल किया जा सकता है। यदि आप अवसाद से पीड़ित हैं, तो अवसाद निरोधक गोलियां निर्धारित की जा सकती है। एक चिकित्सक का चयन करते समय

सुनिश्चित करें कि आप कई वर्षों के अनुभव वाले एक को चुनते हैं और जो आपके मुद्दे को संबोधित करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। सबसे बड़ी गाइडलाइन ये होगी कि अगर स्थिति इसकी मांग करती है तो आपकी जीवन शैली और आपके परिवार को भी बदलना होगा। गुस्सा बिल्कुल एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक भावना है जिस पर आप नियंत्रण खो सकते हैं और आपके शरीर को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपको एक ताजा और शांतिपूर्ण वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है जहां तनाव आपको प्रभावित नहीं करता है। यदि आपके कार्य की प्रकृति आपकी स्थिति का मूल कारण है तो आपको काम में बदलाव देखने के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एंगर मैनेजमेंट के बारे में। हम मानते हैं कि यह बहुत छोटी समस्या है, पर यह छोटी छोटी समस्या आगे बढ़कर बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको जड़ से उकार दीजिए और एक हैप्पी फैमिली और एक हैप्पी लाइफ लीड कीजिए। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं अल्फा जेन मेरे साथ यानी मोक्षी के साथ। और आपको पता है इसमें क्या करना है, आपको बनना है अगर रेनबो जीनियस तो आपको करना है मुझे कॉल 2342-1080 पे या फिर 2342-1084 पे। और अगर आप बाहर से कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली का कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। करिए फटाफट मुझे कॉल, मैं तैयार हूँ अपने सवालों के साथ और मैं पूछूंगी आपसे 5 सवाल और अगर आपने 5 सवाल के जवाब सही दे दिए तो फिर आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट डायलिंग

0: तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आने लगी है कॉल्स, तो हम पहली कॉल लेते हैं हमारे लिसनर। हेलो हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, आपको हमारी आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है?
1: जी आ रही है, लेकिन थोड़ी ही कम आ रही है।
0: अच्छा, तो आवाज तो मतलब क्लियर है आपको? थोड़ा तेज मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर क्लियर है आपको क्या मेरी आवाज?
1: जी जी बिल्कुल क्लियर है।
0: जी जी, तो हम क्या क्विज का प्रोग्राम शुरू करें? इससे पहले हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है?
1: जी मैं उमेश बात कर रहा हूँ, हरियाणा से।
0: आप क्या करते हैं उमेश जी?
1: मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एज कॉन्स्टेबल हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ।
0: अच्छा जी, तो हम लोग आप तैयार हैं फिर हमारा क्विज का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट?
1: जी
0: ठीक है, चलिए हम पहला सवाल आपसे पूछते हैं साहित्य से। आपको उम्मीद है साहित्य में रुचि होगी, और आजकल एक किताब है हिंदी की बहुत पॉपुलर हो रही है, सब लोग बहुत पढ़ रहे हैं, उस किताब का नाम है गुनाहों का देवता। तो क्या आप गुनाहों का देवता जो किताब?
1: धर्मवीर भारती।
0: अरे वाह, ये तो आपने सवाल पूरा करने से पहले ही आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत। हमारा पहला क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही बोला है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मनोहर पानीकर के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किनको नियुक्त किया गया था?
1: जो करंट प्रमोद सावंत है करंट में, तो
0: जी अच्छा, ये भी आपका सवाल सही है। आप बढ़ते हैं आगे, यानी अब आप आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आप ये बताइए, अगला ये तीसरा सवाल थोड़ा सा आसान है, जिस स्पीड से आप जवाब दे रहे हैं मुझे तो लग रहा है आप तैयार हैं पूरा। तो चलें तीसरे सवाल की तरफ उमेश जी।
1: जी,
0: तीसरा सवाल है, भारत और चीन के जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है?
1: मैकमोहन लाइन।
0: नाइस, वेरी गुड, तीसरा सवाल भी बिल्कुल सही। और अगला सवाल आता है, चौथा सवाल, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल शुरू करूं मैं, आप तैयार हैं? जी, अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कितनी उम्र तक उस पद को धारण कर सकते हैं?
1: जी 62 वर्ष।
0: आपने अभी तक इतने अच्छे जवाब दिए, उसमें मैं आपको एक और चांस देती हूँ। 62 वर्ष तो सही नहीं है आंसर, एक और आप अटेम्प्ट दे सकते हैं।
1: 65।
0: नाइस, करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, अब अगला सवाल आपने जिस तरीके से, जिस स्पीड से दिया है, उस स्पीड से मैं आपको पक्का बता सकती हूँ कि इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
1: सबसे छोटा ग्रह बुध है।
0: बुध है, यानी मर्क्यूरी। और इसी के साथ ही आप बनते हैं हमारे पहले रेनबो जीनियस। व्हाट अ प्रोग्राम उमेश जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये लगातार 5वां वीक है मेरा जिसमें मैं लगातार आपके पास

0: सौ क्वेश्चनों के जवाब देता आ रहा
1: अरे
0: हूँ।
1: वाह, यानी आपका ये सिलसिला है जो सिलसिला अभी टूटा नहीं है जीतने का, और ना टूटे वही अच्छा है
0: जी कोशिश करेंगे।
1: जी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑल द वेरी बेस्ट, खूब खुश रहिए, मजे करिए। थैंक यू, थैंक
0: जी
1: यू,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से हमारे पहले लिसनर ही हमारे रेनबो जीनियस बन चुके हैं, तो आप भी बन सकते हैं रेनबो जीनियस। आपको हमें करना है कॉल, कॉल का नंबर है 2342108 और 2342108 4। और अगर आप बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आप लगाएंगे 011, जो कि है दिल्ली का कोड। और लगाती हूँ मैं अगला वाला गाना, फटाफट कॉल करिए, मैं कर रही हूँ आपके कॉल का वेट।

0: हम भी यहाँ।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस और हम ढूंढ रहे हैं अपना अगला रेनबो जीनियस। पहले रेनबो जीनियस तो उमेश जी अनाउंस हो ही चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
2: हेलो,
1: आप मुझे सुन पा रहे हैं?
2: हाँ जी।
1: आप अपना नाम बताइए।
2: यज्ञ।
1: यज्ञ, आपका नाम यज्ञ है? यज्ञ आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सुहाना मोहाली पंजाब से।
1: वाह, सुहाना मोहाली पंजाब से बोल रहे हैं आप। क्या करते हैं आप यज्ञ?
2: मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: अरे वाह, तो आपको पता है फॉर्मेट इस प्रोग्राम का कि मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी और आपको 5 के जवाब देने हैं, और अगर आप 5 के सही जवाब दे देते हैं तो आप बन जाते हैं रेनबो जीनियस। राइट
2: राइट मैम, कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल कोशिश करिए आप। तो पहला सवाल जो मेरा है वो फिर से किताबों को लेकर के है। तो एक अंग्रेजी में किताब है और उसको लिखने वाले भी इंग्लिश के ही लेखक हैं, जिसका नाम है, जिस नाटक का नाम है हैमलेट। आपको पता है किन्होंने लिखी है, कौन है इनके राइटर?
2: दोबारा बताना मैम।
1: नहीं, ऑप्शंस नहीं है।
2: क्वेश्चन दोबारा बताना।
1: अच्छा, क्वेश्चन में दोबारा बताती हूँ। ये एक इंग्लिश का प्ले है जिस प्ले का नाम है हैमलेट। ये किन्होंने लिखी है?
2: नो मैम,
1: नहीं याद आ रहा है। चलिए,
2: हाँ,
1: कोई बात नहीं है। और लेकिन हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है यज्ञ?
2: मैम, मेरा एक म्यूजिक है और मैथ है।
1: वाओ, म्यूजिक और मैथ्स, बहुत अच्छा, खूब पढ़।
2: मैम, मैम, मैं चाहता हूँ कि जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा है ना, वो आप दूसरे एक मेरे अगर आगे कोई कॉलर आएंगे उनसे पूछ लेना, ताकि मेरे को इसके बारे में पता चल जाए।
1: जी जरूर, आप जैसा कहें यज्ञ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारे अगले कॉलर को कॉल में आप लेने वाली हूँ। अब मैं आपका कॉल रखती हूँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।
2: बाय मैम।
1: बाय, टेक केयर। हम अपने दूसरे कॉलर को लेते हैं ऑन एयर। हेलो हेलो हेलो
3: हेलो मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार, आप अपना नाम बताइए।
3: मैं संजय बात कर रहा हूँ।
1: संजय
3: जी,
1: संजय जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक अपना एडजस्ट करिए संजय जी।
3: एक सेकंड।
1: हाँ,
3: अभी ठीक है?
1: थोड़ा तेज बोलिए, बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी, अब बेटर है, अब बेटर है जी। संजय जी, आपको मेरी आवाज

0: आप सुनाई दे रही है?
1: जी, आपकी आवाज सही थी यार
0: जी, तो
1: आपकी।
0: बताइए संजय जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ये दिल्ली से
0: दिल्ली से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप संजय जी?
1: अभी तो कुछ नहीं करता मैं, अभी
0: अच्छा
1: स्ट्रगल कर रहा हूँ।
0: अच्छा ठीक है, चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर स्ट्रगल, और आप अब जल्दी से आपका स्ट्रगल ओवर हो और जो आपके सपने हो वो जल्दी ही पूरे हों। तो चलिए, हमारा सवालों का सिलसिला शुरू होता है, आप तैयार हैं?
1: जी मैम जी।
0: जी, तो हमारा जो पिछला क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन हमारा रह गया था, उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि प्ले हैमलेट किन्होंने लिखा है?
1: ये शेक्सपियर ने। जी
0: शेक्सपियर ने, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है ये। तो इसका मतलब पहला आप जवाब बिल्कुल ठीक दे चुके हैं। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस वजह से छोड़ी थी या किस इवेंट के बाद छोड़ी थी? मेरा सवाल
1: वो
0: फिर
1: मैम असहयोग आंदोलन के लिए छोड़ दिया था उन्होंने।
0: ये आंसर तो सही नहीं है। चलिए कोई
1: अपडेट
0: बात
1: होता ना
0: नहीं,
1: ताकि वो
0: नहीं, कोई बात नहीं है, अभी मैं अगले कॉलर से यही वाला सवाल दोबारा पूछूंगी तो
1: मैं आपने
0: आपको।
1: यही पूछा था ना नाइट वुड क्यों, नाइट वुड
0: हाँ
1: क्यों छोड़ा
0: हाँ
1: था
0: हाँ
1: उन्होंने,
0: हाँ
1: वो
0: नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्यों छोड़ी थी? तो इस
1: जलियांवाला बाग में हुआ था ना हत्याकांड।
0: एग्जैक्टली जलियांवाला बाग वाला इवेंट आपको बताना था, बिल्कुल सही
1: इसी में तो
0: आंसर।
1: असहयोग था।
0: इसी के, हाँ, इसी के साथ ही हम पहुंचते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल ये बताइए कि बहुत आसान है, आप तीसरे सवाल में आप ये बताइए मुझे कि नर्मदा और तापी, जो रिवर है नर्मदा और ताप्ती, उनके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी माउंटेन रेंज?
1: अरावली।
0: ये आंसर हो जाता है गलत आपका, कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा खेला, दो आंसर्स आपने, काफी टफ क्वेश्चन था, सेकंड वाला तो सच में टफ था, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, और आपको बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका स्ट्रगल का फेज जल्दी से ओवर हो और आप जो भी कुछ जिंदगी से चाहते हैं वो आपको मिले। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, हम अभी एक और कॉल ले सकते हैं, पर हम अभी एक गाने वाला ब्रेक लेंगे, है ना, और उस गाने वाले ब्रेक के बाद हम फिर से कॉल लेंगे और फिर से सवाल पूछेंगे, फिर से बातें करेंगे। आप कॉल लगाइए और मेरे पास हैं आपके लिए सवाल तैयार।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस की क्विज, और आप जानना चाहेंगे कि अगला रेनबो जीनियस कौन होगा। तो अभी तक हमको एक रेनबो जीनियस मिल चुके हैं, उमेश जी। उमेश जी के बाद हम और भी कॉलर से बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम अगले कॉलर को ऑन एयर लेते हैं, ये उम्मीद में कि अब वो बनेंगे हमारे रेनबो जीनियस। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए।
1: जी। रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, कुतुबपुर हिसार हरियाणा से।
0: अच्छा, हिसार हरियाणा से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप?
1: मैम हरियाणा पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल जॉब कर रहा हूँ मैं। जी
0: अच्छा, हरियाणा पुलिस में आपको हमारा सलाम है। और हम
1: थैंक यू
0: कुछ
1: मैम।
0: थैंक यू और हम कुछ आगे स्टार्ट करते हैं, और आगे स्टार्ट करने में आपको पता ही होगा कि एक के बाद एक सवाल पूछे जाते हैं। आपको पांचों सवालों के सही जवाब देने हैं, और अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आप बन जाते हैं रेनबो जीनियस,
1: जी
0: और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप कर पाएंगे बिल्कुल। तो
1: जी
0: मैं
1: मैम, कोशिश रहेगी।
0: जी तो मैं ये वाला सवाल भी किताब से ही शुरू करती हूँ। एक फेमस किताब का नाम लेती हूँ और आपको उसकी ऑथर का नाम बताना है। उस किताब का नाम है, वो किताब है हिंदी में, किताब का नाम है राग दरबारी, किन्होंने लिखी है?
1: रामचंद्र शुक्ल ने
0: नहीं, ये नाम सही
1: राग
0: है।
1: दरबारी पूछा ना
0: जी
1: मैम।
0: जी राग दरबारी,
1: शुक्ल नाम है ना मैम, शायद कुछ।
0: शुक्ल है। लेकिन लेकिन आपने फर्स्ट नेम सही नहीं बताया।
1: श्रीलाल शुक्ल है मैम,
0: श्री लाल शुक्ल है पहला। ठीक
1: काफी फेमस ये नॉवल। जी
0: हाँ, काफी फेमस है, इसीलिए हम लोग वैसी ही किताबों के नाम लेंगे कि फेमस है, क्योंकि किताबों की दुनिया तो
1: जी
0: बहुत बड़ी है। जरूरी नहीं है हर दुनिया पूरे पूरी दुनिया भर की किताबें हम उनका नाम और ऑथर जानते हों, इसीलिए ऐसी ही किताबों का नाम लिया जाता है जो किताबें बड़ी ही फेमस हैं। तो चलिए हम लोग रामधानी जी आगे चलते हैं, और मुझे अपना सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के सातों स्टेट्स का नाम बताइए।
1: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम,
0: जी
1: त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम। जी
0: सिक्किम नहीं, हो गया था पहले ही पूरा, आपने सिक्किम एक्स्ट्रा बोल दिया, पहले ही हो गया था। ठीक है, और ये देखिए काफी काफी लोग अटक जाते हैं इसमें, एक तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई भूल ही जाता है कि कोई ना कोई एक, लेकिन आपने बहुत रफ्तार से सारी बोली। चलिए आपका दूसरा सवाल भी सही होता है, इसी के साथ ही सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सही होता है। आप ये बताइए कि ये जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है, ये जो दोनों नदियां हैं, इन नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है?
1: ये अमरकंटक से निकलते हैं।
0: इसको एक रेंज बोलते हैं, पूरी पर्वत श्रृंखला है।
1: जी, इनको बोलते सतपुड़ा।
0: सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज, करेक्ट, बिल्कुल सही। और इसके साथ ही आपके तीन हो गए हैं सही जवाब। और अगला क्वेश्चन है आपका, जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि आंध्र प्रदेश का जो डांस है, जो स्टेट डांस है, उसको क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के स्टेट
1: आंध्र
0: डांस,
1: प्रदेश का कुचिपुड़ी।
0: कुचिपुड़ी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर भी आपका सही है। अब आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी थी?
1: महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि,
0: महात्मा की उपाधि, सॉरी,
1: महात्मा की
0: उनकी महात्मा
1: नेताजी
0: गांधी।
1: सुभाष चंद्र बोस।
0: ये आंसर आपका गड़बड़ जा रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है
1: रविंद्रनाथ
0: आपका।
1: टैगोर। जी
0: आपने दो क्वेश्चंस में दो दो अटेम्प्ट लिए
1: मैम, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया
0: हैं।
1: क्योंकि दो उपाधियां थी,
0: जी जी
1: नेताजी
0: जी
1: सुभाष चंद्र बोस ने तो उनको
0: जी
1: राष्ट्रपिता कहा था।
0: राष्ट्रपिता।

0: था जी,
1: और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको
0: जी ने,
1: महात्मा कहा।
0: हाँ, 1915 में पहली बार उन्होंने इस का महात्मा का संबोधन करके, ना महात्मा का संबोधन उनके लिए प्रयोग किया था। ये हो गया आपका पांचवा सवाल, और पांचों सवाल के सही जवाब देने के बाद आप बन जाते हैं हमारे रेनबो जीनियस
1: जी,
0: नंबर
1: थोड़ा
0: टू।
1: सा कंफ्यूजन रहा लेकिन
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए
1: जी
0: सपोर्ट आपको पूरा किया है, और
1: जी
0: मैंने मौका भी जरूर, आप अगर, हमारा प्रोग्राम ही यही है इंटरेक्शन
1: जी
0: का, है ना, तो अगर
1: जी
0: हम बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी हंसी मजाक नहीं
1: बिल्कुल,
0: करेंगे, तो फिर प्रोग्राम का इतना,
1: थोड़ा सा जैसे है ना, इस प्रोग्राम में फोन लगना बहुत बड़ी बात
0: बहुत
1: होती है,
0: बहुत
1: तो नर्व
0: बड़ी,
1: सिस्टम थोड़ा सा है ना,
0: जी
1: हाँ,
0: वो,
1: बढ़ जाता है। जी
0: और इसीलिए जब फोन लग जाता है और जिसका भी फोन कनेक्ट होता है उसको पूरा वक्त देना, उनसे पूरी बात करना, यह फिर
1: जी जी
0: हमारी भी जिम्मेदारी बनती
1: मैम,
0: है।
1: मैं कुछ कहना चाहूंगा,
0: जी जी
1: आकाशवाणी अगले महीने 90 वर्ष अपने पूरे कर रही है इस
0: जी जी
1: उपलक्ष्य में,
0: जी
1: कि आवाज और ये विश्वास का रिश्ता जो है बदलाव के दौर में नहीं बदला है और निरंतर जो है प्रगाढ़ होता गया है, और चाहूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से आवाज और विश्वास का रिश्ता जो है बना रहे। जी
0: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, और हम भी सब की तरफ से आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपना प्यार और भरोसा ऐसी तरह से बरकरार रखें
1: जी धन्यवाद मैम,
0: और हमेशा हमको सुनते रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट,
1: ओके मैम,
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे दूसरे लिसनर जो बन चुके हैं रेनबो जीनियस, इनका नाम है रामधारी जी और ये हरियाणा से थे। उमेश जी के बाद दूसरे लिसनर जो बने हैं रेनबो जीनियस, ये भी हरियाणा से हैं, और कंग्रेचुलेशंस टू हिम। और हम अगली कॉल जरूर लेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक गाना, और गाने के बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
2: Do you feel alright? Wanna natural night?

0: कम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरबीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक नए लिसनर और मैं भी तैयार हूँ अपनी क्विजेस के साथ। हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आपका नाम सर?
1: शिव शंकर बोल रहे हैं मैडम, कटिहार से। मैडम
0: शिव शंकर जी बोल रहे हैं कटिहार से। आप क्या करते हैं शिव शंकर जी?
1: अभी एक्साइज डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, निबंधन विभाग में।
0: चलिए भाई, ये तो मतलब मुझे तो लग रहा है आप भी बनने वाले हैं रेनबो
1: आज आज
0: चीनी।
1: संडे है मैडम, इसलिए छुट्टी में है, इसलिए जो है।
0: नहीं, ये तो
1: और
0: अच्छा
1: मेरा
0: है।
1: मतलब फेवरेट ये प्रोग्राम है, टाइम निकाल कर उसको सुनते ही रहते हैं।
0: आप ना और प्रोग्राम्स भी सुनिए, और भी बहुत सुंदर सुंदर
1: और
0: प्रोग्राम्स
1: ये
0: हैं।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया जो सुनते ही हैं सुबह सुबह,
0: हाँ,
1: और
0: पूरा
1: टाइम
0: एकदम
1: नहीं मिलता वहाँ की।
0: इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। सैटरडे संडे को तो कम से
1: जी
0: कम हमारे सारे प्रोग्राम सुनिए, और सैटरडे संडे को तो इतने
1: जी एकदम
0: मजेदार।
1: एकदम सर, कोई दिक्कत, पूरे सुनते हैं मैडम, सुबह
0: जी जी जी
1: से ही चलते रहता रेडियो।
0: जी चलिए, आप शिवशंकर जी, हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं किताब से एक सवाल पूछूंगी, आप तैयार हैं?
1: मैडम किताब छोड़ दीजिए, किताब से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उम्मीद कम लग रहा था। पूछिए, कोई दिक्कत नहीं
0: ये तो आपने मतलब आपने मेरा सवाल ही बदल दिया। बताइए,
1: है।
0: इस फॉर्मेट में मैं सबसे सबसे पहला क्वेश्चन बुक से पूछ रही हूँ, आपने कहा बुक से सवाल।
1: अच्छा जो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
0: लेकिन मैं बहुत इजी, मैं बड़ी फेमस किताब लेकर के आई हूँ जिसका पता होगा आपको, इसलिए मतलब
1: कोशिश करेंगे।
0: ठीक है। एक किताब है, बहुत फेमस किताब है, हिंदी की किताब है, उसका नाम है शेखर एक जीवनी। इसके लेखक कौन है?
1: नहीं बता पाएंगे मैडम, पहले हम बोल दिए थे। नहीं
0: आप पढ़ते नहीं हैं, मतलब आपको पढ़ने का कुछ उसका शौक?
1: मतलब जो है ये सब बुक जो है हमको लगा 9th-10th क्लास का ही होगा, तो इससे पहले हम बहुत पहले कर लिए, 2012 में ही ग्रेजुएशन कर लिया है मैडम,
0: अच्छा, नहीं, ये बहुत
1: इसीलिए तो वो
0: पुराना
1: सब बुक हम छोड़ दिया। अभी मेरा कंप्यूटर का जो भी काम होता है, वर्क होता है, कंप्यूटर पर करते हैं,
0: हाँ। ये
1: इसीलिए
0: देखिए,
1: उससे थोड़ा सा
0: जो
1: इंटरेस्ट हो
0: जो
1: गया है।
0: साहित्य प्रेमी है ना, साहित्य प्रेमियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन
1: हाँ,
0: किताब है। ये शायद ये किताब साहित्य प्रेमी अगर कोई होगा तो उन्होंने शायद, कई लोग तो इसी से पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी फिलोसफिकल किताब
1: पढ़े
0: है। और इनका
1: होंगे हम भी, लेकिन याद नहीं आ रहा, जैसे ही नाम पूछिएगा तो पता नहीं लगेगा।
0: जी, इनका नाम है, लेखक का नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन। इनका
1: वही तो बोले कि पढ़े हुए 9th क्लास
0: जी,
1: का।
0: और उनका जो जो उनका बहुत ही प्रचलित नाम है, जो नाम उनका बहुत फेमस है, वो अज्ञेय नाम से जाने जाते
1: अज्ञा
0: हैं।
1: नाम है जी मैडम।
0: अज्ञेय, जी हाँ। तभी मैंने देखिए आपसे सबसे सरल सवाल उठाया था। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू मैडम, और प्रोग्राम बहुत अच्छी कर रहे हैं।
0: थैंक यू, थैंक्स अ लॉट,
1: अच्छा,
0: थैंक यू,
1: आपका
0: थैंक
1: पूछने का तरीका भी अच्छा है, कॉलर भी ज्यादा ज्यादा लिए हैं, इसलिए धन्यवाद मैडम। इसी तरह आप आते रहिए, बराबर अच्छा
0: जी
1: रहेगा कार्यक्रम
0: जी बिल्कुल, जरूर,
1: करने के लिए।
0: जी, जरूर, धन्यवाद आपके
1: जी जी
0: जुड़ने के लिए और ऑनेस्टी के लिए
1: थैंक
0: आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके
0: जी। अब हम देखते हैं कि हमारे कोई और लिसनर अभी ऑन एयर आने के लिए तैयार हैं या नहीं। अभी तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी तो मुझे कोई कॉल नहीं नजर आ रही है। भाई दोस्तों, क्या हुआ, आप लोगों ने कॉल करना एकदम से बंद कर दिया? अच्छा, आपको लग रहा है कि आखिरी 5 मिनट हैं तो अब क्या कॉल लें? भाई सवाल मेरे पास तैयार थे, आपने कॉल नहीं किया है आखिरी 5 मिनट में। तो इसी के साथ ही चलते हैं हम अपने आखिरी गाने की तरफ। एक कॉल आ गई है, क्या करा जाए, कॉल लिया जाए? नहीं, कॉल मिस हो गई है। अब इसी के साथ ही हम चलते हैं अब इस प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए, और आप लोगों से खूब सारी मस्ती भरी बातें, नॉलेज की बातें, और ये सारी बातें करते हुए मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैं जानती हूँ आप लोगों को भी पूरा मज़ा आया होगा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं चलाती हूँ अपना ये वाला गाना जिसका नाम है इश्क वाला लव। इसको इंजॉय करिए और हमारे साथ बने रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहाँ लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को

0: मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वजवाला एमवी होडियंस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: feel that. Come on, girl. Be the beat.
1: Hello and welcome. Good evening.
0: Check this out now.
1: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो.
0: Refresh. Come on, yeah.
1: So आपका फेवरेट इवनिंग शो सैटेलाइट्स लेकर के हाजिर हूं मैं. मेरा नाम है शाहिद.
0: Check this out.
1: So, बहुत सारी आपके काम की सिटी अपडेट्स और साथ ही बैक टू बैक एक्साइटिंग ट्रैक्स का भी सिलसिला रहेगा मेरे साथ. तो बने रहे मेरे साथ 6 बजे तक.
0: Come on.

102.6 देश के नंबर वन रेडियो पर आप हैं शायद के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड DUSIB ने शेल्टर होम्स के आसपास मौजूद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लोकेशंस को पिन पॉइंट किया है और इसलिए किया है कि पूरी दिल्ली के शेल्टर्स में रेन बसेरा ऐप के लिए QR कोड लगाए गए हैं ताकि वहां रहने वाले लोगों को खराब मौसम की कंडीशंस में इमरजेंसी असिस्टेंस मिल सके। इमरजेंसी सिचुएशंस में मेडिकल हेल्प इंश्योर करने के लिए शेल्टर्स पर बैनर्स लगाए गए हैं और साथ ही उन बैनर्स पर नजदीकी हॉस्पिटल्स की डिटेल्स के अलावा इमरजेंसी रिस्पांस नंबर्स और DUSIB के समर कंट्रोल रूम के कॉन्टैक्ट भी दिए गए हैं। आने वाले दिनों में हीट वेव कंडीशन के मद्देनजर DUSIB ने दिल्ली के शेल्टर होम्स में रहने वाले बेघर लोगों की सेफ्टी प्रोसीजर तेज कर दी है ताकि उनकी सेफ्टी की जा सके।

0: 1936 से 2026 आकाशवाणी सेलिब्रेट कर रहा है 90 इयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एक्सलेंस। आकाशवाणी पहुंच रहा है 99% से भी ज्यादा आबादी तक, 24 भाषाओं और 146 डायलेक्ट्स में।
1: नमस्कार श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन के बारे में। 19 जनवरी 1936 को दिल्ली केंद्र से पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया, जिससे रेडियो की एक नई भूमिका शुरू हुई। ये प्रसारण इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के अंतर्गत शुरू हुआ, जिसने भारत में रेडियो समाचार सेवा की नींव रखी। समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया गया, जिससे ये और ज्यादा श्रोताओं तक पहुंच सका। समसामयिक विषयों पर वार्ताओं की शुरुआत से रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सूचना और विचार विमर्श का भी एक सशक्त मंच बना। इस दौर में रेडियो ने देश को जोड़ने के साथ साथ और सूचित करने की जिम्मेदारी भी निभानी शुरू की। तो श्रोताओं, ये बात रही आकाशवाणी से पहले समाचार बुलेटिन के बारे में, और अगले अंक में हम जानेंगे ऑल इंडिया रेडियो का जन्म कैसे हुआ। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स,
7: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
8: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
8: म्यूजिक मस्ती।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नाम है शाहिद, आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। दिल्ली सरकार ने नेशनल कैपिटल में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और पोल्यूशन कंट्रोल को बेहतर और मजबूत बनाने के मकसद से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत सेंट्रल रिज एरिया के 670 हेक्टेयर से ज्यादा हिस्से को रिजर्व्ड फॉरेस्ट का स्टेटस दे दिया है। नोटिफाइड एरिया वेस्टर्न फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है और इसमें सरदार पटेल मार्ग और प्रेसिडेंट स्टेट के आसपास के हिस्से शामिल हैं। आपको बता दें कि यह फैसला दिल्ली के इकोलॉजिकली सेंसिटिव रिज एरियाज की प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और यही वो हिस्सा रिज का, सेंसिटिव रिज एरिया का वो हिस्सा है, शहर का वो हिस्सा है जिसे ग्रीन लंग्स ऑफ द सिटी भी कहा जाता है, यानी रिज एरियाज।

लगातार जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है, गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास और ठंडक के बाद फिर दोबारा से वही हीट वेव और गर्मी। तो फिर से गर्म होते मौसम में कल के दिन का भी जो टेम्परेचर था वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही रिकॉर्ड किया गया है। आज भी मौसम ऐसा ही रहा, लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है खबर काफी राहत भरी, जो हो सकती है सबके लिए, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक मंडे से यानी कल से मौसम में फिर से सुहाना बदलाव आएगा ही आएगा। तो प्रेडिक्शन ये है कि आज रात से ही और कल सुबह यानी कि कल से लेकर के ट्यूसडे दो दिन तेज हवा चलेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। इन दो दिन के लिए IMD ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है, और यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से मौसम में अचानक बदलाव आता है। आंधी, तूफान, तेज हवाएं और बारिश, मौसम गर्मी में फिर से ठंडा।

शहर की 18,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर डस्ट और दूसरे लोकल पोल्यूशन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्च कर दिया गया है प्रोग्राम रोड रडार। ये एक रियल टाइम रोड पोल्यूशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जिसके तहत जीपीएस एनेबल्ड बाइक्स पर लगे 13 सर्वेयर्स दिल्ली की 18,000 किलोमीटर की सड़कों पर धूल और प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान करेंगे। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें दिल्ली के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से हर एक में एक ग्राउंड सर्वेयर तैनात किया जाएगा जो रियल टाइम बेसिस पर डस्ट पोल्यूशन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करेगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक सर्वेयर के बताए गए डस्ट पोल्यूशन के हर सोर्स की जानकारी करेक्टिव एक्शन के लिए इंटरनली रिपोर्ट की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उन हॉटस्पॉट पर प्रदूषण को पोल्यूशन को भले वो डस्ट हो या कोई और फॉर्म का पोल्यूशन उसको कम किया जाए।

0: जन्नत से शानदार ट्रैक केके की शानदार आवाज। आप सुन रहे मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद, 102.6 देश के नंबर वन रेडियो रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। और आ गया एक छोटा सा ब्रेक, आई विल बी बैक और आपको बताऊंगा मैं आने के बाद कि बच्चों में किस तरीके से बढ़ रहा है इमोशनल डिस्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

ट्रैफिक वॉयलेशंस की अगर बात करें तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक एक तरीका भी है और एक बड़ा ट्रैफिक वायलेशन भी है। बहुत ही डेंजरस होता है जब आप रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहे हों और सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए या कुछ और कोई लोग आ जाएं, तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है रॉन्ग साइड पर ड्राइव करना। रॉन्ग साइड ड्राइवर्स के ऊपर नकेल कसने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लॉन्च किया कि स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पूरी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, ताकि रोड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए और इंश्योर किया जाए कि जो लोग पैदल चलते हैं या जो अपनी लेन में सही डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, नुकसान ना हो, कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो और ट्रैफिक डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे। तो ऐसे रेकलेस ऑफेंडर्स के खिलाफ ये ड्राइव शुरू की गई है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और बहुत सारे अनगिनत एफआईआर्स भी की गई हैं और चलान का तो कोई हिसाब ही नहीं है। हालांकि लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ चलान कटना ही मकसद नहीं होता है, मकसद है रोड सेफ्टी को बढ़ाया जाए और लोगों को जो सही तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनकी सेफ्टी भी इंश्योर की जाए और ताकि इन चीज़ों पर लगाम लगाया जाए ताकि फिर लोग इस चीज़ से बचें और दूसरों को भी इस बात का सबक मिले। तो आप जब ड्राइव करें तो लेन में ड्राइव करें, रॉन्ग साइड पर ड्राइव ना करें, स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और जब आप टू व्हीलर राइड कर रहे हो तो हेलमेट भी ज़रूर लगाएं।

और सिटी लाइट्स में मैं आगे आपको बताऊंगा कि बच्चों में किस तरीके से ये बढ़ रहा है इमोशनल डिस्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, और इसके लिए क्या निकाला गया है हल। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर, दिल से दिल तक आप हैं शायद के साथ।

आजकल बढ़ते हुए बच्चों में बढ़ता इमोशनल डिस्ट्रेस और हावी होता मेंटल स्ट्रेस बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। अब यहां सिर्फ हेल्थ इशू बनकर रह गया है बल्कि सोशल और क्रिमिनल चैलेंज के रूप में भी सामने आ रहा है। फैमिली में कम होता क्रूशियल कम्युनिकेशन और बढ़ता वायलेंट डिजिटल कंटेंट का एक्सपोजर इस प्रॉब्लम के लिए है सबसे ज्यादा जिम्मेदार, जो इन बच्चों इन टीनेजर्स को मेंटली अनस्टेबल और वीक बना रहा है। ऐसे बच्चे अपने इमोशंस खुलकर जाहिर तो नहीं कर पाते और आहिस्ता आहिस्ता गुस्से और एग्रेशन का शिकार बनकर गलत संगत की तरफ भी बढ़ जाते हैं और ऐसा देखा जा रहा है। इस सेंसिटिव इशू की सेवेरिटी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ने चिंता जाहिर की है। इसके सॉल्यूशंस के लिए स्कूलों में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और हेल्पलाइन सर्विसेज भी शुरू की जा चुकी हैं ताकि नाबालिगों से जुड़े क्राइम्स में कमी आए, जो लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किशोरावस्था बेहद संवेदनशील दौर होता है। जब कई कारणों से इनमें विद्रोह और एग्रेशन बढ़ जाए तब इन्हें इमोशनल CPR की जरूरत होती है। अब इमोशनल CPR का मतलब क्या होता है? इमोशनल डिस्ट्रेस, अकेलापन, गुस्सा या मेंटल क्राइसिस से गुजर रहे टीनेजर को टाइमली सपोर्ट देना होता है इमोशनल CPR। आसान भाषा में अगर समझा जाए, उन्हें जादू की झप्पी देना और बजाय उन्हें जज करने के उनको सुनना, उनको समझना। बढ़ते बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है वायलेंट गेम्स, गैंग कल्चर और एक दूसरे के दिखावेबाजी वाला आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल। और यही सब चीज इन बच्चों की साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा बुरा असर डाल रही है और जरूरत है ऐसी डेलिकेट और सेंसिटिव एज में उनको बचाना, तो जरूरी है उन्हें बचाया जाए और डिजिटल कंटेंट पर खास तौर पर कंट्रोल किया जाए।

तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप इन बच्चों को, इन टीनेजर्स को बताएं कि आप उनके साथ हैं एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। विकास आगे लेकर मैसेज मसाला मिक्स, आप उनके साथ रहें और एंजॉय करें आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। शायद यहां से लेगा आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में

शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं MMM यानी कि मैसेज मसाला मिक्स। और आज मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और क्या करते हैं इसमें जी, हम दिल की बात करते हैं अपनी, है ना। मैं पूछता हूं अपने दिल की बात और आप अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचाते हैं। और नंबर हमारा वही रहता है हमेशा की तरह 9868107070। ये नंबर है हमारा, इस पे आप अपने दिल की बात भेज सकते हैं। लेकिन मेरे दिल की बात आज क्या है, पहले मैं वो पूछ ही लेता हूँ जल्दी से। और मैसेजेस कहने की जरूरत नहीं है, आने लगते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब एकदम बरसात तो होती है जी बिल्कुल। लेकिन लेंगे मैसेज आपके भी। और फिलहाल अपने दिल की बात आज मैं पूछ लेता हूँ कि भीषण गर्मी तो पड़ ही रही है ना, और सभी उसका सामना कर ही रहे हैं। बीच बीच में थोड़ी बहुत ठंडक सी भी कभी कभी हो जाती है बरसात की वजह से, थोड़ी बहुत, जो भी जैसे भी। लेकिन फिलहाल जो गर्मी का जो प्रकोप है जो पड़ रही है, और उसी से रिलेटेड आज मेरे दिल में एक बात आई कि ऐसा कोई जरूरी काम जो आपने सोच रखा था लेकिन इस भीषण गर्मी की वजह से उसे फिलहाल रोकना पड़ा, यानी कि अभी वो नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब मौसम थोड़ा सा आनंदमय हो जाए तो उसके बाद उस काम को भी पूरा किया जाए। ऐसा कोई काम जो अटक गया है, लटक गया है फिलहाल इस भीषण गर्मी की वजह से, तो आप मुझे बता सकते हैं। नंबर हमारा वही है 9868107070। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूं आपके साथ आपका अपना विक्स।

हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम सब वाकिफ हैं इस बात से। और प्रोग्राम शुरू हो गया है, गर्मी थोड़ी कम करते हैं यानी कि मैसेजेस लेना शुरू करते हैं आपके। तो अंशु शर्मा हस्तिनापुर से लिखती हैं, मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि जब बात गर्मी की वजह से जो काम पेंडिंग है हुआ है, तो फिलहाल हमारा तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन ज़्यादा बाहर आना जाना कम कर दिया है। अंशु शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से। ओके जी, यानी काम ऐसा कोई नहीं है खास जिसे आपको पोस्टपोन करना पड़ा हो, रोकना पड़ा हो, लेकिन फिर भी अपने पार्ट पर आपने कम कर रखा है, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। नमस्ते जी, मेरी ओर से समस्त देशवासियों को मदर्स डे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि सभी अपने पूज्य माता जी का हर पल ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से, और हमारी तरफ से भी सभी दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो मैं खुद ये मानता हूँ कि हर दिन माँ का अपना जो होता है प्रेम दर्शाने का, हर दिन जो होता है वो खास होता है। मदर्स डे मेरे लिए तो हर डे मदर्स डे ही होता है, लेकिन चलिए कोई ना कोई एक दिन खास उनको एहसास कराने का, उसका भी एक अपना मजा है। राधे राधे जी, राधे राधे। कसौली से वंशिका ठाकुर लिखती हैं, यहाँ तो गर्मी है ही नहीं, अच्छा यहाँ गर्मी है ही नहीं, थोड़ी सी बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, समझ नहीं आता स्वेटर पहने या नहीं। अरे वाह क्या बात है, मुझे भी बहुत सारी आइसक्रीम खानी है पर अच्छे से गर्मी आए तब ना। अरे वाह, देखिए कितनी अजीब सी बात आपने लिखी है। अजीब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि गर्मी कैसे कम हो, और आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी गर्मी।

आए तो आइसक्रीम का मजा ले। क्या बात है, गर्मी ने गर्मी ना होने की वजह से खाने भी नहीं देते घर वाले आइसक्रीम, वरना गला खराब हो जाता है। हाँ, ये मसला रहता है जी, बिल्कुल भी। लेकिन ये देखिए, कुदरत की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यही कह सकता हूं मैं तो। लेकिन उम्मीद ये करूंगा आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी यहीं से ले जाइए ना, हमारे इस प्रदेश से। थोड़ी सी बहुत भीषण गर्मी है जी फिलहाल तो। हाँ, कभी कभी खुशगवार भी हो जाता है। उम्मीद करूंगा आपको जल्दी से आइसक्रीम खाने का मौका मिल ही जाए। अनूप कुमार झारखंड से, ड्यू टू समर आई डिडंट ट्रेवल हैड फॉर समर वेकेशंस। ओके, यानी कि आपका जो मन था वो ट्रेवल करने का था और वो अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं आप, ये मैं समझ सकता हूं दोस्त। वेलकम टू द शो। शुक्रिया सरकार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। अफसा खानम फ्रॉम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और आपको भी, तमाम दोस्तों को भी एक बार फिर, और आज के टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ दिल की बात है तो जल्दी से भेज दीजिए। गर्मी थोड़ी कम हो तो बल्ली मारान बाजार पुरानी दिल्ली जाऊं और जरूरी सामान लेकर आऊं। वैसे 1960 दशक जैसी गर्मी लू चलती नहीं देखा दिल्ली में बरसों से। 1972 में घर वाले आए थे, क्या बात है। अनिल शर्मा सरिता विहार से। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करूंगा आप भी अच्छे होंगे। हम तो किसान हैं, हम तो सारी दोपहर धूप में खेतों में काम करते हैं, हमारा कोई काम पोस्टपोन नहीं होता। वाह, क्या बात है, ये भी एक अपना एक अनुभव, और कितना अच्छा अनुभव है, मतलब प्रेरणादायक है कह सकता हूं बिल्कुल। पूर्णिया बिहार से मोनम कुमारी। कभी कभी मौसम हमें रोक देता है ताकि हम थोड़ा ठहर कर अपनी मंजिल की तरफ कदर कर सके। अच्छा, ओके, के मंजिल की कदर कर सके। मेरा घूमने का प्लान अभी थोड़ा अटका जरूर है, पर यकीन है कि जब ये मौसम बदलेगा तो वो सफर और भी सुहाना लगेगा, क्योंकि कुछ इंतजार के बाद मिली खुशी का सुकून ही अलग होता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये दूरियां होती है ना, ये दूरियां कभी कभी हर चीज का जो मजा है उसे बढ़ा देती है। यानी कि मैं जब आपसे मिलता हूं बहुत दिनों बाद, कई बार होता है कि जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, होता है, बिल्कुल होता है जी, नहीं भी मिल पाते हैं किसी वजह से, लेकिन जब मिलते हैं तो उस बीच में क्या ही बेकरारी हो जाती है अपने दोस्तों से मिलने की। ये चल रहा है प्रोग्राम, यानी आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। एक दोस्त ने पूछा है तो बता देता हूं, मैसेज मसाला मिक्स का प्रोग्राम है जहां दिल की बात दिल से होती है, पहुंचती भी है, लेकिन पहुंचती कैसे? 9868107070 नंबर है हमारा। इसी तरह अपने दिल के जज्बात हम तक पहुंचाते रहिए और गीत का आनंद लेते रहिए, और जरूर हम आपके मैसेजेस को साझा करेंगे अपने तमाम दोस्तों के साथ।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक जी। छोटे से अंतराल के बाद लौट आया हूँ प्रोग्राम लेकर मैसेज मसाला मिक्स। हेलो हेलो जी, आई एम मेघा सिंह इन बिहार। 6 से 12 मेरी क्लास थी, लेकिन मैं इतनी गर्मी और धूप में आना ना पड़े इसीलिए अब 7 बजे इवनिंग में क्लास को ले लिया है, मतलब बढ़ा लिया है अपना टाइम। आपने गर्मी यूजफुल हो गया है। हाँ बिल्कुल सही, आपने काम किया, दिमाग से काम किया और सही में अब गर्मी यूजफुल हो ही जाएगा। हाँ जी सर, धन्यवाद, आपके यहाँ से थोड़ी गर्मी आ जाए तो। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। जी बिल्कुल, सभी को एक बार फिर से, मजदूर के लिए और किसान और बॉर्डर पर जवान के लिए ना ठंड धूप बरसात कुछ नहीं लगती, हम इनके लिए दुआ करें और सम्मान करना चाहिए। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद आपका, बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारा जो सम्मान है, हमारे दिल से तमाम जो आपने नाम लिया है, मजदूर जो हमारे भाई हैं, किसान और जो बॉर्डर पर जो हमारे जवान हैं, इनके लिए बिल्कुल हमेशा होना चाहिए, कोई खास दिन नहीं, हर दिन खास है इनके लिए। तो हमारी तरफ से पूरी दुआ है इनके लिए। इसी तरह ये हमारे लिए जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं इनके लिए, हमें भी करना चाहिए, कम से कम इनके लिए दुआ तो जरूर करनी चाहिए। सब सलामत रहे, अच्छा रहे। हेलो हेलो जी, कौन है? शिवांशी, शिवांशी हियर। सबको मदर्स डे बहुत बधाइयां जी, आपको भी। इस गर्मी के मौसम में मेरी मम्मी सारी चिड़ियों और जानवरों के लिए पानी भर के रखती हैं, बहुत अच्छी बात है जी ये तो, और उनके लिए दाना भी डालती हैं, जिससे बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया हमारे घर आ जाते हैं और उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी आपको इस बढ़िया से अच्छे से जो आपका अनुभव है उसको साझा करने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार सरकार। हमारे इधर थोड़ी बारिश हो गई है, गर्मी से थोड़ी

राहत मिली है यशवंत आठबूटे धाराशिव महाराष्ट्र से। क्या बात है, थोड़ी सी इधर भी खिसका दीजिए यानी हमारी तरफ तो मजा ही आ जाए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, हमारी ओर से सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत। मैं जैसा मन जैसा कोई हुआ है ना कोई हो सकता है, हम भी शामिल हो गए हैं, हमारे भी अटेंडेंस लगा लीजिए मैजिक मसाला मिक्स यानी मैजिक मसाला मिक्स के प्रोग्राम में। नाइस प्रेजेंटेशन, शुक्रिया जी किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिखती है, 9th क्लास की किताबें पूरी नहीं मिल रही है क्यों, और ऑनलाइन पर एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दोस्त, आज का जो टॉपिक है, जो मैंने पूछा है कि गर्मी की वजह से कोई काम ऐसा रुका है आपका, अटका है, वो आप हमसे साझा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं नवलू वरक मलपड़ा गोवा से संदेश भेज रहा हूँ कि इन दिनों हमारे गोवा में गर्मी बहुत बढ़ गई है। आपका सॉन्ग सेलेक्शन वेरी नाइस, शुक्रिया सरकार, वक्त मिले तो गोवा के समुंदर किनारे आ जाइए। आपने जो लिखा है उस लिखते ही, मतलब पढ़ते पढ़ते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने समुंदर है और मैं बैठा हूँ बिल्कुल। वाह क्या नज़ारा होता है। हमारा गोवा यूं तो टूरिस्ट प्लेस का फेमस है, अरे हमारा भी फेमस है जी, और बिल्कुल है, हमारी लिस्ट में है कि हम ज़रूर कभी आना चाहेंगे। देखिए सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से आदरणीय जी, आप भी हमारे सादर आदरणीय हैं, प्रणाम आपको भी बहुत बहुत सरकार। इस गर्मी के कारण हमें घर की रिपेयरिंग का काम पोस्टपोन कर दिया है। ओके जी, बिल्कुल समझ में आता है। आपका वर्तमान और भविष्य बहुत मंगलमय हो, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद, आपको सरकार बहुत ज्यादा। मोहम्मद मोनम कुमारी, गर्मी की ये तपन भले ही कदमों को रोकती हो पर यादों और सपनों का सफ़र कभी नहीं रुकता। हाँ वो बिल्कुल अलग है बात और सही बात है। मेरा वो घूमने जाने का प्लान अभी थोड़ा पॉज पर है। जी जी बिल्कुल, पर ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही वो सुहाना वक्त भी आएगा जब रास्ते ठंडे होंगे और मंजिल सामने होगी। क्या बात है, और ज़रूर होगा, मौसम तो ज़रूर बदलेगा। तो फिलहाल हम ये बात कर रहे थे कि जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। शुभ संध्या, शुभ संध्या जी, कर्म तो करने पड़ते हैं, गर्मी ज़्यादा हो या कम। राजेश भल्ला जी, एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से, सही आपने कहा, मात्र शक्ति को नमन। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ मैं एग्री करता हूँ, सहमत हूँ, वो तो हमें करना ही होता है बिल्कुल। लेकिन कई बार होता है कुछ सोचा हो आपने और इस वजह से थोड़ा, जैसे हमारे दोस्त जो हैं अपने अपने जो अनुभव है साझा कर रहे हैं, तो इस तरह का भी काम हो जाता है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी जी इन चीज़ों से, है ना। हाँ लेकिन ये है कि जैसा सही लगे, थोड़ा ठहराव आ जाए, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है।

0: अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेलकम बैक जी, छोटा सा अंतराल और लौट आए हम लेकर प्रोग्राम जी। बिल्कुल, जो चल रहा है बिल्कुल सुन रहे हैं आप, क्या है वो? मैसेज मसाला मिक्स। और संदेश आपके आ रहे हैं, दिल की बात आ रही है और बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। तो ये हमारे एक दोस्त हैं विजय, और लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम ऑन रेनबो। स्वागत है जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और देखिएगा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं और ये दोस्ती जो है ना बिल्कुल चलती रहेगी, लंबी रहेगी जी। पल्लव मुंबई, हैप्पी मदर्स डे सभी को और आपको भी दोस्त। इट्स प्रेटी हॉट हॉट जी जी जी जी, स्टिल एंजॉइंग द वार्म हॉट वेदर। ओके, तो ये जो कला है ये, हाँ मैं ये मानता हूँ कि देखिए हर मौसम का अपना एक मज़ा भी होता है और सज़ा भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी के बीच में जो है ना हमें बैलेंस करना होता है ना। और वो जो बैलेंस कर लेते हैं तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले हो जाते हैं जी। खैर कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात है। फिलहाल ये बात हो रही है कि कोई ऐसा काम आपका जो इस भीषण गर्मी की वजह से फिलहाल आपने सोचा हो कि रोक लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो तो बताइए। इकबाल राय गुलाटी पिपली कुरुक्षेत्र से मदर्स डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं, और पिपली में मौसम बहुत गर्मी नहीं है। ओके, मतलब कहने का यह है कि कोई काम नहीं पेंडिंग है, हम ये कह सकते हैं। नमस्ते जी, इन दिनों यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। हमारी ससुराल से कई बार फोन आ गया है कि जी जाजी गर्मी पड़ रही है, आ जाइए एक दो दिन नैनीताल घूमने चलते हैं, किंतु इन दिनों दुकान पर काम कुछ ज़्यादा है इसलिए मैंने घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। मेरे लिए कर्म ही पूजा है, पहले काम है बाद में घूम लेंगे। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से, आपके इस सोच को सलाम है बिल्कुल, और कोशिश कीजिए। वैसे मौके कम आते हैं जो अपनों के साथ घुमा फिरा जाए, तो देख लीजिए अगर बनता हो तो। खैर आपकी अपनी सोच है तो उसकी सोच को हमारा सलाम तो है ही। गुड इवनिंग, हर मौसम का अपना अलग ही मजा है, इसलिए गर्मियों का भी आनंद लीजिए। ठंडी पेय, अच्छा ओके, पदार्थों का मजा लीजिए और कूल सोच भी रखें। रवि जोशी मेरठ से, हाँ ये तो करना ही पड़ेगा वरना कैसे निजात मिलेगी, करना ही पड़ेगा। हेलो जी, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली, मैं बहुत अच्छा हूँ दोस्त। ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट देयर इज नो पेंडिंग वर्क फॉर विच आई हैव टू वेट फॉर द वेदर टू चेंज, देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वी हैव टू फुलफिल, राइट ब्रो, विदाउट थिंकिंग अबाउट द वेदर, डूइंग आर जॉब, गोइंग टू द ऑफिस एंड अर्निंग फॉर द फैमिली लाइक अ ब्रेव सोल्जर जी, एंड दैट्स व्हाई वी सैल्यूट आवर सोल्जर एंड द काइंड ऑफ सोल्जर्स वी आर हैविंग, जैसे आप हैं, है ना, जो इतनी अच्छी अच्छी सोच रख रहे हैं। हमारे दोस्त थे प्रेमचंद प्रेमी जी, उन्होंने भी यही कहा कि हमने फिलहाल घूमने का प्रोग्राम रोक दिया है क्योंकि कर्म ही पूजा है, तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मानता हूँ मैं, बिल्कुल मानता हूँ, और इसमें पूरी शिद्दत से मेरा भरोसा भी है। बस यही कह रहा था कि जरा सा मौका मिले तो एंजॉय

भी मौका गवाना नहीं चाहिए दोस्त। नमस्कार जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। देखिए, उधर से आपने पहले ही बोल दिया और मैं तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे ही। रोज़ मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, प्रोग्राम से अच्छी आपकी आवाज़ लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम तुलापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी, स्वागत है आपका। और आज के टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ लिखिए ना। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जब किसी दिन गर्मी होती है तो दूसरे दिन गरज के साथ बारिश हो जाती है। अच्छा जी, इसीलिए गर्मी के कारण तो कोई काम नहीं रुकता, लेकिन वर्षा के कारण काम ज़रूर रुक जाता है। रंजीत कुमार मंडल, सिकटी, अररिया, बिहार से। ओके, मतलब सिचुएशन उल्टी हो गई यहाँ पर। मुसाफिर खान, फरमान खान, विशाल कुमार, अमित कुमार, आशु गुप्ता, राजनगर पालम दिल्ली से लिखते हैं, वेलकम टू MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी मदर्स डे जी, बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से लिखते हैं, मदर्स डे की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। घर के सीनियर सिटीजन्स और बच्चों को इस गर्मी में बचा कर रखें, जहाँ तक काम हो उन्हें दिन में ना निकलने दें, जहाँ तक मतलब हो सके उन्हें दिन में ना निकलने सके। जी जी बिल्कुल, वैसे इस गर्मी में अभी कोई काम नहीं अटका और कुछ प्लान नहीं है। बिल्कुल, बात ख़त्म ही हो गई जी। कोई प्लान नहीं किया तो कुछ अटकेगा ही नहीं। कविता, ये गर्मी किस वजह से बढ़ती जा रही है तो बहुत सारी इसके कारण इन्होंने दिए हैं और वो बात सही है, लेकिन ये कहूँगा दोस्त कि कविता जी, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि कोई ऐसा आपका है ना, आपका खुद का कोई ऐसा काम कि जो इस गर्मी की वजह से सोचा हो आपने कर तो लूँगी लेकिन नहीं हो पाया हो, वो कुछ हो तो साझा कीजिए ना। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स।

हम अभी बारिश होगी, हम अभी खेलते हैं राज कन्या नंद सानिका परी बाव्या सवरा मुक्ता बापू धारशी महाराष्ट्र से। यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि बारिश का मौसम शायद आपकी तरफ हो गया है और अभी आप खेल रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अगर मैं समझ पा रहा हूँ आपकी इन बातों से जो आपने लिखा है, तो बहुत अच्छा है जी, इन्जॉय कीजिए। शुभ संध्या मित्र सरकार, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभ संध्या। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं। शुक्रिया जी, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। और आज का जो टॉपिक है, जो दिल की बात मैंने पूछा, उससे भी रिलेटेड अगर आप लिखते तो मज़ा ही आ जाता। दोस्त, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे और प्यारे इंसान हैं, हमारे छोटे साले साहब धर्मेंद्र शर्मा जी। तो जी बिल्कुल, उन्होंने भी अपना नैनीताल जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है मेरी वजह से। हम 10-15 दिन के बाद घूमने जाएंगे नैनीताल, 2-4 दिन के लिए, और इनविटेशन आया है मुझे। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा। और प्यार भरा नमस्कार आपको भी, तमाम हमारे जो आपके साथ दोस्त सहपाठी जो सुन रहे हैं, धर्मेंद्र जी को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार से और पूरा सम्मान है। और कोशिश करेंगे जी, नैनीताल जगह कौन नहीं जाना चाहेगा, इतनी प्यारी सुंदर जगह पे, वाह मज़ा ही आ जाएगा। नमस्ते सर जी, अंगद यादव शिवरामपुर आजमगढ़ यूपी से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। इस दोस्ती को बनाए रखिएगा। और आज का जो दिल की बात, आज की जो दिल की बात थी जो मैंने आपसे पूछी है, उससे रिलेटेड भी अगर कोई दिल की बात है तो भेजिए हमें, और मैं बता देता हूँ। अगर नहीं आपने सुना हो हमारे दिल की बात, तो बस इतनी सी बात थी कि इस भीषण गर्मी की वजह से कोई ऐसा काम जो आपने सोचा हो पहले मैं करूँगा, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए हो, तो अपने लिए सब सोचते हैं, जवान कभी जवान किसान और मजदूर के लिए भी सोचिए। जी बिल्कुल, यह आपने सही कहा है, और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें पूरा सम्मान है उन सभी दोस्तों का जो हमारे हमारे लिए जो हमारे लिए लड़ते हैं, खड़े हैं सीमा पर, हमारे लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो उनका पूरा सम्मान है। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, क्योंकि देखिए हर किसी का अपना अपना सोचना होता है। कविता जी हैं, तो कविता जी आपने आज का जो टॉपिक है, मतलब आपका कोई ऐसा काम मुझे लग नहीं रहा कि गर्मी की वजह से पेंडिंग है, तो अच्छी बात है। आप मौसम भी मुझे लगता है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से लिख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ वहां पर शायद इतनी गर्मी नहीं होगी, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा बिल्कुल लुत्फ ले रहे होंगे मौसम का, तो थोड़ी सी ठंडक हो तो प्लीज यहाँ पे भी भेज दीजिएगा। और कुछ लोगों का दिमाग बहुत गर्म होता है, और इतनी गर्मी में और ज्यादा गर्म रहता है, ठंडा रखिए और पानी और आइस का यूज वो करे। ओके, एडवाइस मैं दूं कि ऐसे लोगों को? अरे अरे अरे, अरे मेघा जी, मैं एडवाइस क्या ही दूंगा, लेकिन ये जरूर है, मैं तो सिर्फ अपने दिल की बात कह सकता हूँ दोस्त, कि दिमाग गर्म है, खराब है, कुछ भी है,

अरे चीज़ हमारी जो शुरू होती है, मतलब मेरी अपनी मेरा अपना मानना है कि जो भी हमारी चीज़ होती है शुरू, वो थॉट से होती है, जो सोच होती है, सोच जितनी शांत होगी वो आपके लिए भी उतनी ही शांतिदायक काम मतलब आपका होगा। यानी कि दिमाग जो आप बात कर रहे हैं, जो विचार हमारे आते हैं वो कहीं ना कहीं कूल होने चाहिए। जब विचार कूल होंगे तो बाकी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही करेगी। करके देखिएगा एक बार। ऐसा कोई बहुत ज़रूरी कोई भी कार्य पेंडिंग तो नहीं है, पर गर्मी की तेज़ धूप की वजह से घर के बाहर निकलना बंद हो गया है। दोपहर में घर बहुत गर्म हो जाता है, ज़्यादा सोने का मन करता है। प्रवीण चौहान, खरगोन, मध्य प्रदेश से। ये बात समझी जा सकती है जी आपकी। आप गर्मी में कैसे कूल रहते हैं? कूल कूल प्रेजेंटेशन और सूदिंग मेलोडियस ट्रैक सुनाकर को जरूर गर्मी में ठंडी हवा का एहसास करवा, श्रोताओं को जरूर गर्मी में ठंडी हवा का एहसास करवा रहे हैं। रवि जी मेरठ से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सही बता रहा हूँ कि जो मेरी मेहनत होती है ना, जब आप लिखते हैं ऐसा मैं फील करता हूँ। अगर आप तक पहुँच रही है वो बात, बिल्कुल मेरा तो मकसद यही था कि बात चाहे गर्मी की होगी शुरू, लेकिन बीच बीच में जो गानों का तड़का लगेगा यानी ठंडक हम कोशिश करेंगे बना के रखे। तो बस कोशिश कुल मैं कुछ नहीं करता हूँ जी, बस अपना काम करता हूँ। और हाँ, जो विचार है जैसा कि मैंने कहा, सोच थॉट, वो कहीं ना कहीं ठंड रखना, मतलब कि वो जितना कूल होगा वो उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी फिजिकली जो ऐसा कि हमारे कई दोस्तों ने सजेस्ट भी किया, और आप जानते भी होंगे कि जितनी ठंडक पेय पदार्थ हैं यानी पानी का सेवन तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ही इस भीषण गर्मी में, वो सबसे ज़्यादा है। और भी कई तरीके हैं, और रेनबो के प्रोग्राम जो आते हैं हमारे, उसमें कई तरह के प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आपको बिल्कुल एडवाइस भी मिलेगी अच्छी सी कि कैसे अपने आप को शांत रखें ऐसी गर्मी में। बस एक ही आवाज़ निकलती है, हाय गर्मी। हमारी दोस्त हैं एक, और नाम नहीं लिखा दोस्त आपने, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, ये गर्मी क्यों करती है। लेकिन हाँ, ये भी होता है कई बार कि गर्मी भीषण पड़ती है, और कई हमारे दोस्त हैं, और कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, और उनमें से कई बार ऐसा भी होता है कोई दोस्त होता है बहुत प्यारा होता है, मिलना है तो जी मिलना है उनसे, क्या करें, दिल ही तो है साहेब।

जी बिल्कुल, जुर्म इतना ही है हमारा कि हम भी आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से लिखते हैं। हम कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखते, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी हो। बहुत अच्छी बात है सर। और हाँ, उन दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने आज किसानों के बारे में बात की। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात लगी मुझे भी। हम ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। घर बनाना चाहता था पर कंपनी ने हमारी सुरक्षा को देखते हुए छुट्टी कर दी। मैं दुबई में था ईरान के, ओके, और किसी वजह से मेरी प्लानिंग फेल हो गई। जो वजह लिखी है आपने, मैं समझ गया हूँ। और कुल मिलाकर वो काम आपका पेंडिंग हो गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार, वेरी नाइस प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग्स। अशोक रोहिल्ला मेरठ से, शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया बहुत बहुत। मोहम्मद फुरकान जी लिखते हैं, टॉपिक क्या है? टॉपिक इतना ही था दोस्त कि कोई ऐसा काम जो इस भीषण गर्मी की वजह से रुक गया हो आपका, बस इतनी सी बात थी। मिसबा शमसी फ्रॉम नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, इस गर्मी में काम करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर कोशिश यही है कि सब अच्छे से पूरा हो। उम्मीद है कि मौसम जल्द ही ठंडा होगा और हमारा काम और भी बेहतर तरीके से चलता रहेगा। मैं भी उम्मीद यही कर रहा हूँ। हैप्पी मदर्स डे, एक दोस्त लिख रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत, तमाम दोस्तों को भी। नाम नहीं लिखा आपने। सॉन्ग दिल का क्या करें, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, बहुत ब्यूटीफुल है, तब भी तो आपके लिए प्ले किया ना दोस्त। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आपका मैसेजेस पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है। शुक्रिया, थैंक्स। आपका भी दोस्त, नाम लिख देते ना तो और भी मज़ा आ जाता। आदाब।

फिर देरी से हाजिर हुए हैं कस्बा गुन्नौर और यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया, ताहिरा। थोड़ा नाराज हूं मैं। नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे नाराज हो सकता हूं आपसे, आप आए वही बहुत है, काफी है। रात 8 बजे म्यूजिक मस्ती का प्रोग्राम होगा, तो फिर उसमें भी धमाल मचाएंगे, मजे करेंगे। अगली बार 17 तारीख को होगी मुलाकात, फिलहाल आज रात भी मिलेंगे। और अभी ये गाना आप सभी के लिए, थोड़ा सा वक्त है, उसे भी इंजॉय करेंगे।

और दोस्तों वक्त तकरीबन हो गया है कि मुझे इस प्रोग्राम से आपसे विदा लेना पड़ेगा। एक मैसेज आया है, शुभ संध्या सरकार, बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुनाया आपने, दिल का क्या करें। अच्छा है ना, देखिए अच्छे चीज दिल से दिल तक निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी सरकार, और कोई बात नहीं। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा रात 8 बजे, म्यूजिक मस्ती का प्रोग्राम होगा, आइएगा, शिरकत कीजिएगा, मजे कीजिएगा, धमाल कीजिएगा। अगली बार, यानी अगली बार, कई दोस्त पूछ रहे हैं तो बता देता हूं, 17 तारीख को मुलाकात करेंगे। मैसेज मसाला बिक्स का ही प्रोग्राम होगा, है ना। तो फिलहाल इस प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवित्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया।

भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: विकास के बाद झकास, यू इन कंट्रोल दिस इवनिंग विद योर मेन मैन, योर होस्ट विद द मोस्ट, सुप्रदीप मुखर्जी। टाइम फॉर दोस वायर्स टू कम क्रैकलिंग टू लाइफ ऑन लाइव वायर। म्यूजिक टू मेक द तेंदुआज ऑफ द अरावली माउंटेन्स गो बहरा। डेफ लेपर्ड।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या

0: चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

I think I should leave you with this beautiful Mother's Day poem that Anil Sharma Vashisht has sent to me from Sarita Vihar. He says, Supradeep, Matri Prem Kismat Walo Ko Milta, Matri Ke Shabd Mein Hona Chinta Kyun Karta, Mushkil Ke Vakt Ye Shabd Jari Booti Mano, Matri Lagti Doctor Tanav Dur Kar Deti, Jis Ghar Mein Khas Budhape Boodi Maa Ho Saath, उन घरों में अंधेरा नहीं उजाला ही रहता. मातृ दिवस की तुम्हें हार्दिक बधाई. थैंक यू सो मच अनिल शर्मा वशिष्ठ फॉर सच अ ब्यूटीफुल पोएम. मातृ दिवस की आपको भी और आप सबको हार्दिक बधाई. विकास इज ऑलरेडी इन द स्टूडियो एंड रेडियो विल स्टार्ट गेटिंग बेटर इन द नेक्स्ट 4 मिनट्स बिकॉज वी हैव अ बेटर रेडियो जॉकी इन द हाउस. थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फॉर 1 hour. You will again have to tolerate me for another hour from 10 to 11. Until then, listen to Vikas. Listen to the news when it comes along. Find out what is happening in the country and in the world. Stay tuned to Akashvani. We value your relationship and your listenership. And we have been doing so for the past 90 years. 90. The big daddies of broadcasting. Akashvani. FM Rainbow. Supradeep Mukherjee out until you and I have a date again on air at 10 p.m. This is me saying I love you. Bye.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक जी। टाइम हो गया है, समय हो गया है किस चीज का? बिल्कुल म्यूजिक मस्ती का। और म्यूजिक मस्ती के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, लेकर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। क्या करना है इसमें? बिल्कुल टेंशन को सारी साइड में रखना है बिल्कुल, और एंजॉय करना है। पूरे घंटे का ये सफर रहेगा। और जो दोस्त इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए स्पेशली हर बार कहता हूं, फिर कहूंगा, अपना ख्याल रखना है लेकिन साथ में दूसरों का भी उतना ही ख्याल रखना है। तो देखिएगा, प्रोग्राम सुनने का मजा दुगना हो जाएगा। शुरू करते हैं म्यूजिक मस्ती का आज का ये सफर।

जी बिल्कुल, टच तो कर ही दिया है आपके जज्बातों को, फीलिंग्स को, पता लग गया है मुझे, बिल्कुल पता लग गया जी, यहीं से पता लग गया, क्योंकि यहाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को आपके साथ, और आप भी अपनी जगह पर एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। फारूक अली खान साहब लिखते हैं, मेरी बेटी जो कि 8 साल की है, आज उसने मदर्स डे की खुशी में एक पार्टी की है। जब आपका प्रोग्राम शुरू होगा फिर सॉन्ग सुनते हुए पार्टी भी शुरू हो जाएगी। दोनों बेटियाँ आज अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आनंदमय हो जाइए, पूरा माहौल बना लीजिए, और बिल्कुल हम आपके साथ हैं इस खुशी के दिन में। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल, सभी को इस खास दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यकीन करता हूं हर दिन जो है वो खास बनाइए तो और भी मजा आ जाएगा। आदाब, मैं यहां सऊदी अरब के रियाद शहर में अपने देश की सरजमी से आई आवाज को सुनकर दिल खुश हो गया, और अपनी माँ को मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। जी आप हैं कौन? फारूक अली खान जी के बेटे हैं, लिखा है इन्होंने, और फैजी फारूक है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्त इस प्रोग्राम में, एंजॉय कीजिए, और उम्मीद करूँगा आपका जो पैगाम है वो आपके माता जी तक, माँ तक ज़रूर पहुँचा होगा। और बहुत अच्छा लगता है कि देखिए आप इतनी दूर हैं यहाँ से, हमसे दूर हैं मतलब वैसे, लेकिन दूर रहकर भी जो जज्बात है उसके ज़रिए हम जुड़े हुए हैं, और एक माध्यम तो है ही आकाशवाणी रेनबो का।

लिए प्रेमचंद प्रेमी जत्रा धामपुर से माँ फूलों की एक थी क्यारी सी, माँ सारे जहां से भी न्यारी सी, माँ शश्वत नमन है तुम्हें मेरा, पल पल मेरी जान से तुझको प्यारी सी। कितनी अच्छी अपने भावनाएं अपने व्यक्ति की और हम सभी की सेम ही है जी, अलग कुछ भी नहीं है। माँ दिवस की शुभकामनाएं, जिसके पास माँ वो सबसे बड़ा अमीर है, जिसके पास माँ नहीं वो सबसे बड़ा कंगाल है। मैं अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास माँ है। अनिल शर्मा अंकल जी सरिता विहार से, बहुत अच्छी बात कही, गहरी बात कही और इस खास दिवस को हम एंजॉय कर ही रहे हैं यहाँ पर और आपके साथ और भी एंजॉय करेंगे।

डांस के साथ पार्टी शुरू। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब और अपने बेटे फैजी का मैसेज सुनकर दिल खुश हो गया। दिल से शुक्रिया आपका सरकार। कस्बा गुन्नौर यूपी से ताहिरा फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ पंक्तियां बेहतरीन लिखी हैं। माँ

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आए हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का। हम दो भाई यहाँ दिल्ली में आपको सुन रहे हैं और रेनबो के जरिए इस खास दिन की यानी मदर्स डे की मुबारकबाद देना चाहते हैं, जो कि इस वक्त आपको कस्बा गुन्नौर से सुन रहे हैं। माँ की दुआएं हमारे साथ रहे। दिल्ली से फराज, फरहान, फारूक, तो हमारी तरफ से फिर से सभी दोस्तों को एक बार इस खास दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जी बिल्कुल, और मस्ती का माहौल बन गया है। और एक बहुत अच्छी सी लाइंस कविता कह सकते हैं जो भेजी है मोहम्मद सरफराज आलम ने, जो कि हर दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं पूरा संसार होती है, सूखी रोटी में भी बच्चों के लिए बहार होती है, खुद जलती रहती है दुख की धूप में उम्र भर, लेकिन औलाद के हिस्से सदा छांव होती है, रातों में जाग जाग कर सपनों को सींचती है, हर दर्द छुपाकर चेहरे पर हंसी लिखती है। माँ की ममता का कोई मोल कहाँ दुनिया में, उसके कदमों में ही तो जन्नत दिखती है। क्या बात है, सही फरमाया आपने। और ये सफर अभी जारी रहेगा, बस छोटा सा अंतराल, अभी लौटता हूं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का अभी बहुत टाइम बाकी है और बहुत सारे गाने भी बाकी है, तो चलिए एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हैं और इस गाने को भी एंजॉय करते हैं, बेहतरीन ट्रैक आपके लिए।

गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ऑसम सॉन्ग्स कलेक्शन, ओल्ड मेमोरीज, अफसा खानम जी, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से जुड़े रहिए, और भी बेहतरीन ट्रैक आ रहे हैं।

दिल तो कर रहा है यहीं रह जाएं, लेकिन रह नहीं सकते और समय हो गया है। अगला प्रोग्राम हिना जी लेकर आई हैं, आपकी याद आती रही, बने रहिएगा। और मेरा वक्त हो गया चलेगा, 17 तारीख को मुलाकात करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल। मैसेज मसाला मिक्स का प्रोग्राम होगा, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

रात दिन टैक्सी चलाउंदा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 FM रेनबो पर आपका स्वागत है। एक बार फिर आकाशवाणी से आप हमें सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही के साथ हिना मौज हाजिर है। आदाब कबूल कीजिए दोस्तों। आज फिर से बात होगी रिश्तों से रिलेटेड, वो सारे एहसास जज्बात हम डालने की कोशिश करेंगे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी याद आती रही। यादों का दरीचा खुलेगा और बहुत खूबसूरत से रिश्ते और उनसे जुड़े एहसास जज्बात के साथ लबरेज होगा आज का भी प्रोग्राम, ये वादा रहा। आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम को इस ट्रैक के साथ। रिश्तों का एतबार, वफाओं का इंतज़ार, हम भी चिराग लेके हवाओं में आ गए।

9:55 हिना मौज के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, जिसमें आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से एहसास और जज्बात हैं जो हमें रिश्तों से बांध कर रखते हैं। हमारे आसपास के जितने भी रिश्ते हैं उनको हम किन एहसास और जज्बात के साथ बंधा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि अगर ये एहसास ना हो तो रिश्ते चल नहीं सकते। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी को मायने देने का काम करते हैं ये एहसास, क्योंकि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता बल्कि रिश्ता बनता है एहसास से, कुछ अनकहे जज्बात से और छोटी छोटी परवाह करने से। और कुछ सच्चे एहसास अगर इसमें शामिल हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमें सही और सच्चे रिश्ते से वो हमेशा के लिए जोड़ देते हैं, और उसके बाद कभी भी कहीं भी वो खूबसूरत से रिश्ते हमारी ज़िंदगी से दूर नहीं होते। उनके साथ गुजारा हुआ हर एक पल हमारे लिए बहुत मायने रखता है और उसको भूलना या भुलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे ही रिश्तों का एहसास कराएंगे आज इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी याद आती रही। बने रहिए मेरे यानी हिना मौज के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

लम्हा या फिर एक दिन भी कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन रिश्तों के सहारे ही तुम्हारी ज़िंदगी गुजरती है। जब आप पूरे दिन की थकान के बाद कहीं किसी के पास ऐसे वक्त पर पहुंचते हैं कि जब आपको एहसास कराए कोई कि वो आपका अपना है, आपकी थकान महसूस कर रहा है, ऐसे एहसास व जज्बात से लबरेज़, ऐसे एहसास व जज्बात को समेटे हुए रिश्ते ही हमारी ज़िंदगी के मायने बदल दिया करते हैं। दोस्तों, अगर एहसास व जज्बात की बात करें तो सबसे पहला एहसास अगर रिश्ते में होना चाहिए, किसी भी रिश्ते में, किसी भी ऐसे खूबसूरत रिश्ते में जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, उसमें अपनेपन का होता है। जब कोई बिना कहे हमारी तकलीफ को समझ जाए, जब किसी की मौजूदगी से दिल को सुकून मिलने लगे, और कहीं ऐसा कोई रिश्ता जिसकी नींव रखी हो अपनेपन पर, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां अगर दूरियां भी होती हैं तब भी रिश्ता टूट नहीं पाता, कोई तोड़ नहीं पाता, क्योंकि आप फ़ोन पर ही सही रابطे में रहते हैं, एक दूसरे को सहारा देते रहते हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ बांटते रहते हैं। डिस्टेंस होने के बावजूद भी वो रिश्ता इतना खूबसूरत, इतना अपना होता है कि पास आसपास के भी जितने रिश्ते हैं उनको आप उतनी अहमियत नहीं देते जितना कि वो रिश्ता आपके लिए अहम होता है, क्योंकि वो बिना कहे आपकी तकलीफ़ को महसूस कर लेता है, बिना कहे आपका साथ देता है, बिना कहे आपकी हर परेशानी को समझकर आपके साथ खड़ा हो जाता है। ख़ास तौर पर ऐसे रिश्ते जो हैं वो हमसफ़र से रिलेटेड हुआ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियों में ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्ते भी शामिल हैं, दूसरे तरीके से, हम सफ़र के तौर पर नहीं, दूसरे किसी रिश्ते में, कि जो आपको इस तरह से समझें जैसे आप अपने आप को खुद समझते हैं। 9:12:27 बने रहिए मेरे यानी हिना मौज के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

9:21 हेना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एहसास और जज्बात की, जो हमें जोड़कर रखते हैं उन रिश्तों से जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि उनके बगैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। दोस्तों एहसास की बात की हमने, अपनेपन का जिक्र किया, लेकिन दूसरा एहसास जो रिश्तों में होना बहुत ज़रूरी है और वो है एहसास जो है वो है भरोसे का, क्योंकि भरोसा वो डोर होता है जो रिश्तों को मजबूती से बांध कर रखता है। अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता साथ होकर भी अधूरा मालूम होता है। और तीसरा एहसास जो है वो है सम्मान का, इज्जत का, क्योंकि हर रिश्ता इज्जत चाहता है। जहाँ एक दूसरे की भावनाओं की कदर होती है वहाँ रिश्ते उम्र भर टिकते हैं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ प्यार से नहीं, सम्मान से, आदर से, इज्जत देने से गहरी होती है। और अगर ये जज्बे हमारे रिश्ते में मौजूद नहीं हैं तो वो कितना भी अहम क्यों ना हो हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं टिक सकता। अगर टिक भी गया तो एक तरीके से हम बोझ की तरह उसे ढोते रहेंगे।

जी हाँ, हर किसी रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, एतमाद और भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक और बहुत ही प्यारा सा और बेहद ख़ास एहसास होता है, और वो एहसास है होने का। होने का एहसास मतलब, दोस्तों, ज़िंदगी आसान तब नहीं होती है जब परेशानियां ख़त्म हो जाएं, बल्कि तब होती है जब कोई कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर परेशानी में, हर गम में, हर खुशी में, हर तरीके की सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एहसास जो होता है ना, वो रिश्तों को मजबूत बनाता है। रिश्तों में कभी कभी नाराज़गी भी आ जाती है दोस्तों, लेकिन खामोशियाँ भी होती हैं, और इन खामोशियों के बावजूद भी दिल में परवाह का होना रिश्ते को फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से चलते हैं दोस्तों, और ये एहसास हमारी ज़िंदगी का जुज़ होते हैं। ये एहसास हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं कि इनके बगैर हम अगर रिश्तों को सोचें तो मेरे ख्याल से वो रिश्ते, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होगा इन रिश्तों में कि जो चल सके और जो दूर तक जा सके। इन एहसास और जज्बात के बगैर कोई भी रिश्ता चलता नहीं है। एतमाद ना हो तो आप एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं कर सकते, भरोसा ना हो तो आप किसी के साथ चल नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी में जो भी रिश्ता बनाएं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर बनाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में यूं तो बहुत से रिश्ते हैं, आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन एक या फिर दो रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बहुत क्लोज, बहुत करीब होते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ बताकर चलते हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि वो आपको आप ही की तरह पहचानते हैं। लेकिन ऐसे रिश्तों में ये ज़रूर जांचने की कोशिश कीजिए कि उनमें ज़र्फ़ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कोई लड़ाई, कभी कोई इस तरीके की चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाए, नाराज़गी हो जाए, दूरियां हो जाएं, तो इतना ज़र्फ़ हो कि आपकी कही हुई, आपकी बताई हुई या फिर आपकी राजदार बातें जो हैं वो किसी को ना बताए, लड़ाई होने के बावजूद भी। ऐसे ज़र्फ़ वाला इंसान ही आपका सच्चा पक्का दोस्त और रिश्ता हुआ करता है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ हैं आप, सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, हालांकि इस प्रोग्राम में हम मैसेजेस नहीं लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो मुझे लगा इस वक्त कि मुझे ले लेना चाहिए, और वो मैसेज है मेघा सिंह का बिहार से, और वो मुझे सिर्फ एक लाइन उन्होंने लिख कर भेजी है। उन्होंने ये कहा है कि आपकी बातें सच क्यों लग रही हैं। तो आपको सच इसलिए लग रही हैं क्योंकि ये बातें, ये रिश्ते, ये एहसास जज्बात हर इंसान की ज़िंदगी में मौजूद हैं, और यही चीज़ें जो हैं जिनसे हम दो चार होते हैं सुबह से रात तक, अपनी पूरी ज़िंदगी में छोटे से बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच बदलती हैं हमारी हमारी ज़िंदगी में। एक वक्त पर कुछ होता है तो दूसरे वक्त पर कुछ और होता है, और यही सब चीज़ें हमें सिखाती हैं ज़िंदगी में जीने का सलीका, देती हैं, और वक्त वक्त पर जब आपके साथ परेशानियां आती हैं उस वक्त आपको एहसास होता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया, कौन नकाब लगाकर आपके आपका अपना बनने की कोशिश कर रहा था, और कौन ऐसा है जो आपका अपना है वाकई में। तो दुनिया इसी तरीके की है, और दोस्त आपने ये एहसास इसलिए भी किया क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियाँ और आपकी ज़िंदगी के रिश्ते हमारी ज़िंदगी के रिश्तों से मुख्तलिफ नहीं हैं, एक जैसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में मौजूद हैं। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, तो हम कुछ मैसेजेस जो बहुत चुनिंदा होंगे और बहुत रिलेटेबल होंगे वो हम ज़रूर शामिल करेंगे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जहां रिश्तों के एहसास जज्बात का ज़िक्र छिड़ा हुआ है। दोस्तों रिश्ते जो हैं वो धागों से नहीं बांधे जाते, क्योंकि ये तो एहसासों की गिरोह जो होती हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, और ये गिरह जो होती हैं ये अगर ना बंधें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खाली सी महसूस हों। और ज़िंदगी में हमेशा इंसान दौलत, शोहरत और कामयाबी के पीछे भागता है, और कहीं ना कहीं उसे हासिल कर भी लेता है, लेकिन अगर वक्त पर आप अपने रिश्ते और सच्चे एहसास जो हैं वो जुटा ना पाएं तो आपकी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर आपको बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके साथ आप अपनी खुशियां, गम, आपकी परेशानियां या फिर आपके दिल का हाल अहवाल बांट सकें। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिश्तों को ज़रूर शामिल कीजिए जो आपके साथ उम्र कदम से कदम मिलाकर चलें और आपको आपकी तरह समझें,

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए

0: दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

9:51 और ये हुए 40 सेकेंड। हिना मौज के साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। कुछ ही देर बाकी है हमारे पास कि हम इन रिश्तों से रिलेटेड मुतालिक बात करें। आज मदर्स डे के मौके पर ये एक खूबसूरत रिश्ता जो माँ के साथ हमारा होता है, इसको ज़रूर बयान करना चाहूँगी। एक खूबसूरत रिश्ता जो खुदा ताला हमारे साथ इस दुनिया में भेजता है, उसे हम खुद नहीं बनाते। और बहुत से रिश्ते उससे रिलेटेड होते हैं जो हमारे पास अपने आप आ जाते हैं, हमारे साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। उन रिश्तों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूरियां इख्तियार कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें फैमिलीज़ में भी इस तरीके की हो जाती हैं कि जब इंसान अलहदगी कर लेता है, या फिर कभी कभी मिलता है लेकिन दिल से नहीं मिलता। लेकिन माँ बाप का रिश्ता, ख़ास तौर पे माँ का रिश्ता, एक ऐसा खूबसूरत और नायाब रिश्ता है कि जिसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी बहुत खाली हो जाती है। ऐसा लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की माँ नहीं है तो उसके सर पर साया ख़त्म हो गया, एकदम से सर जो है वो खाली हो गया। दुआओं से इंसान खाली हो गया और हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी में खालीपन का एहसास दिलाती है अगर ये एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में मौजूद ना हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनके पास ये खूबसूरत सा रिश्ता भी मौजूद है, जिनकी माएँ हयात हैं, उनको अपनी माओं का जितना जतन करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी में ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी अगर चला गया तो लौट कर वापस नहीं आएगा। ऐसे खूबसूरत और नायाब रिश्तों को हमेशा बांध कर रखिए। ऐसे रिश्तों के साथ तो डांट भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की बातें जब होती हैं, जब माएँ डांटा करती हैं या आपको किसी भी चीज़ में आपकी खामियां निकालती हैं, आपको दुरुस्त करने की कोशिश करती हैं, सही करने की कोशिश करती हैं, तो वो भी बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। इनको अपने साथ रखने की कोशिश कीजिए, उनका जतन कीजिए, उनकी हर बात मानिए और हर वो काम करने की कोशिश कीजिए जो उनको खुशी दे सके। बहरहाल चलते चलते बस यही कहना चाहूँगी इस प्रोग्राम में आपसे कि जो भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में अहम है, चाहे वो फिर कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, उन्हें एहसास दिलाइए कि वो आपकी ज़िंदगी में कितने अहम हैं। उनके साथ बैठिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमियत का एहसास दिलाते चलिए। क्योंकि दोस्तों, ये खूबसूरत रिश्ते हमारी ज़िंदगी का सरमाया भी हैं और इनके बग़ैर जब हमें जीना पड़ता है तो तब हमें एहसास होता है और वो वक्त बहुत एक तरीके से देर हो जाया करती है तब जब आपको एहसास होता है। तो वक्त रहते एहसास कीजिए, अपने रिश्तों को समेट कर चलिए और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत रिश्तों को बनाने की भी कोशिश करते रहिए। बहरहाल इस खूबसूरत से प्रोग्राम में इस आखिरी ट्रैक के साथ इजाज़त चाहूँगी, रहूँगी रंगे महफिल में आपके साथ। तो आप कहीं मत जाइएगा, मिलती हूँ आपको 11 से 12 में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए

0: की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट भी प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की आवश्यकता है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा ही डबल इंजन सरकार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने छठे ओवर में 3 विकेट पर 39 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। सेमीफाइनल में इस भारतीय टिकड़ी ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप कहीं के भी स्टार बन जाइए, हाईवे के स्टार मत बनिएगा। द चालान्स आर टू हैवी एंड द रोड हैज टू बी केप्ट सेफ फॉर यू एंड फॉर ऑल अदर रोड यूजर्स। द समवन वेटिंग एट होम, लिसन टू हाईवे स्टार ऑन योर कार रेडियो, बट ड्राइव केयरफुली फॉलोइंग ऑल द ट्रैफिक रूल्स। You're in control once again this evening with your main man, your host with the most, Supradeep Mukherjee.

नहीं जी नहीं, ये सरासर झूठ है। आई एम ओनली अ रेडियो स्टार एंड नॉट अ हाईवे स्टार। अ ट्री व्हिच इज एज ब्यूटिफुल एंड फ्लावरिंग एज द लबर्नम एज द अमलतास एंड व्हिच इज इन ब्लूम दिस टाइम ऑफ द ईयर एंड इट आउटलिव्स द इंडियन लबर्नम बाय सेवरल वीक्स इज द पिंक कैसिया, द कैसिया जावानिका। इट इज अ थॉर्नी ट्री विद स्लेंडर ब्रांचेस adorned with pink and white blossoms like the bracelets on the arms of a beautiful woman. And this is the kiss of death. At 10:12 and 40 seconds by the rainbow clock. The sound of the Sabbath playing on a Sunday evening. The color is black. And this was no ordinary show. Black Sabbath for you.

0: शिवानी आकाशवाणी। हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: Our second Urdu poet for this evening is Nawab Mirza Khan Dagh Dehlvi, who was born in the year 1831 and he passed away in the year 1905. Rasme ulfat sikha gaya koi, dil ki duniya pe chha gaya koi, ta qayamat kisi tarah na bujhe, aag aisi laga gaya koi.

दिल की दुनिया आज उजाड़ सी क्यों है? क्या यहां से चला गया कोई? वक्त रुखसत गले लगा कर दाग, हंसते हंसते रुला गया कोई।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।

0: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा अक्स है सरे आईना पसे आईना कोई और है। खूबसूरत सी गज़ल से आगाज़ हो चुका है रंगे महफिल प्रोग्राम का। वादा वफा करने के लिए एक बार फिर हिना मौज हाजिर खिदमत है। मेरा आदाब कबूल कीजिए। 11:10:53। खूबसूरत सी गज़ल आप सुन रहे हैं और ये

इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दिल के किसी कोने में इसकी आहट को बखूबी महसूस कर सकते हैं हम। और जब यही एहसास शायरी में उतरता है तो गज़ल बन जाया करता है, क्योंकि ख़ास तौर पर गज़ल की रूह अगर कहा जाए तो वो है मोहब्बत। अगर मोहब्बत के जज्बे को गज़ल से अलग कर दिया जाए दोस्तों, तो शायद उसकी अल्फाज जो हमें महसूस कराते हैं वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे। अल्फाज हो तो जाएंगे मगर उनकी धड़कन ऐसा लगता है कि कहीं खो सी जाएगी अगर उसमें मोहब्बत मौजूद ना हो। एक वो चेहरा जिसको देखकर इंसान अपने दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है और उसके साथ साथ ताउम्र चलने की ख्वाहिश भी उसके अंदर जन्म लेती है। ऐसी ही खूबसूरत एहसास और जज्बा से लबरेज ये रिश्ता जिसको हम मोहब्बत कहा करते हैं, इसको सेलिब्रेट करेंगे आज प्रोग्राम रंगी महफिल में। बने रहिए मेरे यानी हिना मौज के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर।

दोस्तों, ये सच बात है कि गज़ल का जादू जो है वो सर चढ़कर बोलता है। और गज़ल में मोहब्बत के मानी सिर्फ किसी इंसान से प्यार नहीं होता दोस्तों, बल्कि उसमें इंतज़ार भी होता है, तड़प भी होती है, वफा भी होती है और खामोशी में छुपा हुआ दर्द भी होता है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रंगे महफिल प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर 11:28:20। हिना मौज है आपके साथ इस खूबसूरत से गजलों भरे सफर में। दोस्तों, गजल की दुनिया में मोहब्बत की अगर बात की जाए तो मोहब्बत कई रंगों में दिखाई देती है। कहीं वो पहली मुलाकात की मासूमियत है तो कहीं बिछड़ने के बाद की तन्हाई। मीर की शायरी हो या फिर गालिब के अशार, हर जगह मोहब्बत अपने अलग अंदाज में मिलती है। मीर तकी मीर के यहाँ मोहब्बत दर्द बनकर उभरती है तो मिर्ज़ा गालिब के यहाँ मोहब्बत एक गहरी सोच और फलसफा बन जाती है। शायद यही वजह है दोस्तों कि गज़ल अब भी उर्दू शायरी की लिस्ट में सरे फहरिस्त है और आज भी सबके दिलों पर राज करती है, क्योंकि इसके अंदर इंसानी एहसास और जज्बात के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी में होने वाली हर वो चीज़ मुलव्वस हो सकती है जिसके बारे में इंसान सोचता है या फिर जिससे इंसान की ज़िंदगी होकर गुजरती है।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

11:38 और 40 सेकेंड खूबसूरत से प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है रंगे महफिल। इसमें खूबसूरत सी गज़लें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप सब के एहसास जज्बात जो आपकी मोहब्बत से जुड़े हुए हैं वो सब कुछ उभर कर इन खूबसूरत गज़लों में ज़रूर आप तक पहुँचें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गज़लें पसंद आ रही होंगी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर हिना मौज के साथ। दोस्तों, गज़ल हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं है बल्कि महसूस करने का नाम है। कभी किसी की याद में मुस्कुरा देना, कभी किसी के लिए चुपचाप दुआ कर लेना, यही मोहब्बत का असली मकाम है। गज़ल की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसे हर सुनने वाला इसमें अपनी कहानी कहीं ना कहीं ढूंढ ही लिया करता है। इसके लफ्ज़ हर इंसान की ज़िंदगी को छू कर गुज़रते हैं, और किसी अपने से बिछड़ जाने की याद हो या फिर किसी को किसी से की हुई अधूरी सी मुलाकात हो, शायरी और ख़ास तौर पर शायरी की सिंफ़ गज़ल इसको इस तरीक़े से बयान करती है कि वो हमें अपनी सी मालूम होती है और लगता है कि हाँ, ये इंसिडेंट, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी हुई थी और हम भी ऐसी ही कैफियत से दो चार हो चुके हैं।

11:54 नेहना पहुँच गया। आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ चला। चलते चलते बस यही कहूँगी कि गूंजूंगी तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको भुला सके न तू वो गुफ्तगू में। दोस्तों, मोहब्बत गज़ल की जान है और उसकी आवाज़ है, उसकी पहचान है, और यही एहसास गज़ल को अजीम बनाता है। इसी एहसास को समेटे हुए आज इस प्रोग्राम में आप सब से बस इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी लफ्ज़ों भरे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे यानी हिना मौज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शुभ खैर। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर

0: अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व और निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य का बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अफसाना ज्यादा है और वक्त कम, ऐसे मौके के लिए साहिर साहब का यह शेर कितना मुनासिब है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना

रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य को बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 37 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

हमेशा ये फरियाद करते रहोगे रहोगे हमेशा ये फरियाद करते रहोगे। करो आज तौबा तौबा करो आज तौबा मुसीबत टली या अली।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: जिया जिया
0: कुछ कुछ
1: मैं छोड़ रहा।

0: इसीलिए तो कहता हूं,
1: यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो।
0: बाकी

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसे ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे

करने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 और 33 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: लाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3

वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में

हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गुजरात और राजस्थान में आज लू चलने के अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तहे दिल से स्वागत है हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम का, जो है मिडनाइट मेलोडीज। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नवीनतम शांति प्रस्ताव को अस्वीकार्य कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं पसंद नहीं आई हैं। इससे पहले ईरान ने कहा कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान के माध्यम से भेजी गई, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्के ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने नहीं समझा जाना चाहिए। रूस के राजदूत सरगेई नेचायेव ने कहा है कि रूस नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच को लेकर चल रही चर्चाएं महाद्वीप के रणनीतिक संतुलन को बदल सकती है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास स्थित एक क्रूज जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को निकासी के लिए जहाज से उतारना शुरू कर दिया गया। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत आइसोलेशन में रखा जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने

8 विकेट को खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम यानी सारे गामा का, तो जुड़े रहिए प्रोग्राम के साथ और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी शीर्ष में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। आशा है कि नया मंत्रिमंडल भाजपा के चुनावी वायदों पर चर्चा करेगा। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों के भी बैठकों में शामिल होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 18वें सत्र के नव निर्वाचित सदस्य बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तापस रॉय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। स्पेन के मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि हता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज पर

बाद दो भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनसे वायरस के कोई लक्षण नहीं हैं। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा है कि चालक दल के सदस्य के रूप में काम कर रहे दोनों भारतीयों को नीदरलैंड ले जाया जाएगा, जहां उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है प्रातः के 5:06। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।